नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 1 जून सन 2026। सुबह के 5:57 होने वाले हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम

0: मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलानबटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भारत हमारा वतन है। इसकी मिट्टी में प्रेम, त्याग और बलिदान की खुशबू बसती है। हमारे वीर सैनिक सीमाओं पर रहकर देश की रक्षा करते हैं।

हम सभी भारतीयों को अपने राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए और एकता, भाईचारे और ईमानदारी के साथ देश की निरंतर प्रगति में अपना योगदान देना चाहिए।

माँ नर्मदा की पावन धारा श्रद्धा और आस्था का अनमोल संगम है। इसकी शांत लहरें मन को भक्ति से भर देती है। माँ नर्मदा करोड़ों भक्तों की जीवन रेखा है।

श्री हरि विष्णु पालनहार और करुणा के सागर हैं। उनके नाम का स्मरण मन को शांति, श्रद्धा और नई ऊर्जा देता है। आइए प्रेम, सेवा और सद्भाव का संदेश अपनाकर श्री हरि के आदर्शों को जीवन में उतारें।

भगवान महावीर ने अहिंसा, सत्य और करुणा का संदेश दिया। उनका जीवन हमें संयम, शांति और सभी जीवों के प्रति दया रखना सिखाता है। जियो और जीने दो, यही भगवान महावीर की अमूल्य सीख है।

0: अभी आप वंदना कार्यक्रम सुन रहे थे। इसका संकलन और आलेख कुबेर मेहरा का था, वाचन स्वर रूपाली चव्हाण के।
1: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
2: सच कहा, इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
0: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए आज का चिंतन।
3: हम अक्सर स्वाभिमान और अभिमान की बात तो करते हैं, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है, ये दोनों किस तरह एक दूसरे से अलग हैं, इस विषय पर जानकारी रखने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं, क्योंकि अधिकांशतः तो वो हैं जिनके लिए स्वाभिमान और अभिमान ये एक ही हैं, इनका भावार्थ समान ही है। अभिमान और स्वाभिमान दोनों ही मान के दो अलग अलग स्वरूप हैं, जिसकी उत्पत्ति हमारे मन से होती है। स्वाभिमान और अभिमान दिखने में मिलते जुलते हैं, अक्सर लोग इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, जबकि वास्तव में इनमें गहरा अंतर है। इनमें से सही भाव का चयन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार की दिशा इन्हीं दोनों भावनाओं से तय होती है। स्वाभिमान मनुष्य के जीवन का वो आधार स्तंभ और सकारात्मक भावना है, जो व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान, नैतिक मूल्यों और गरिमा की रक्षा करना सिखाती है।

0: स्वाभिमानी व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है। वो अपने अधिकारों और मूल्यों की रक्षा करता है, लेकिन कभी भी दूसरों का अपमान नहीं करता। स्वाभिमान हमें अन्याय के सामने झुकने नहीं देता और आत्मविश्वास के साथ सत्य का पक्ष लेने की शक्ति प्रदान करता है। वो गलत के विरुद्ध आवाज उठाता है, परंतु शालीनता और संयम बनाए रखता है। ये व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाता है और समाज में उसे सम्मान दिलाता है। बिना स्वाभिमान के व्यक्ति चाहे कितना ही सफल क्यों न हो, अंदर से खोखला महसूस करता है। जिस प्रकार एक विद्यालय में एक छात्र पढ़ता था, वो बहुत मेहनती था लेकिन साधारण परिवार से था। एक दिन कुछ छात्रों ने उसके पुराने जूते देखकर उसका मजाक उड़ाया। शिक्षक ने जब यह देखा तो चुप रहे, यह सोचकर कि वो छात्र अब क्या करेगा। उस छात्र ने सिर झुकाने के बजाय पूरे आत्मविश्वास से कहा, मेरे जूते पुराने हैं लेकिन मेरे सपने नहीं। फिर वह रोज की तरह मन लगाकर पढ़ाई करता रहा। कुछ वर्षों बाद वही छात्र एक सफल अधिकारी बना और उसी विद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में आया। उसने किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि बच्चों को यह सिखाया कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, स्वाभिमान और मेहनत ही इंसान की असली पहचान होती है। स्वाभिमान चुपचाप सहने का नाम नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की शक्ति है। इसके विपरीत अभिमान वह नकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति अपनी शक्ति, धन, ज्ञान या पद के कारण स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है। अभिमानी व्यक्ति दूसरों की भावनाओं और सम्मान की उपेक्षा करता है और यह मान बैठता है कि वो कभी गलत नहीं हो सकता। अभिमान मनुष्य की दृष्टि को संकीर्ण बना देता है और उसे अपने दोष देखने से रोकता है। धीरे धीरे यह गुण व्यक्ति को अकेला कर देता है। अभिमान न केवल व्यक्ति के चरित्र को कमजोर करता है, बल्कि समाज में भेदभाव और वैमनस्य को भी जन्म देता है। जिस प्रकार एक राजा को अपने बल और वैभव पर अत्यधिक अभिमान था, वह अपने मंत्रियों और प्रजा की सलाह को तुच्छ समझता था और कहता था कि उसे किसी की आवश्यकता नहीं। एक दिन बिना किसी से परामर्श किए उसने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर दिया। सेना तैयार नहीं थी और रणनीति भी कमजोर थी। परिणाम स्वरूप राजा को हार का सामना करना पड़ा और राज्य को भारी क्षति हुई। तब जाकर राजा को समझ आया कि उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि उसका अपना अभिमान था। इतिहास में अनेक शक्तिशाली व्यक्ति और साम्राज्य अभिमान के कारण ही पतन को प्राप्त हुए हैं। स्वाभिमान व्यक्ति को संतुलित और सम्मानित बनाता है, जबकि अभिमान व्यक्ति के संबंधों में दूरी का कारण बनता है। स्वाभिमान व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाता है, जबकि अभिमान उसे गिरावट की ओर धकेल देता है। हमें अपने जीवन में स्वाभिमान को अपनाना चाहिए और अभिमान से सदैव दूरी बनाए रखनी चाहिए। जब व्यक्ति अभिमान और स्वाभिमान के भीतर मौजूद अंतर को समझ लेता है, तब वह अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाता है और वह यह भी जान लेता है यहाँ कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है।
1: श्रोतो, ये था आज का चिंतन। आलेख निहारिका श्रीवास्तव का, वाचन वंदना तिवारी।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अब सुनिए खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में मिट्टी परीक्षण विषय पर जानकारी दे रही हैं भारती उपाध्याय।
3: किसान भाइयों के राम राम। किसान भाइयों, आज खेती की बात में बात करांगा कि अपना किसान भाइयों मिट्टी परीक्षण कैसे करवाए। मिट्टी परीक्षण करवाना से उनके जो वे उपज ले रहा है, जो पैदावार उनके लेनी है, वो में उनके फायदों भी होवे, साथे साथ उनके पत्तों भी चली जावे है कि उनका जो मिट्टी है उसमें किस चीज़ की कमी है, तो उस कमी की पूर्ति अपना किसान भाइयों करी सके है। तो मिट्टी की जाँच एक देखो जाए तो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसका द्वारा जो है नी मिट्टी का जो भौतिक, रासायनिक और जैविक जो गुण होए नी उनको विश्लेषण करियो जावे है, मतलब उनके देखो जावे है मिट्टी परीक्षण का द्वारा। इका से मिट्टी में जो पोषक तत्व है, जैसे कि अपना जो मिट्टी है उसमें कौन कौन सा मौजूद पोषक

0: तत्व है जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की मात्रा और उनकी अम्लीयता, क्षारीयता का पतो अपना के मट्टी परीक्षण से ही लागे है। एका सारू अपना किसान भाई उनके चाहिए कि वे मट्टी को परीक्षण जरूर करवावे। इका से कहीं होएगो कि सही उर्वरक को चयन जो है अपना किसान भाई करी सकेगा। किसान भाई उनके यो पतो लगी जावेगो कि उनकी जमीन में किन पोषक तत्वों की कमी है और किस फसल सारू कितनी मात्रा में खाद या उर्वरक उनके डालनो है। तो इका से सही उर्वरक को चयन अपना किसान भाई करी सकेगा। साथे साथ लागत में कमी, मिट्टी की जांच अगर अपना किसान भाई ने करवाई है तो मिट्टी की जांच का आधार पर सही मात्रा में उर्वरक को उपयोग करने से जो उनको जो खर्च होवे, अगर वे कभी अपनी फसल लगी है और अपन ने मिट्टी जांच नहीं करवाई है और अपन ने मन से ही अगर उर्वरक डाल ना के दियो है तो उका से अपना के कहीं होएगो कि आवश्यकता से ज्यादा अपनो खर्चो होएगो। एका कारण कहीं है कि अगर अपना किसान भाई हो अगर मट्टी परीक्षण करी लेवे, मट्टी की जांच करवाई लेवे तो उनको जो अनावश्यक खर्च है यो बची जावेगो और जमीन की जो सेहत है वह भी खराब नहीं होवेगी क्योंकि ज्यादा उर्वरक डालने से जमीन भी खराब हो सके है। एका कारण जो मट्टी परीक्षण है इका से अपना किसान भाई उनके यो लाभ भी मिले हैं और उपज में वृद्धि, सही पोषक पोषण मिलने से फसल की गुणवत्ता और पैदावार दोनों ही अच्छी होवे है और उसकी जो अपनी जो उपज है वह भी अच्छी होवेगी क्योंकि पोषक तत्व सही मात्रा में सही तरीका से मिलेगा तो किसान भाई उनकी उपज भी अच्छी होवेगी। एका सारू मिट्टी परीक्षण अपना किसान भाई उनके करना चाहिए। खेत में मिट्टी को नमूनों लेने सारू कई कई बात उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला सबसे पहला अपना खेत स्थान को चयन करना है कि अपना खेत से 10 से 15 अलग अलग जगह मतलब वी आकार का गड्ढा से मिट्टी का नमूना लेना है। मतलब या तो कोना से लई के इधर ऐसा वी आकार में अपना के अलग अलग जगह से मट्टी को मतलब थोड़ा थोड़ा नमूना मट्टी के खोदी के लेना है। खेत की मेड़ या पेड़ों का पास की मट्टी नहीं लेनी है। यो ध्यान अपना किसान भाई उनके रखना है कि जो पेड़ अपना लगया है या मेड़ है ओका पास की मट्टी नहीं ला क्योंकि पोषक तत्वों को का बारे में इका से अपना के मालूम नहीं पड़े। वो नमूनों कैसे तैयार करना है तो सभी जगहों से पहला अपना के मट्टी ले लेनी है करीब आधा किलो या अपन एक साफ बाल्टी या पॉलिथीन में भी इखे मिल ही सका। हाँ मतलब या तो एक साफ बाल्टी ले ला, आधा किलो मट्टी ली करीब अपन ने और ओके एक साफ बाल्टी में राखी ली और ओके साफ बाल्टी में राखी ने मिलाई ली या ओके पॉलिथीन जो आवे नहीं अपनों ओ में भरी के रखे दी। इसका बाद मट्टी को अपना के चार भाग करना है। उसके चार भागों में बांट लेना है। विपरीत दिशा वाला दो भाग जो है उनके फेंकी देनो और बाकी जो दो हिस्सों है ओके आपस में मिलाई लेनो है। यह प्रक्रिया अपने के तब तक दोहरानी है जब तक कि 250 से 300 ग्राम मिट्टी नहीं बची जावे है। इस नमूना के सुखई ने अपना जो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र है या सरकारी प्रयोगशाला है नहीं ओमे जाई के भेजी देनो है। तो उका बात कही होएगा कि वे मट्टी को परीक्षण करेगा और वे बताई देगा कि कई कमी है और उनकी पूर्ति अपना किसान भाइयों करी सके है। तो किसान भाइयों से आज इतना ही कहना थो। किसान भाइयों राम राम।
1: मिट्टी परीक्षण से लाभ, इस विषय पर जानकारी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें में। जानकारी दे रही थी भारती उपाध्याय। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग।

श्री राम का नाम भजने वाले अर्थार्थी चार प्रकार के बताए गए हैं, धन संपत्ति की चाह वाले, संकट से मुक्ति

पाने की चाह रखने वाले, परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु तथा ज्ञानी अर्थात भगवान के तत्व से परिचित सहज प्रेम मात्र प्रेम से भजने वाले, ये सभी पुण्यात्मा की संज्ञा के अधिकारी हैं। राम शब्द के दो अक्षर वर्षा ऋतु के सावन भादो महीनों की तरह मधुर और मनोहर हैं। ये वर्णमाला रूपी शरीर के दो नेत्र हैं, कहने सुनने और स्मरण करने में अत्यंत सहज सरल और सुंदर नर नारायण की भांति सुंदर भाई, जो जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने इन दो अक्षरों की तुलना भक्ति रूपिणी सुंदर कामिनी के कानों के आकर्षक आभूषण कर्णफूल से की है।

आइए श्रोताओं, अब आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 7:20 पर आप गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम सुनेंगे। कार्यक्रम में आज ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, वर्ल्ड मिल्क डे और विश्व पर्यावरण दिवस पर चर्चा होगी। 8:30 का समय होगा फिल्म संगीत का। मराठी कार्यक्रम सुबह 9 से सुना जा सकता है। आज के कार्यक्रम में शिव राज्याभिषेक दिवस एवं पर्यावरण दिवस पर बात होगी। साथ ही लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रकांत भालेराव के साथ साक्षात्कार भी सुनवाया जाएगा। शास्त्रीय संगीत में सुबह 9:30 पर भुवनेश कोमकली का गाया राग भटियार सुना जा सकता है। सुबह 10:05 से 11 के मध्य प्रसारित होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे टेलीफोन नंबर रहेंगे 2710223 और 2710224। इंदौर का स्टडी कोड 0731, तो फोन करना ना भूलें। और आइए अब आपको आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी बता दें। दिन में 11 से आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। दोपहर की सभा में फिल्म संगीत का आनंद लिया जा सकता है 12:00, 2:02 और 2:30 से। 12:30 का समय होगा संग्रहालय से कार्यक्रम का। 1 से आप स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम सुनेंगे। 1:30 का समय होगा लोक संगीत का और 1:45 का समय होगा सुगम संगीत का।

और आइए अब आपको बता दें आज सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। शाम 5 बजे का समय होगा युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवाणी का। कार्यक्रम में आज विश्व दुग्ध दिवस पर बात होगी, साथ ही आप कुछ बातें कुछ गीत क्रम भी सुनेंगे। सांध्यकालीन सभा में फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:45 और चित्रगीत में रात 9:15 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 6 बजे से। 6:30 का समय होगा सुगम संगीत का। आज इस कार्यक्रम में भूपिंदर सिंह की गायी गजलों का आनंद लिया जा सकता है। 7:20 पर आप ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनेंगे। कार्यक्रम में आज राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना पर बात होगी, साथ ही कार्यक्रम में आप घरेलू टिप्स घरेलू व्यंजन क्रम भी सुनेंगे और लोकगीतों का आनंद भी लिया जा सकता है।

दिल ने फिर याद किया। ये कार्यक्रम आज रात्रि 8 बजे से सुना जा सकता है। रात्रि 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन रात 10 बजे से होगा और रात्रि 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत में आप भुवनेश कोमकली का गाया राग शिव केदार सुनेंगे। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में संस्कृत में समाचार और 7 बजे हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: उपक्रमाणां उपलब्धीनां च विषये अनेकेषां नागरिकाणां उत्कृष्ट योगदानाय प्रशंसा कृता। आकाशवाण्याः स्वकीये मासिक कार्यक्रमे मन की बात इत्यनेन कार्यक्रमेण राष्ट्रम् अभिसंबोधयन् श्रीमोदी झारखंड राज्यस्य रांचीनगरे आयोजिते राष्ट्रिय वरिष्ठ एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धायां उदयोन्मुख क्रीडकानां उत्कृष्ट प्रदर्शनस्य प्रशंसाम् अकरोत्। प्रवर्तमानायाः उष्णतरंगस्य स्थितिं प्रति चिन्तां प्रकटयन् प्रधानमन्त्रिणा जनान् अधिकृतान् उपदेशान् अनुसृत्य सुरक्षितं स्थातुं पूर्वसूचनानुसारं कार्यं च कर्तुं उद्बुद्धवान्।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं करिष्यति। पञ्चत्रिंशत् नूतनाः मन्त्रिणः मन्त्रिमण्डले समाविष्टाः भविष्यन्ति। शपथ ग्रहणं प्रातः एकादशवादने लोकभवने भविष्यति। नूतनेन समावेशेन शुभेंदु प्रशासने महत्वपूर्णरूपेण संवर्धनं भविष्यति, येन मई मासस्य नवमे दिनांके पञ्चमन्त्रिभिः सह कार्यभारं स्वीकृतमासीत्। अनेन विस्तारेण राज्यमन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणां कुलसंख्या एकचत्वारिंशत् यावत् वर्धिता भविष्यति। निर्वाचनायोगेन दश राज्यानां चतुर्विंशतिः राज्यसभा सदस्यानां द्विवार्षिक निर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य घोषणा अद्य क्रियते। भूतपूर्वः प्रधानमन्त्री एचडी देवगौड़ा, केन्द्रीयमन्त्रिणौ जॉर्ज कुरियन तथा रवनीत सिंहश्च तेषु सदस्येषु अन्तर्भवन्ति। आन्ध्रप्रदेशे, गुजराते तथा कर्णाटके प्रत्येकस्मिन् राज्ये चत्वारि चत्वारि आसनानि सन्ति। राजस्थाने तथा मध्यप्रदेशे प्रत्येकस्मिन् राज्ये त्रीणि त्रीणि आसनानि सन्ति। झारखण्डे द्वे आसने स्थः, मणिपुरे, मेघालये, अरुणाचलप्रदेशे च, मिजोरमे च प्रत्येकस्मिन् राज्ये एकैकम् आसनं रिक्तमस्ति। आयोगस्यानुसारं जूनमासस्य अष्टादश दिनांके मतदानं भविष्यति, मतगणना अपि तस्मिन्नेव दिने भविष्यति। महाराष्ट्रस्य, तमिलनाडुराज्यस्य, ओडिशाराज्यस्य च प्रत्येकस्य एकस्य आसनस्य कृते राज्यसभायाः उपनिर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य अपि आयोगेन घोषणा क्रियते। एतद् निर्वाचनमपि अग्रिममासस्य अष्टादश दिनांके भविष्यति। एकोननवतिवर्षीया प्रख्यात गायिकायाः सुमनकल्याणपुरस्य मुम्बईनगरे स्वनिवासस्थाने मृत्युः अभवत्। पञ्चाशदधिक ऊनविंशतिशततमाद् वर्षात् सप्तत्यधिक ऊनविंशतिशततमं वर्षं यावत् चलचित्रसंगीतस्य स्वर्णयुगे नैकासु भारतीयभाषासु कृतकार्याणां कृते एषा वयोवृद्धगायिका प्रसिद्धा आसीत्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे अन्तिमस्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं पञ्चस्तोभैः पराजित्य गतविजेतृदलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन अस्य वर्षस्य श्रृंखलापि विजिता। इति वार्ताः।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री

अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्मी संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार तथा केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंधन तेगचिनलिंग मठ में अहर्त सारिपुत्र और अहर्त महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोदसुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मोगली वेंकटरामन ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ये इस वर्ष की प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। रिले स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भूमिका, ताहुरा, सेहनूर और नीरू की महिला टीम ने 4x400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने 3:38.07 के समय के साथ चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी बनाया। काजल, भावना, आरती और निपम ने 4x100 मीटर में 45.05 के समय के साथ रजत पदक जीता। पीयूष राज, सैयद सबीर, रंजीत कुमार और मोहम्मद अशफाक की पुरुष टीम ने 4x400 मीटर में कांस्य पदक हासिल किया। ये चैंपियनशिप विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। विश्व चैंपियनशिप 5-9 अगस्त तक अमरीका के ओरेगन में यूजीन में आयोजित होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीता। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली ने नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
1: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
2: सच कहा, इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
1: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
5: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू।

0: मनाली।
1: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में, मजा आया कि नहीं?
0: अरे काहे का मजा,
1: क्यों क्या हुआ?
0: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
1: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
0: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
1: ये हुई ना बात। युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
0: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान
2: आकाशवाणी इंदौर।
0: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: क्या बात है सखी, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
4: खुशी की तो बात है, हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा अब मंगलवार के साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार को भी होगा।
3: अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। समय क्या रहेगा?
4: वही दोपहर 1 बजे।
3: तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला सभा।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
3: क्या?
2: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
3: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: और सुनेंगे कैसे?
2: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इंदौर में लॉन्च की ड्रोन यूनिट और ट्रैफिक साथी एप्लीकेशन। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दूसरी बार जीता आईपीएल खिताब, विराट कोहली बने मैच के हीरो। अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के

0: राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत म्यांमार संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। म्यांमार के राष्ट्रपति 5 दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा पर शनिवार को आए थे और उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत बिहार के बोधगया से की थी। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ये उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। कल 2 जून को वे मुंबई में उद्योग और व्यापार से जुड़े कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। ये अभियान किसानों को मिट्टी परीक्षण, प्राकृतिक खेती और संतुलित उर्वरक उपयोग के बारे में जागरूक करेगा। इससे पहले रविवार को शिवराज सिंह चौहान ने देशभर के कृषि वैज्ञानिकों, अधिकारियों और किसान संगठनों से वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कहा कि बढ़ता तापमान और रासायनिक खादों का असंतुलित उपयोग खेती के सामने बड़ी चुनौती बन गया है।
1: प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है खेत बचाओ, 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। आप सबसे मेरी अपील है, इस अभियान में भाग लीजिए और वैज्ञानिक जो कहें उनकी सलाह मानकर खाद का संतुलित उपयोग कीजिए, धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़िए। धरती कहे पुकार के कि अपनी माँ के साथ अन्याय मत करो, हम खेत बचाएं, तभी खेती बचेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचेगा।
0: इंदौर में रविवार की शाम लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गई। गांधी हाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि अहिल्याबाई का शासन आज भी रामराज्य की याद दिलाता है। उन्होंने हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत और न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी को अहिल्या गौरव सम्मान से सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल शाम इंदौर में डिस्ट्रिक्ट ड्रोन यूनिट और इंदौर ट्रैफिक साथी मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की। इस मौके पर 18 हाईटेक ड्रोन और 10 पुलिस वाहन भी इंदौर पुलिस के बेड़े में शामिल किए गए। ये ड्रोन कानून व्यवस्था और यातायात निगरानी में पुलिस की मदद करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इंदौर में 3 नए थाने के खोले जाने की घोषणा भी की।
2: पुलिस कमिश्नर के माध्यम से 3 पुलिस थाने की आपने डिमांड की है, 3 पुलिस थाने भी इंदौर में बनाए जाएंगे और आवश्यक पुलिस बल जो निर्धारित मापदंड के हिसाब से अभी कम है, निश्चित रूप से हमारी सरकार एक एक करके वो सारे काम कर रही। पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले में पुलिस बैंड स्थापित कर रहे हैं। पुलिस की भर्तियों में भी हमारी सरकार के द्वारा लगभग 22,500 पदों की भर्ती हर साल करते जा रहे हैं।
0: वहीं इंदौर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉ यादव ने उज्जैन संभाग के 31 समर्पित शिक्षकों को भी सम्मानित किया। सम्मानित शिक्षकों में वे लोग शामिल थे जो नदी नाले पार कर और लंबा रास्ता पैदल तय कर दूर दराज के बच्चों तक पढ़ाई पहुंचा रहे हैं। 5 जून को पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस मनाएगी। इस साल की थीम जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है। इस बार वैश्विक कार्यक्रमों की मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। वहीं भारत में इस बार 15 मई से 5 जून तक 21 दिनों का राष्ट्रव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक मुक्त बर्तनों को बढ़ावा देने के साथ साथ डिजिटल टिकटिंग अपनाने की अपील की जा रही है। वहीं भोपाल में कल पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ शहरी आवास विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ, जिसमें देशभर में वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और शहरी योजनाकारों ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के बीच शहरों के विकास में प्रकृति और स्थानीय पारिस्थितिकी को केंद्र में रखना जरूरी है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में नीदरलैंड से वापस लाई गई 11वीं सदी की चोल ताम्र पट्टिकाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इन 24 पट्टिकाओं में चोल वंश की उपलब्धियां और उनकी समुद्री ताकत का वर्णन है। श्री मोदी ने कहा कि यह हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के मल्हार में मिली 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाओं का भी उल्लेख किया जो 6वीं-7वीं शताब्दी की बताई जा रही हैं। अब रुख करते हैं एक अच्छी खबर का। बैतूल जिले में एक अनोखा गांव है जो सदियों पुरानी जनजाति कला को जीवित रखे हुए है। ये कला मूलतः भरेवा जनजाति की परंपरा है, लेकिन अब सामान्य समाज के लोग भी इसे अपना रहे हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे बैतूल संवाददाता मयंक भार्गव।
4: जिला मुख्यालय बैतूल से महज 5 किलोमीटर दूर बसा टिगरिया गांव अब क्राफ्ट विलेज के नाम से अपनी

0: पहचान बना चुका है। इस हस्तशिल्प कला को जीवित रखने वाले और गांव को अनूठी पहचान दिलाने के लिए वाघमारे परिवार मुख्य भूमिका का निर्वाह कर रहा है। यह परिवार पीतल और बेल मेटल से आदिवासी संस्कृति से जुड़ी कलाकृतियां बनाता है। इनकी हस्तशिल्प कला देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रही है। इनकी मेहनत के चलते अब उनके गांव को भारत सरकार ने क्राफ्ट विलेज घोषित कर दिया है। भरेवा कला के काम में माहिर बलदेव वाघमारे बताते हैं,
1: बैतूल जिले के 9-10 गांव में जो भरेवा समुदाय के लोग रहते हैं, ये सभी लोग इस काम को करते हैं। बड़े गर्व की बात है कि बैतूल जिले को पहला GI टैग मिला हुआ है और भरेवा कंगन के नाम से कलाकृति तैयार किया था जो नेशनल अवार्ड जीत चुका है 2024-25 का। लगभग 500 से ऊपर कलाकार बैतूल जिले के अंदर इस काम को कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे।
0: आकाशवाणी समाचार के लिए बैतूल से मयंक भार्गव।
2: प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। प्रदेश के 55 जिलों में से 1,44,000 से अधिक प्रगणकों ने घर घर जाकर मकानों की गिनती और जानकारी जुटाई। खास बात यह रही कि पूरी प्रक्रिया मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डिजिटल तरीके से की गई। जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा, जिसमें परिवारों की सामाजिक और आर्थिक जानकारी ली जाएगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी कल से 5 जून तक मालवा निवाड़ अंचल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे नीमच, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन जिलों का दौरा करेंगे। हर जिले में जिला समन्वय समिति की बैठकें और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में इस साल मानसून 5 से 7 दिन देरी से आ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की एंट्री 20 से 22 जून के बीच होने का अनुमान है। विभाग ने आज धार और खरगोन में ओले बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि झाबुआ समेत कई जिलों में आंधी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं कल आंधी और बारिश के चलते प्रदेश में तापमान 42 डिग्री से नीचे आ गया और सबसे ज्यादा गर्मी शाजापुर में 41.4 डिग्री दर्ज की गई। रायसेन जिले के छोटे से गांव सेमरी की बेटी अंजना यादव ने माउंट एवरेस्ट फतह कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि अंजना का साहस और संकल्प सभी बेटियों के लिए प्रेरणा है। एवरेस्ट विजेता अंजना आज भारत लौट रही हैं और प्रदेश में उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। अब रुक करते हैं क्रिकेट की खबर का। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार IPL का खिताब अपने नाम किया है। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराया। विराट कोहली ने 75 रनों की नाबाद पारी खेली और 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर टीम को जीत दिला दी। विराट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लगातार 2 IPL खिताब जीतने वाली बेंगलुरु अब चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के साथ इस खास क्लब में शामिल हो गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर कल आगरमालवा, झाबुआ, शिवपुरी, राजगढ़ और गुना समेत विभिन्न जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन कर नशा मुक्ति का संकल्प लिया गया। नीमच RCT संस्थान के द्वारा 3 जून से चीताखेड़ा मेन रोड कथित विश्राम भवन के पास महिलाओं के लिए निशुल्क 31 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो रहा है। सीहोर में नगरपालिका द्वारा कलेक्टर कार्यालय के पास मुख्य मार्ग पर डॉक्टर अंबेडकर उपवन में कल डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कृषि महाविद्यालय खंडवा में परम्परागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंदौर में हिन्दी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने पर मातृभाषा.com और हिंदी सेवी मातृभाषा उन्नयन संस्थान के द्वारा व्याख्यान का आयोजन कल किया गया और डिंडोरी में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर। कार्यक्रम लेकर आपके बीच आ रही हैं प्रीति जोशी।

जी हाँ श्रोताओं, आज है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, जो हर वर्ष 1 जून को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हमारे माता पिता के प्रेम, त्याग, समर्पण और बच्चों के जीवन में उनके महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान करना है। हमारे अभिभावक, जो पहले हमारे शिक्षक और मार्गदर्शक होते हैं, वे हमें संस्कार, शिक्षा, जीवन जीने की सीख देते हैं। आज का दिन उन्हें धन्यवाद देने का है, सम्मान देने का है, क्योंकि हमारे माता पिता हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा होते हैं। उनका प्रेम और आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।

श्रोताओं, जैसे हमारे बड़े हमारी देखभाल करते हैं, वैसे ही हमारी प्रकृति, हमारा पर्यावरण हमें सहेजता है, जीवन देता है। प्रकृति के कण कण से हमारा अस्तित्व बना है, इसीलिए उसका संरक्षण करना भी जरूरी है। हर वर्ष इसीलिए हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम अपनी पृथ्वी का संरक्षण करें, वृक्षारोपण करें, पर्यावरण की रक्षा करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और हरा भरा भविष्य सुनिश्चित कर सकें।

श्रोताओं गुड मॉर्निंग इंदौर में आज बातें होंगी पर्यावरण संरक्षण की और साथ ही विश्व दुग्ध दिवस की। जी हां श्रोताओं, क्योंकि आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड मिल्क डे।

0: श्रोताओं, दूध जिसे प्रकृति का संपूर्ण आहार कहा जाता है, हमारे जीवन में एक अमूल्य योगदान देता है और शरीर को पोषण, ऊर्जा और स्वास्थ्य देता है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं दूध के महत्व की। श्रोताओं, सबसे पहले हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं दुग्ध विक्रेता श्री सुनील जोशी जी। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार प्रीति जी, गुड मॉर्निंग इंदौर।
0: गुड मॉर्निंग इंदौर। सुनील जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप कितने वर्षों से इस कार्य को कर रहे हैं, आपका जो अनुभव है वो कैसा रहा है अभी तक का?
1: प्रीति जी, मुझे कम से कम 15 से 20 वर्ष हो चुके हैं दूध का कार्य करते करते हैं, और मेरे पापा भी करते थे, उसके बाद उनके बाद मैंने संभाला है, तो काफी अच्छा है दूध का काम तो वैसे। और मेरा काम थोड़ा छोटे स्तर से ही शुरू करा था, जो लगभग मैंने अभी अच्छा कर लिया है। उसके बाद तो जैसे क्वालिटी अगर अपन मेंटेन करते रहें या उसके बाद ग्राहक अपने से जुड़ते रहेंगे, तो अभी स्थिर ग्राहक एक अच्छी है मेरे पास, और क्वालिटी की उस पर भी मैं अच्छा ध्यान देता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही है कि पहले आपके पिताजी ये व्यवसाय करते थे,

0: फिर उनके साथ साथ आपने ये शुरुआत करी और काफी बड़े स्तर पर आप इसे लेकर गए हैं। आपसे हम ये आगे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से अपने दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मिलावट आजकल हर चीज में हो रही है, चाहे हम घी की बात करें, दूध की बात करें या दूध से बने मावे की बात करें, तो शुद्धता के लिए आप क्या करते हैं? ग्राहक कैसे पहचान करे कि शुद्धता इस चीज में है? शुद्धता का क्या प्रमाण है? आप कैसे इस चीज का ध्यान रखते हैं?
1: प्रीति जी, जैसे दूध में मिलावट तो क्या है कि जैसे अभी काफी सारी मशीनरी आ गई है तो उनसे भी अपन जांच कर सकते हैं, और उसके बाद अगर अपने पास जैसे लेबोरेटरी है तो वहां अगर अपन पता कर सकते हैं कि इसमें क्या है, क्या मिलावट है, क्या नहीं है। आजकल वैसे सरकार ने बहुत सारी लेबोरेटरियां उपलब्ध करवा रखी है, तो वहां पे भी आप दूध की गुणवत्ता को वो कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके यहाँ जो दूध आ रहा है अगर वो विश्वास पात्र है या कहीं सालों से आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि वो एक घर जैसे ही व्यक्ति हो जाता है तो उसमें अपने को विश्वास रहता है, तभी अपन उनसे दूध लेते हैं।
0: जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अगर हम इस समय की बात करें तो आपके व्यवसाय में कोई बड़ी चुनौती या बदलाव आए हैं इस समय?
1: प्रीति जी, बदलाव तो काफी सारे आए, जैसे हाल ही में दूध की कीमतों में बदलाव हुआ, कुछ नई पशुपालन तकनीकों के कारण थोड़ा सा बदलाव अपनाना पड़ता है, और अलग अलग तरह की चीजें होती है जिसमें अपने को थोड़ा सा ध्यान रख के कार्य करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें हैं।
0: आप नई टेक्नोलॉजी या तरीकों का उपयोग कैसे करते हैं, कुछ बताएं इस विषय में?
1: नई टेक्नोलॉजी का तो जैसे ये है कि अभी जैसे काफी सारी मशीनरी आ गई है, सेंसर वाली आ गई है, तो उससे भी अपन दूध की गुणवत्ता जांच कर लेते हैं। पहले तो क्या जैसे मावे से वो होता था तो उसमें अपने को ठीक है, मगर अभी सारी मशीनरी आ गई है तो उससे अपने को बहुत सारी फायदे हुए हैं।
0: आज हम मिल्क डे मना रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, बच्चे अक्सर दूध पीने से मना करते हैं या दूध से बनी चीजें पसंद नहीं करते हैं, तो दूध का क्या महत्व है उनके लिए? आपके उम्र में बच्चों को दूध देने की शुरुआत करने की सिफारिश करते हैं उनकी माताओं को?
1: प्रीति जी, दूध तो एक ऐसी चीज है कि जो अपन किसी भी उम्र में पिए तो एक फायदा ही करेगा, इसलिए बच्चों को तो क्या है कि जैसे बचपन से ही दूध देना ही चाहिए। अगर बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं तो अपन जैसे मिठाइयां बना रहे हैं, मावा है, पनीर है, छाछ का यूज कर सकते हैं। जैसे अपन अभी गर्मी में छाछ पियेंगे तो अपनी बॉडी पूरी ऊर्जा में भरी रहती है शाम तक, या रबड़ियां बनती है आजकल, शिकंजी बन जाती है, तो वो चीजें लें तो कहीं ना कहीं अपनी उस बॉडी में बच्चों को इन्हें देना ही चाहिए। तो अपन दूध कैसे भी पिए तो उसमें अपने को फायदा ही करेगा, इसलिए अलग से कोई चीजें नहीं मिलाई जाती है, जो ऊपर वाले की देन है उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। प्रीति जी, आज हम मिल्क डे बना रहे हैं तो मैं इंदौर के सभी भाई बहनों से ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने दैनिक जीवन में दूध से बनी चीजों का इस्तेमाल करें, क्योंकि दूध अमृत है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, और आजकल दूध में इतनी सारी वेराइटीज आ चुकी है कि हम उनके कई प्रकार से इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मिठाइयां हुई, मावा हुआ, पनीर हुआ, रबड़ी हुई, शिकंजी हुई, बहुत सारी ऐसी वेराइटीज हैं जो अपन दूध ना लें अगर उसकी जगह वो चीजें लें, अपने को दूध मान लो पसंद नहीं है तो वो भी ले सकते हैं, तो वो अपने लिए वही काम करेगा दूध जैसा ही। तो मैं सभी से नहीं निवेदन करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा अपने दूध को इस्तेमाल करें आप अपने दैनिक जीवन में, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जीवन में स्वस्थ और मस्त रहना है तो अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, और खासकर दूध का इस्तेमाल हमारे दैनिक जीवन में हमें जरूर करना चाहिए। सुनील जी, बातें आपसे बहुत सारी हो गई हैं, अब हम अंत में आपसे आपकी पसंद का एक गीत जानना चाहेंगे जो आपको इस खास मौके पर सुनना है।
1: प्रीति जी, अगर आपने गीत की बात करी है वो तो मुझे काफी पसंद है, म्यूजिक जैसे मैं सुनता ही रहता हूँ संगीत, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, ये वाला अगर आप गाना बजा दे तो बहुत अच्छी बात है।
0: वाकई में हमारा जो देश है, जो हमारी धरती है, जो हमारे पशु है, वो हमेशा सोने की तरह है, और हमारा देश जो है वो सोने की चिड़िया कहलाता है। तो चलिए आपकी पसंद का गीत सुनते हैं।

0: मेरे देश की धरती। गुड मॉर्निंग इंदौर श्रोताओं, आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं समाज सेवी पर्यावरण प्रेमी श्री मितेश त्रिवेदी जी।
1: गुड मॉर्निंग इंदौर। गुड मॉर्निंग प्रीति जी।
0: नमस्कार मितेश जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी नमस्कार।
0: मितेश जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप प्रकृति के बहुत करीब है, तो वृक्षारोपण के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और अभी तक आपने कितने पौधे लगाए हैं?
1: वृक्षारोपण के लिए जो प्रेरणा बोले या जरूरत बोले, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ सालों पहले जो हमारी गर्मी की छुट्टियां पड़ती थी तो उस समय मेरे ख्याल से 35 डिग्री बहुत होता था, लेकिन अभी 38-40 उसके बाद में 43-44 तक भी टेम्परेचर इंदौर का हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा महसूस होने लगा कि जिस तरह से बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग है और गर्मी का प्रकोप आप सभी लोग देख रहे हैं विगत पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से, तो इस बढ़ती हुई गर्मी से निजात पाने के लिए कहीं ना कहीं जो है वृक्षारोपण आवश्यक होता है और पेड़ों का संरक्षण जो कटाई है वो उसे भी रोकना होगा और नए पौधे लगाना होंगे, क्योंकि पेड़ और पौधे हमारे जीवन की रीढ़ की हड्डी है, मुझे ऐसा लगता है। ग्लोबल वार्मिंग में पेड़ पौधे जो हैं एक सुपर हीरो की भूमिका में होते हैं। पेड़ पौधों का हमारे जीवन में जो है अगर ऐसे बात करें तो आध्यात्मिक, धार्मिक और जो है औषधीय महत्व भी है, और इन सारी चीजों का महत्व तो है और इनका अगर लाभ लेना है हमें तो हमें पेड़ पौधे लगाना होंगे और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को संरक्षित करके भी रखना होगा।
0: तो यहाँ मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि अभी तक आपने कितने पौधों का वृक्षारोपण करा है?
1: वैसे तो हमने बचपन से ही अगर देखें तो पेड़ पौधे कई बार लगाए, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र में रहे हुए हैं तो पेड़ पौधे तो हमारा मतलब कहीं ना कहीं प्रेम रहा ही है। लेकिन अगर वृहद रूप से देखें तो 2024 में हमने पहली बार एक बड़े रूप में जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया था, और ये प्रोग्राम हमने ऐसा जाना पाओ जो परशुराम जी का मंदिर भी है और जन्मस्थली है वहाँ पर हमने किया था, और इस पहाड़ के ऊपर बहुत ही अच्छे दृश्य भी हैं और व्यंग्यम दृश्यों के साथ में समाज जनों के साथ में जाकर और वृक्षारोपण इस जगह पे हमने किया था, और तकरीबन 150 से अधिक पौधे हमने वहाँ पर लगाए थे पहली बार। तो ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम हर साल हम आयोजित करते हैं, 2024 में भी हुआ, 25 में भी हुआ और अभी 2026 में भी हमारे

0: आगामी प्रोग्राम इस तरह से रहेगा वृक्षारोपण का।
1: विश्व पर्यावरण दिवस आने वाला है तो पर्यावरण संरक्षण में पेड़ों की क्या भूमिका है, आप क्या कहेंगे?
0: पर्यावरण को बचाने के लिए, उसे संतुलित रखने के लिए पेड़ों का, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। जैसे कि पेड़ ही हमारे प्राण वायु ऑक्सीजन O2 को हमें देते हैं और ये सोर्स से CO2 को सोख कर रखने का काम भी पेड़ करते हैं और जिससे पृथ्वी का तापमान नियंत्रण रहता है, गर्मी से भी हमें निजात मिलती है।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही है। वृक्षारोपण करते समय सबसे बड़ी चुनौती क्या सामने आती है आपके लिए?
0: वृक्षारोपण करने से पहले जो सबसे बड़ी चुनौती होती है हमारे सामने, वो स्थान का चयन होता है। सही स्थान का चयन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर सही जगह पर आपने पौधा नहीं लगाया तो वो भविष्य में एक बड़ा स्वस्थ पेड़ बनकर नहीं हमें दिख पाएगा। दूसरी चीज ये है कि जिस जगह पे आप पौधे लगाने जा रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि मिट्टी की गुणवत्ता वहाँ किस तरह की है, क्या वहाँ पर प्रकाश और पानी की पूरे साल व्यवस्था रहती है या नहीं। पौधे लगाने के बाद ऐसा तो नहीं कि साल के बीच में कहीं मवेशी उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अब इस तरह के प्रश्न कई लोगों के रहते हैं कि साहब आप जाते हैं कहीं जंगल में पौधे लगाकर आ जाते हैं और उसके बाद में उसे मवेशी भी खा सकते हैं या वहाँ पे पानी कौन देगा, ये इस प्रकार के कई प्रश्न लोग करते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए, उन सभी प्रश्नों के लिए हमारा ये जवाब रहेगा कि जहां पर भी हमने अभी तक पौधारोपण किया है, वृक्षारोपण किया है, तो हम सबसे पहले तो वो स्थान का चयन ऐसा करते हैं कि वहां पर कोई टेक केयर करने वाला उनको हो, पौधों को कोई माली हो या किसी जो है आश्रम वगैरह में हम जाके लगाते, ताकि हम पौधारोपण करके आ जाएं, उसके बाद भी साल भर उन्हें जो है संरक्षित करके और वो माली वहां पर पानी वगैरह देते रहते हैं और बीच बीच में हम लोग देखने के लिए भी जाते हैं। जैसे अभी हाल ही में हमने धर्मपुरी में कहीं वृक्षारोपण किया था एक आश्रम में, वैसे तो वहां पर केयर करने वाले हैं, तो हमने जो यहां पर भी लगाए थे 100-150 पौधे ही लगाए थे, उस पौधे अभी भी स्वस्थ है और वो तकरीबन जब हमने लगाए थे तो 1.5-2 फीट के थे, अभी वो 5-6 फीट लंबाई के पौधे दिख रहे हैं।
1: जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके प्रयास बहुत हद तक सफल भी हुए हैं और ये जो प्रयास है ये बहुत जरूरी है हम सभी के लिए कि वृक्षारोपण हम करें ताकि भविष्य हमारा सुरक्षित हो जाए। लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस आने वाला है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति पेड़ लगाने के लिए आप उन्हें कैसे प्रोत्साहित करेंगे?
0: पेड़ हमारे जीवन का आधार है। आज हमारा लगाया पेड़ कल जरूर हमारी आने वाली पीढ़ियों को साफ हवा और छाया दे, स्वस्थ जीवन देगा। प्रकृति को बचाने और धरती को हरा भरा रखने के लिए हमें पौधे लगाना चाहिए। ये हमारे आने वाली पीढ़ी को भी हमें संदेश देना चाहिए और हमारे जो नए उम्र के बच्चे हैं, यंगस्टर, उनको भी प्रेरित करना चाहिए कि अगर वृक्ष है तो जीवन है। इससे हमें फल फूल भी मिलते हैं, जिसके लिए तो बिल्कुल मस्ट कंपल्सरी है कि अगर पेड़ है तो ही जीवन है।
1: क्या कभी ऐसा भी कुछ अनुभव हुआ है आपको कि जब किसी पेड़ ने आपको भावनात्मक रूप से प्रभावित किया हो, कुछ अटैचमेंट हो गया हो किसी वृक्ष से?
0: हाँ बिल्कुल, ऐसा होता है कि पेड़ जिस प्रकार से आप अपने घर के सदस्य होते हैं, आपके घर में कोई पेड़ होता है और उससे आपका एक आत्मीय प्रेम हो जाता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर पौधों से भी आप प्रेम रखते हैं और उनको समय समय पे पानी खाद वगैरह देते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक आत्मीय अटैचमेंट हो जाता है। मेरे पिताजी का स्वर्गवास 2009 में हुआ था और मैंने किसी को ये बात बताई नहीं थी। मैंने उनके श्रद्धांजलि निमित्त एक नीम का पेड़ कहीं लगाया, जब मैंने जाके देखा तो वो वट वृक्ष बन गया है, क्योंकि 2009 से और अब तक काफी लंबा समय है तो काफी बड़ा पेड़ हो गया। और मैं जब भी वहां से उस रोड से निकलता हूँ, वो मैंने कहीं मंदिर के बाहर लगाया था, तो वो एक आत्मीय प्रेम ऐसा है भावनात्मक रूप से कि मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं अपने पिता की छवि उसके अंदर, उस पेड़ में मैं देखता हूँ, आत्मीय प्रेम उससे हो गया है।
1: जी जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि आपने अपने पिताजी की स्मृति में पेड़ का रोपण किया जो अब एक वृक्ष बन गया है। हर साल व्यक्ति को कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए, क्या कहेंगे आप?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये समझिए कि वैसे तो अपने जीवन काल में कई पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप बहुत सारे पेड़ या पौधा रोपण नहीं कर पाए तो कम से कम एक पेड़ भी लगाएंगे, कहीं न कहीं जो है ऑक्सीजन और पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा वो। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस आने वाला है और इसकी तैयारियां भी इस तरह से हो कि कम साल में एक बार तो आप वृक्षारोपण इस दिन को कर सकते हैं। हालांकि अभी गर्मी का समय है तो अभी पौधे आप रोपण नहीं कर सकते क्योंकि पानी की व्यवस्था शायद नहीं हो पाएगी, लेकिन आप संकल्प तो ले सकते हैं कि अगले जो मानसून शुरू होने वाला है, जून और जुलाई के बाद से मानसून शुरू हो जाता है, तो उस समय आप सभी लोग कम से कम संकल्पित हों कि एक एक पौधा आप अपने जीवन काल में लगाएं।
1: बहुत अच्छी बात कही है आपने। हैं मितेश जी। अब आपकी पसंद का एक गीत हम जानना चाहेंगे जो आपको बहुत पसंद हो।
0: अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं पर्यावरण की और पेड़ पौधों की, तो एक मेरी

0: गुड मॉर्निंग इंदौर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं प्रकृति प्रेमी, एक गृहिणी जो न सिर्फ अपने घर की देखभाल करती हैं, बल्कि पौधों से बहुत प्यार करती हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं।
1: गुड मॉर्निंग इंदौर। नमस्कार प्रीति जी।
0: नमस्कार, आप अपना नाम बताएं।
1: मेरा नाम अंतिमा गौर है, मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरे घर में बहुत सारे पौधे हैं जिनकी मैं देखभाल करती हूँ और मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है।
0: क्या बात है, आपने कहा आपको प्रकृति से बहुत प्यार है, तो किस तरह के पौधे आपने अपने गार्डन में लगा रखे हैं?
1: देखिए प्रीति जी, मुझे पौधों से शुरू से ही बचपन से प्यार रहा। मैंने आजू बाजू में अपने दोस्तों के यहाँ, फ्रेंड्स के यहाँ बहुत पौधे लगे हुए देखे थे, तो मेरा हमेशा मन होता था कि मैं भी बड़े होके अपने घर में गार्डनिंग करूंगी। मैंने धीरे धीरे एलोवेरा लगाया, फिर मनी प्लांट लगाया। ऐसे ना, जब पौधों को मैंने देखा तो बहुत अंदर से आनंदित हुई मैं। फिर मैंने धीरे धीरे सारे प्लांट्स लगाना स्टार्ट किए और अब मेरे घर में बहुत तरह तरह के प्लांट है जो कि मेडिसिनल प्लांट भी हैं और मैं सब्जियां भी उगाती हूँ घर में। और मेरे यहाँ बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनसे मैं ना कई बार, जैसे तुलसी का पौधा है तो जब मुझे ऐसे कफ एंड कोल्ड होता है तो मैं तुलसी डाल लेती हूँ। मैंने अदरक घर में उगा के रखा है। बहुत से ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं जैसे एलोवेरा है, जिससे स्किन की केयर हो जाती है। ऐसे धीरे धीरे मेरा ये प्रकृति से प्यार जो है वो मेरे घर में छोटी छोटी चीजों, उनकी हेल्प से मैं थोड़े थोड़े ट्रीटमेंट भी कर लेती हूँ।
0: आपने बहुत अच्छी बात कही, पौधे लगाने का शौक है, लेकिन ये बताइए कि इतनी गर्मी पड़ रही है तो आप इन प्लांट्स की देखभाल कैसे करती हैं?
1: प्लांट्स की देखभाल ऐसे की जाती है जैसे अपने बच्चों की देखभाल की जाती है। धूप बहुत तेज हो रही है इसलिए पौधों को शेड में रखना चाहिए, ग्रीन शेड मैंने बना के रखा है। और दूसरा, उनको सुबह शाम पानी देना बहुत जरूरी है और मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत जरूरी है, और जो नमी होती है मिट्टी की वो बनाए बरकरार रखना चाहिए जिससे कि पौधों को ड्राई ना हो पौधे।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही है। घर में किस तरह की हम पौधे लगा सकते हैं कम जगह पर?
1: कम जगह पे मनी प्लांट लगा सकते हैं, पुदीना लगा सकते हैं, एलोवेरा लगा सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे छोटे धनिया होता है, धनिया भी हम उगा सकते हैं जिससे कि ये छोटी सी जगह में और बहुत सुंदर भी लगते हैं देखने में और इनका यूज भी होता है घर के।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। अंतिमा जी, ये तो आपको पता ही होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस आने वाला है और आज हमारा विषय भी यही है, तो ये बताइए आप क्या सोचती हैं इस विषय में?
1: विश्व पर्यावरण दिवस एक संदेश देता है जो कि सुरक्षा का संदेश है, और पौधों की सुरक्षा मतलब पूरे संसार की सुरक्षा, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये एक संदेश देता है जिससे कि हम पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा पौधे लगाएं और जहाँ पे भी जाएं, घूमने भी जाएं तो वहाँ एक पौधा जरूर लगाएं जिससे हमारे पर्यावरण की रक्षा हो सके। अगर मैं महिलाओं की बात करूँ तो महिलाएं घर और परिवार की देखभाल अच्छी तरह से करती हैं, घर में रहते हुए भी वातावरण की रक्षा कर सकती हैं और जल संरक्षण भी कर सकती हैं। देखा जाए तो मैंने घर में बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स लगा के रखे हैं जो कि वृक्ष बन सकते हैं, इसीलिए मैं क्या करती हूँ, वो छोटे प्लांट्स को गार्डन में जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको वहां पे लगा देते हैं जिससे कि वो वृक्ष बन जाते हैं और हमारा वातावरण शुद्ध हो जाता है, उनसे ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन मिलती है तो पूरा एयर कंडीशनर का काम करते हैं पौधे जिससे कि वातावरण स्वच्छ हो जाता है और बच्चे वहां खेलते हैं उस गार्डन में तो उनको फ्रेश एयर मिलती है। और दूसरी चीज, अगर आप देखें तो छोटे छोटे पौधे अगर घर में लगाते हैं और महिलाएं एक दूसरे से मिलने जब जाती हैं तो एक दूसरे को जो वो पौधे बांटती हैं तो घर घर पौधे लगते हैं और सुंदर वातावरण हो जाता है और स्वच्छ वातावरण रहता है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात कही है आपने।
1: इवन प्रीति, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मेरी बेटी का बर्थडे आता है तो हम सारे बच्चे जो घर में आते हैं उनको एक एक प्लांट देते हैं और घर में मैं बिटिया से एक प्लांट जरूर रोप करवाती हूँ जिससे कि है ना हमारे घर में और स्वच्छता का वातावरण बने, और वो सारे प्लांट्स हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी देते रहते हैं जिससे उनका घर भी सुंदर बना रहे। और सबसे बढ़िया बात ये होती है कि इतने सारे बच्चे जब ये चीजें देखते हैं कि हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, एक दूसरे को प्लांट दे रहे हैं, उनकी यूटिलिटी, उनकी इम्पोर्टेंस उनको पता चलती है जिससे उनको फ्यूचर में वो खुद भी अपने बच्चों को, और ये पूरे संसार के लिए एक सीख होती है, छोटे बच्चे घर परिवार का हिस्सा होते हैं वो सीखते हैं तो आगे जाके उनके दिमाग में ये सब चीजें रहती है और वो चीजें समझते हैं और अपने दोस्तों को भी समझाते हैं, और ये चीज वातावरण की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और इसी तरह से वो बच्चे हमारे घर में ही से ही प्रकृति से प्यार करना सीख जाते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि बच्चों को इस तरह से आप प्रेरणा दे रही हैं और ये भी सिखा रही हैं कि प्रकृति से किस तरह से प्रेम किया जाता है।
1: और मैं सभी सुनने वाली महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि घर में एक पौधा जरूर लगाएं, और क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं हमारे शरीर में और पूरे वातावरण में, जिससे कि एक ऊर्जा सी बन जाती है हमारे चारों ओर जो हमारी रक्षा करती है, एक वातावरण बनता है जो शुद्ध होता है। इसीलिए मेरी इस पर्यावरण दिवस पे सबसे रिक्वेस्ट है कि एक पौधा सभी लोग अपने घर में जरूर लगाएं।
0: बहुत ही प्यारा संदेश आपने दिया है कि एक पौधा जरूर सभी लोग लगाएं। अब अंत में अंतिमा जी से हम जानना चाहेंगे, ऐसा कौन सा गीत है जो आपको बहुत पसंद है, जो इस खास मौके पर आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे गाना बहुत पसंद है जिसके बोल हैं

0: ये गीत अगर आप सुनवाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है।
1: क्या बात है, आपका फेवरेट सॉन्ग है, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और मन वाकई झूमने लगता है जब हम प्रकृति के करीब होते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत।

श्रोताओं, स्वस्थ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन दोनों एक बेहतर भविष्य की नींव है। आइए हम संकल्प करें, प्रकृति की रक्षा करेंगे, पेड़ लगाएंगे, जल बचाएंगे और अपने पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाएंगे, क्योंकि धरती रहेगी हरी भरी तभी खुशहाल होगी हर जिंदगी।

आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात। अब अनुमति दें प्रीति जोशी को। नमस्कार।

0: श्रोतो, ये था कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी प्रीति जोशी। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: आठ बजने वाले हैं। थोड़ी देर में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
4: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण

0: प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: 10 राज्यों से राज्यसभा के 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
5: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
3: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
6: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है।
7: नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे।
6: सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी गए। कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता

0: सत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में पांचवां एफटीए, पश्चिम एशिया संकट के बीच दोगुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिन्दुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत में 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार, जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों की राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
2: '50 से 1970 के दशक के स्वर्णिम फिल्म संगीत युग में जब लता मंगेशकर और आशा भोसले का दबदबा था, तब सुमन कल्याणपुर ने अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी आवाज की मिठास और भावपूर्ण गायकी ने उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे सम्मानित पार्श्व गायिकाओं में शामिल कर दिया था।

सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1950 के दशक में फिल्मों में गायन शुरू किया। उनकी शुरुआती पहचान फिल्म मंगू और दरवाजा के गीतों से बनी। आगे चलकर उन्होंने हिंदी मराठी सहित अनेक भाषाओं में सैकड़ों गीत गाए।

उनकी आवाज इतनी मधुर और कोमल थी कि कई बार श्रोता उन्हें लता मंगेशकर समझ बैठते हैं। सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी हिंदी फिल्म संगीत की सबसे लोकप्रिय जोड़ियों में गिनी जाती है। उन्होंने साथ में 140 से अधिक युगल गीत गाए। ये गीत आज भी रेडियो तथा संगीत मंचों पर सुनाई देते हैं।

सुमन जी के कई ऐसे गीत हैं जो बहुत अधिक लोकप्रिय हुए और संगीत प्रेमियों के बीच आज भी बेहद सम्मान से सुने जाते हैं। इन गीतों में उनकी भावपूर्ण प्रस्तुति और शास्त्रीय संगीत की झलक स्पष्ट दिखाई देती है।

सुमन कल्याणपुर ने 6 दशक लंबे करियर में सैकड़ों गीतों को अपनी आवाज़ दी। हिंदी, मराठी और कई भाषाओं में उनका योगदान अतुलनीय है। संगीत जगत में उनकी पहचान एक सादगीपूर्ण, समर्पित और अत्यंत प्रतिभाशाली कलाकार के रूप में रही है।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने याद किया सुरों की उस साधिका को जिनकी आवाज समय की सीमाओं से परे है। सुमन कल्याणपुर भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके गीत आने वाली पीढ़ियों तक गूंजते रहेंगे।

आकाशवाणी परिवार की ओर से सुमन कल्याणपुर जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की शालिनी को अनुमति दीजिए। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए मराठी कार्यक्रम।

अभी आप मराठी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए भुवनेश कोमकली का गाया राग भटियार। तबले पर संगत कर रहे हैं निशांत शर्मा। विलंबित और द्रुत रचना 3 ताल में निबद्ध है।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने भुवनेश कोमकली का गाया राग भटिया सुना। तबले पर संगत कर रहे थे निशांत शर्मा। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले की जाएगी।
1: वह चिट्ठी है जिसमें दर्ज होते हैं जिले की धड़कनों के सुर, विकास की आहट, जनजीवन की हलचल और बदलते समय की तस्वीर। आज हम लेकर आए हैं इंदौर जिले की चिट्ठी, जिसे भेजा है हमारे संवाददाता मनीन्द्र कुमार दुबे ने और वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। पिछले एक महीने में जिले में क्या क्या खास हुआ, किन उपलब्धियों ने सुर्खियां बटोरी, किन अभियानों ने लोगों का ध्यान खींचा और प्रशासन से लेकर आमजन तक किन मुद्दों पर सक्रियता दिखाई गई, इन सबका लेखा जोखा हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही जानेंगे आने वाले दिनों में जिले के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बात सबसे पहले इंदौर में 9 से 13 जून तक होने वाले ब्रिक्स कृषि कार्य समूह के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की। इस बड़े आयोजन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक और नीति विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में कृषि और खाद्य सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। विदेशी मेहमानों के लिए प्रदेश की संस्कृति, कृषि उपलब्धियों और पर्यटन की झलक भी खास तौर पर दिखाई जाएगी। खेती की बात चली है तो किसानों के लिए भी एक उत्साहजनक खबर है। जिले में उन्नत तकनीक अपनाकर बेहतर उत्पादन और आय बढ़ाने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि अभियांत्रिकी से जुड़े चयनित किसानों को जिला स्तर पर 25,000 और विकासखंड स्तर पर 10,000 रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जिला रोजगार कार्यालय में बीते दिनों युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 91 युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार मिला। वहीं आज आयोजित होने वाले रोजगार मेले में 300 से अधिक पदों पर प्रारंभिक चयन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। रोजगार के साथ साथ युवाओं को सुरक्षा सेवाओं में अवसर दिलाने की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए शुरू की गई शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत इंदौर में 200 चयनित विद्यार्थियों को सैन्य बल, पुलिस और होमगार्ड जैसी सेवाओं की भर्ती के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं की प्रतिभा को खेलों में निखारने की तैयारी भी शुरू हो गई है। छोटी बेटमा स्थित शासकीय राजा शंकर शाह विशिष्ट बालक क्रीड़ा परिसर में एथलेटिक्स, हैंडबॉल और कुश्ती के लिए 200 सीटों पर चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 जून तक चलने वाली इस प्रक्रिया में 11 से 14 वर्ष तक के विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। अब बात करते हैं शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र की। शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र से 3 विषयों क्रिया शरीर, रचना शरीर और शालाक्य तंत्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इससे आयुर्वेद शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिले में अब तक 15,000 से अधिक एक्सरे किए जा चुके हैं। टीबी की रोकथाम के लिए प्रिवेंटिव उपचार में इंदौर जिला पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। विकास और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने की एक मिसाल महू तहसील के आशापुरा गांव में देखने को मिल रही है। यहां 60 एकड़ से अधिक क्षेत्र में आधुनिक और विशाल गौशाला विकसित की जा रही है। इस गौशाला में करीब 10,000 गायों के संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण ही नहीं बल्कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी इंदौर की चर्चा हो रही है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश के 15 जिलों में 48,000 से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए

जा चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 28,000 संयंत्र सिर्फ इंदौर महानगर क्षेत्र में ही स्थापित हुए हैं। आध्यात्म और पर्यटन के विकास के क्षेत्र में भी एक बड़ी घोषणा हुई है। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव में 17,41,00,000 रुपए की लागत से श्री परशुराम श्री कृष्ण लोक विकसित किया जाएगा। यह स्थान आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा। इसके साथ ही गंभीर और अजनार नदियों के पुनर्जीवन की योजना भी तैयार की जाएगी। न्याय व्यवस्था को लोगों के और करीब लाने की दिशा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भी सफल रहा। बीते दिनों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में 107 प्रकरणों का निराकरण किया गया और 47,00,000 रुपए से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। वहीं जिला उपभोक्ता आयोग में भी 57 मामलों का निपटारा कर 2,20,00,000 रुपए से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। और अंत में बात करते हैं उस संस्था की जो दशकों से देश दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाती रही है। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष और आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। देश विदेश के श्रोताओं ने इस लाइव कार्यक्रम में अपनी शुभकामनाएं और यादें साझा की। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ इस गरिमामय समारोह का समापन हुआ। इंदौर जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे इंदौर जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। गीतों पर आधारित कार्यक्रम
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
2: हेलो MH हॉटलाइन।

0: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस कार्यक्रम में आप अभी से लेकर 11 बजे तक हमें फोन कर सकते हैं और अपने पसंद के फिल्मी गीत सुन सकते हैं। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर नोट कर लें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड 0731। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड 0731। तो फोन करना शुरू कीजिए। अब लेते हैं आज का पहला फोन कॉल। हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हाँ जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन सा आप बोल रहे हैं?
1: मैडम जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
0: जी जी जी लोकेंद्र जी बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
1: ये गाना मैडम जी मुझे सुनना है, फिल्म का नाम है बदलते रिश्ते। इसका गीत है सुमन कल्याणपुर जी की आवाज में, टाइटल सॉन्ग है इसका बदलते रिश्ते ना जाने कैसे।
0: अच्छा जी
1: मैडम। और ये आज एक महान गायिका है जिनका नाम है सुमन कल्याणपुर जी। इन्होंने बहुत से पुराने ऐसे सुरीले नगमे गाए हैं, उनको यह श्रद्धांजलि स्वरूप सॉन्ग रहेगा मैडम।
0: जी जी बिल्कुल। और कैसे याद करते हैं सुमन कल्याणपुर जी को आप?
1: मैडम जी मुझे कल न्यूज के माध्यम से मालूम पड़ा, और सुमन कल्याणपुर जी के गाने में बचपन से सुनता आ रहा हूँ, और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज में जितना महा गायिका लता मंगेशकर जी की आवाज है, वैसी ही आवाज सुमन कल्याणपुर जी की भी।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: दोनों की आवाजों की एक दूसरे से तुलना हम नहीं कर सकते।
0: जी जी जी।
1: और अगर आपने एक कोई टेप रिकॉर्ड में लता मंगेशकर जी का गीत बजाया है और एक कोई टेप रिकॉर्ड में आपने सुमन कल्याणपुर जी का गीत बजाया है, दोनों गीत के अंदर कोई संगीत का जो कोई बहुत ही जानकार होगा और सुरीले नगमों को सुनता होगा वही बता सकता है, बाकी दोनों में कोई

0: परिवर्तन नहीं है आवाज में।
1: जी जी, बहुत सारे गीत जो सुमन कल्याणपुर ने गाए हैं, लोगों को लगता है वो लता जी के गाए हुए गीत।
0: हाँ जी जी, जी। और वो लगता है कि फिर जब उद्घोषक महोदय बोलते हैं कि अभी आपने जो ये गीत सुना है ये सुमन कल्याणपुर जी की आवाज में है, तो वो सुन के एकदम लगता है। तो मतलब दोनों की आवाज में कोई परिवर्तन
1: काफी
0: नहीं
1: समानता
0: है, और साथ काफी समानता भी है। और यह गीत मैं अपनी तरफ से सुमन कल्याणपुर जी की याद में, मतलब उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप यह गीत सुनना है मैडम
1: जी। आपको सुनवाते हैं और सभी श्रोताओं को धन्यवाद लोकेंद्र जी।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मैं तहसील बहादुरपुर, जिला अशोकनगर, एमपी से सूर्य प्रताप यादव बोल रहा हूँ।
0: जी सूर्य प्रताप जी, बताएं कौन सा गाना सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है जान की कसम।
0: जी, गाने के बोल।
1: बरसात हो रही है, बरसात होने दे।
0: क्या बात है, बरसात की याद आने लगी। गर्मी बहुत ज़्यादा सता रही लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है।
0: बहुत ज़्यादा पड़ रही है और
1: हवा 2-3 दिन से तो पूरी रात है हवा चल रही है, थोड़ा बूंद, आज तो थोड़ा बूंदाबांदी भी हो रही है यहाँ पर।
0: जी, और इसीलिए आपको बरसात की याद आई।
1: बिल्कुल
0: जी, बहुत अच्छी बात है। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद फ़ोन करने के लिए।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्ते मैम,
0: नमस्ते।
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: हाँ जी रानू जी,
1: क्या
0: बताए
1: हाल चाल
0: कौन
1: है
0: सा।
1: आपके?
0: बस हमारे हाल चाल अच्छे हैं, आप बताइए।
1: हम भी बढ़िया हैं। और मुझे आज एक गाना सुना है, मूवी का नाम है आप।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो नमस्ते।
0: नमस्कार। हेलो
1: हेलो हेलो मैं नमस्कार अनिल भंडारे सुजामा नगर से बोल रहा हूँ।
0: जी अनिल जी बताएं कौन सा गीत सुनेंगे
1: आज? आपने सुमन कलरपुर के याद में बहुत कार्यक्रम बढ़िया बहुत पूरे श्रद्धांजलि
0: जी जी
1: उससे गाने सुनने बहुत पसंद आया इसलिए मेरे से बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: धन्यवाद आपको भी आपने कार्यक्रम सुना
1: गाने बहुत पसंद आया आपने बनाया थे।
0: जी जी
1: सुमन कलरपुर को याद हम भी श्रद्धांजलि देते हुए दिलेक मंदिर का गाना सुना चाहेंगे आज।
0: दिलेक मंदिर का कौन सा गीत?
1: जुड़ी मेरी लाडली नाजुकी कली मेरी लाडली मेरी लाडली।
0: जी बहुत अच्छा गीत है
1: ये गाना। संदर्भ के संगीत में शैलेंद्र ने गीत लिखा है बहुत प्यारा गीत लिखा है
0: जी। चलिए आपकी तरफ से सभी श्रोताओं को हम सुनवा रहे हैं
1: जितना लोकप्रिय हुआ था कि गाना को मीठा लगता है सुमन कलरपुर का।
0: जी बहुत मीठा गाना है और आपने बहुत अच्छा गीत श्रद्धांजलि स्वरूप चुना है तो आइए सभी श्रोताओं को आपकी तरफ से ये गीत सुनवाते हैं।
1: एक बार कहना चाहूंगा कि जब तक चांद सितारे रहेंगे
0: जी
1: तो ये आवाज बुलंद रहेगी।
0: जी बहुत सही बात है। धन्यवाद भंडारे जी फोन करने के लिए। सुनिए अपना गीत।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते
1: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी योगेश जी, बताएं कौन सा गाना सुनेंगे?
1: फिल्म सिलसिला का टाइटल सॉन्ग सुनवा देंगे, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए।
0: जी जी जी, सिलसिला फिल्म देखी थी आपने योगेश जी?
1: अब बहुत पहले देखे थे, अभी हाल फिलहाल में नहीं देखे।
0: बहुत पहले देखी थी, याद है कुछ? थिएटर में देखी थी या टीवी पर देखी थी?
1: उस समय तो बचपन में ज्यादा थिएटर नहीं देखे हैं।
0: जी जी।
1: तब मतलब चाहे वो पहले VCR वगैरह होता था, DVD और उसके बाद धीरे धीरे फिर इसमें टीवी पर भी आने लगा।
0: जी जी जी
1: जी,
0: तो उसी पर आपने देखी है?
1: जी, पुराने फिल्मों से और गीतों से काफी लगाव है, जो
0: काफी लगाव
1: के हैं।
0: जी चलिए योगेश जी, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद
1: जी, बहुत बहुत।

0: हेलो एम एच हॉटलाइन।
1: इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब शालिनी जी आपकी आवाज का हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: क्या बात है हसीना जी, बताएं कौन सा गाना सुनेंगी।
1: जी हसीना जी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: जी
1: फिल्म का
0: जी
1: नाम
0: जी
1: है 10 लाख। 10 लाख और गाने के बोल हैं, आ लग जा गले दिल रुबा, कहाँ रूठ के चली ओ गुलाब की कली, तेरे कदमों में दिल है मेरा, लग जा गले दिल रुबा। ये सुना दीजिए।
0: जी जी बिल्कुल, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन
1: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं?
1: मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत प्रवीण।
0: जी जीनत जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगी?
1: जोनी मेरा नाम था।
0: गाने के बोल बताएं।
1: ओ मेरे राजा, खफा ना होना, देर से आई दूर से आई, फिर भी थी मजबूरी, मैंने वादा तो निभाया।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा गाना है आपने चुना। और बताएं अपने बारे में।
1: हाउस वाइफ हूँ मैम
0: जी। और
1: जी, तो फैमिली बता के फोन लगाया, अभी टाइम नहीं मिला था, 8-1 दिन हो गए मैम।
0: अच्छा, और गाना कितना सुनती हैं? गाने
1: गाने तो
0: दिन भर सुनती हैं।
1: जी
0: सुनने का शौक रखती हैं बहुत।
1: जी
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है।
1: और काम भी करती जाती हूँ,
0: स्पीड में काम होता है गाने सुनने के साथ साथ, या रुकावट आती है?
1: नहीं कोई रुकावट नहीं।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो,
0: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
1: धर्मपुरी जिला धार से सलीम मोहम्मद।
0: जी बताएं, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: 1972 के विश्वजीत गीत।
0: फिल्म का नाम?
1: शरारत।
0: शरारत फिल्म का कौन सा गीत?
1: दिलमन का गिर जाना अल्लाह अल्लाह।
0: शरारत फिल्म का गीत
1: अभी लगा था मैडम, कट गया था।
0: जी जी जी, चिलमन का गिर जाना।
1: हाँ, अल्लाह अल्लाह गिर के फिर टूट जाना अल्लाह।
0: इसकी शुरुआती बोल यही है?
1: जी यही मैडम।
0: 2001 में भी एक शरारत फिल्म आई थी। मैं देख लेती हूँ, अगर ये गीत मिलता है तो, नहीं तो फिर आप कोई और गीत की फरमाइश।
1: 1972 के है, विश्वजीत मुमताज शत्रुघ्न सिन्हा।
0: देखिए ये गीत तो उपलब्ध नहीं है, आप कोई किसी और गीत की फरमाइश कीजिए।
1: तो एक बनारसी बाबू का एक गीत है, ये जो पीने की आदत आम हो गई, तोबा तोबा शराब बदनाम हो गई।
0: अरे कुछ अच्छा सा गीत सुनिए आप। ये कैसे गीत?
1: तो फिर आप वो सुना दीजिए, दुल्हन एक रात की है, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी।
0: जी, दुल्हन एक रात की फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।
1: जी मैडम।
0: आपने अपना बनाया,
1: मेहरबानी आपकी।
0: जी, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया हुआ गीत है।
1: जी मैडम।
0: जी सुनवा रहे हैं आपको, धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: धन्यवाद।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन, हेलो एमएच हॉटलाइन
1: जी शालिनी जी को गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, कौन सा आप बोल रहे हैं?
1: जी मैं अरविंद अग्रवाल, श्रीनगर जिला महोबा से।
0: जी जी अरविंद जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जी फिल्म का नाम मन का टाइटल सॉन्ग, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे।
0: जी बहुत अच्छा गीत है, और चूंकि समय कम है आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। एक और फोन कॉल की गुंजाइश बाकी बचेगी हमारे पास, तो सुनिए अरविंद जी अपनी पसंद का गीत।
1: जी धन्यवाद।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं?
1: सूरज बोल रहा हूँ, जिला गुना मध्य प्रदेश से।
0: जी सूरज जी, बताएं कौन सा गाना सुनेंगे?
1: जंगबाज फिल्म का गाना है, तू तो मेरे लिए दुनिया में आई है।
0: जी जी, देखिए जंगबाज फिल्म के 3-4 गाने हैं
1: हाँ,
0: अवेलेबल।
1: वो शुरुआती बोल
0: गंगा
1: उसके
0: जैसा
1: वो
0: मन
1: है।
0: तेरा ये वाला
1: हाँ
0: गीत है
1: हाँ गंगा जैसा मन तेरा है, वही है वही है।
0: जी। चलिए आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गीत, क्योंकि ये कार्यक्रम का हमारा अंतिम गीत होगा। धन्यवाद
1: जी
0: फ़ोन
1: धन्यवाद।
0: करने के लिए।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का MH हॉटलाइन कार्यक्रम समाप्त करने की शालिनी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।

0: अभी आप MH हॉटलाइन कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ DTH के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR और वेव्स OTT ऐप पर। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।
2: फोन करें, गीत सुनें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारा ये कार्यक्रम आपकी फरमाइश से जुड़ा है और आपकी फरमाइश जुड़ी है टेलीफोन नंबर से। हमारा टेलीफोन नंबर है 2660902 और भोपाल का STD कोड है 0755। हम इंतज़ार है आपके फ़ोन कॉल्स का, जितना इंतज़ार आप करते हैं अपनी फरमाइश का।
3: हेलो,
2: फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम।
3: हाँ, फोन करें, गीत सुने।
2: जी, कौन बात कर रहे हैं?
3: मैं खैरो कला से रमेश चंद्र नायक बोल रहा हूँ, जनपद महोबा उत्तर प्रदेश से।
2: जी नायक जी, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया हैं जी।
2: क्या चल रहा है?
3: और ठीक ठाक है। अभी तो अब गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो अभी जो है खेती पाती सब हो गई है और जो है ब्याह शादी भी अभी रुकी हुई है, जून में है। हाँ, तो अभी तो फुर्सत के दिन चल रहे।
2: तो ये जो फुर्सत के दिन होते हैं, ये सिर्फ आराम करके गुजारते हैं या इसमें कोई काम करने की भी कोशिश करते हैं?
3: मैडम जी, इतनी गर्मी पड़ी है साल रिकॉर्ड तो। पहले तो ना ईट गुम्मा कहीं कुछ कर लेते गर्मियों में लोग, किसान लोग। इस साल जो है बहुत गर्मी पड़ी तो आदमी निकल नहीं पाए घर से।
2: बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे घरों में भी ऐसे बहुत से काम होते हैं जो किए जा सकते हैं? बच्चों के साथ समय गुजारा जा सकता है, घर में क्या चीज चल रही है, क्या है, काम में तो बहुत बार ध्यान नहीं दे पाते हैं।
3: एक हमारी सुनिएगा, ये घर का काम जैसे और से देखा करती, कहीं जो है पापड़ बनाना, कहीं मूंग की बड़ी बनाना, ये सब चलता रहता। अब लोग बागों का काम थोड़ी है, ये देहात में पड़ गए जो है। अब शहर में तो लोग बाग कुछ ना कुछ करते ही रहते।
2: काम कभी ऐसा थोड़ी कहता है कि हम देहात में हैं तो हमें आप नहीं कर सकते हो।
3: नहीं, और कोई काम नहीं रहता ना।
2: बात आपकी बिल्कुल बराबर है, लेकिन हमारा थोड़ा सा आग्रह कह लीजिए या सोच ये है कि घर के बाहर के काम और पैसे कमाने के काम ही नहीं होते हैं सिर्फ, घर के भीतर के भी काम होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप घर की महिलाओं के साथ रसोई घर में ही काम करें या हाथ बटाएं, हालांकि उसमें भी कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है यदि ऐसा करते हैं तो, लेकिन बच्चों के साथ समय गुजार सकते हैं।
3: पहले आप बताए जो है, दीदी जी आप बोल कौन रहे?
2: मैं अमिता त्रिवेदी बात कर रही हूँ।
3: अच्छा, जी जी जी जी
2: जी, बताइएगा कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
3: तुम मुझे सुनना है फिल्म एक महल हो सपनों में, सपनों का।
2: जी,
3: लता जी ने गाया है, फिल्म में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से ये भूले बुझेगा क्या।
2: पसंद का गीत आप तक पहुंच रहा है।
3: जी जी जी जी, धन्यवाद जी।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: हाँ अमिता जी नमस्ते।
0: जी नमस्कार।
1: मैं ग्राम उजान बोल रहा, गेंद्रलाल परिहार।
0: जी परिहार जी कैसे हैं?
1: बढ़िया मैम जी।
0: क्या चल रहा है?
1: मैं बैठे हैं फ्री, तो फोन लगा रहे हैं, गाना सुन रहा है।
0: क्या बात है जी। हम ये पूछ रहे थे कि जब आप लोग बिल्कुल फुर्सत में होते हैं, कोई ऐसा काम नहीं होता, तो ऐसा नहीं लगता कि घर परिवार के साथ या बच्चों के साथ समय गुजारा जाए?
1: हाँ सब, अभी क्या गर्मी ज्यादा पड़ रही, सब बच्चों के साथ ही रह रहे हैं क्या?
0: उनसे दोस्ती करने की, उनको जानने समझने की कोशिश की है?
1: हमें, मेरे दो पोते हैं छोटे छोटे,
0: जी
1: तो उनके साथ में रहता हूँ, जब उनको समय बिताता हूँ उनके साथ में।
0: समय बिताते हैं तो कुछ खेलते हैं, कहानियां सुनाते हैं या?
1: अभी क्या, 5 साल का है वो स्कूल जाता है, अभी छोटा है 1-2 साल का है, तो उसकी छुट्टी चल रही है, अभी मामा घर गए, बड़ा वाला तो छोटा है साथ में, तो उसके साथ खेलते रहते हैं।
0: हाँ, ये हम ऐसा लगता है कि जो फुर्सत का समय है उसे यदि हम अपने घर परिवार के साथ गुजारते हैं तो रिश्ते और बेहतर होते हैं, मजबूती से बन पाते हैं।
1: जी मैम।
0: तो बताइए कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में आप सुनना चाहेंगे?
1: मैडम फिल्म का नाम है वो 7 दिन।
0: वो 7 दिन,
1: इसका गाना है कंगना कंगना।
0: आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद
1: जी मैम, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो हेलो, नमस्ते।
0: जी, नमस्ते। कौन बात कर रहे हैं?
1: हरियाल जाटल, जिला सिपरी, मध्य प्रदेश।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बस मैडम जी, बढ़िया है। मौसम ठंडा है थोड़ा सा, कल पानी बस गया 2 दिन,
0: अरे वाह
1: और गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है।
0: बिल्कुल, थोड़ी सी राहत मिल गई है, ये तो आप सही कह रहे हैं। तो सिर्फ पानी गिरा या थोड़ा आंधी तूफान भी आया?
1: हाँ, आंधी भी आया, तूफान भी आया, आंधी ना पानी दोनों बराबर थे।
0: दोनों बराबर थे। कौन सा गीत कार्यक्रम में सुनना चाहेंगे आप?
1: हमको सुना दो दिल तो पागल है,
0: इसका कौन सा गीत?
1: गाने के बोल भी यही है और फिल्म का नाम भी यही है।
0: पहुंच रहा है आपकी पसंद का गीत आप तक।
1: मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ।
0: जी बोलिए।
1: मैंने मोबाइल से सुनता हूँ रेडियो, तो आजकल इससे मिस्टेक आ रही है, सुन नहीं पा रहा हूँ मैं।
0: क्या दिक्कत आ रही है उसमें?
1: दिक्कत ये आ रही है कि मैंने कल शाम को 5:30 बजे खुला और 6:30 बजे बंद हो गया। एक हफ्ते से माने रेडियो नहीं सुन पा रहा हूँ मोबाइल पर। क्या प्रॉब्लम आ रही?
0: प्रॉब्लम जब अपन मोबाइल से सुनते हैं तो ये प्रॉब्लम अपने मोबाइल की भी हो सकती है और नेटवर्क की भी हो सकती है। जरूरी
1: अब
0: नहीं है
1: ने,
0: कि वो
1: ने,
0: रे
1: नेटवर्क तो ये मान लो कि अपन आइटल का फोन चला रहे हैं, सादा वाला।
0: कई बार जैसे मौसम आपने कहा खराब है ना,
1: हाँ
0: मौसम का
1: हाँ
0: बहुत फर्क पड़ता है नेटवर्क पर, दोनों ही
1: हाँ
0: नेटवर्क पर, चाहे वो मोबाइल का नेटवर्क हो या आकाशवाणी के कार्यक्रम जिन ध्वनि तरंगों से आप तक पहुंच रहे हैं। तो
1: हाँ तो
0: थोड़ा
1: मैं
0: सा
1: कभी कभी 1 घंटा के लिए, कभी 2 घंटे, कभी 1 हफ्ते से परेशानी आ रही है सर।
0: उसको आप एक काम कीजिएगा, एक बार पूरा बंद करके रीस्टार्ट कीजिए और जो आपका मोबाइल ऐप है जिसपे आप सुनते हैं उसे
1: हाँ जी,
0: रिफ्रेश कर लीजिएगा। संभवतः जो दिक्कत आपको आ रही है वो नहीं
1: हाँ
0: आएगी। ठीक
1: ठीक है।
0: है।

0: फोन कर ले, गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी मेरा नाम मोलिना रॉय है, मैं सतना से बोल रही हूँ।
0: मोलिना, वाह, एक नए तरह का नाम है, तो इसका मतलब मीनिंग जान सकते हैं क्या होता है?
1: हाँ, वैसे तो संस्कृत में एक शब्द है मलिन
0: जी,
1: तो उसी का ही वर्जन जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया।
0: जी,
1: तो मोलिना का मतलब होता है मन की मलिनता को दूर करने वाला।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा नाम है आपका।
1: थैंक यू।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरी छोटी सी फुल्की की दुकान है।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये फुल्की आप घर पर ही बनाती हैं?
1: हाँ, सब मटेरियल में घर का बिना कलर यूज किए प्राकृतिक रूप का बनाती हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। बनाने का काम भी आप करती हैं और दुकान लगाने का भी आप करती हैं, या उसमें परिवार के लोग शामिल होते हैं?
1: मेरे परिवार, मेरी दो बेटियाँ और मेरे हस्बैंड और मैं।
0: अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। तो फुल्की के साथ और क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, और क्या ऐसा विशेष होता है कि लोग आपके यहाँ खाना उसे पसंद करते हैं?
1: वो जलजीरा मेन, और फुल्की की क्रंचीपन, और मेरे देने का तरीका, मतलब साफ सफाई में मैं विशेष ध्यान रखती हूँ कि किसी प्रकार का गंदगी ना हो।
0: हाँ,
1: जितना मुझसे बन सके
0: जी, मैं
1: जो सामान यूज करती हूँ वो अच्छे वाले करती हूँ। मेरे दोनों बच्चे खाते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चों के लिए भी मैं अच्छा सोच सकती, तो और बच्चे जो आते हैं तो वो भी मेरे लिए, मेरे बच्चे समान ही है, तो मैं उन्हें अच्छा दूँ।
0: जी, ये बहुत जरूरी होता है कि हम जो चीज दे रहे हैं वो ताजी हो और स्वच्छ हो, तो उसका स्वाद तो जो होता है वो आता ही है, साथ ही सेहत पर भी कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता। एक चीज और जानना चाहेंगे आप, कि आपको ऐसा लगता है किसी जगह विशेष पर दुकान होने से ज्यादा फायदा होता है चीजों में?
1: जी बिल्कुल, आप यदि कोई काम कर रहे हो और वो एरिया देखा जाए कि लोकेशन, मतलब वो कितना अच्छा काम करेगा, और आप अपना काम भी यदि अच्छा रखेंगे, तो शुरुआती में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, फिर जहाँ धीरे धीरे आपका काम लोगों को पसंद आने लगता है, तो एक टाइमिंग बन जाती है कि इतने समय में वहाँ ये चीज मिल जाएगी। तो उसी समय मेरा जैसे बंदा हुआ कि मैं सिर्फ इवनिंग में खोलती हूँ, और मॉर्निंग में मैं अपने घर का काम करती हूँ, दुकान का काम करती हूँ, बच्चे कॉलेज जाते पढ़ने के लिए, तो उनकी भी हेल्प की जरूरत पड़ती है। जब वो आते हैं तो मेरा सारा सामान सेट कराते हैं, गाड़ी में रखवा के देते हैं, फिर मैं जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बल्कि आपसे बात करके, जानकर तो अच्छा लगा ही, लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि अपन किसी भी काम को यदि बहुत व्यवस्थित ढंग से करते हैं और छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लेते हैं, तो यकीनी तौर पे हमें काम करने का एक संतोष तो मिलता ही है, हमारा नाम और हमारी चीज दूर दूर तक पहुंचती है। तो बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए?
1: वीर जारा का
0: कौन सा?
1: जी, दो पल के यादों का कारवा।
0: पहुंच रहा है आप तक, धन्यवाद।
1: मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: हाँ नमस्कार मैडम
0: जी। नमस्ते,
1: इंदौर से अनिल बामनिया बोल रहा हूँ मैडम मैं।
0: जी अनिल जी, कैसे हैं?
1: बस बढ़िया, आप कैसे हैं?
0: हम भी एकदम बढ़िया हैं। क्या चल रहा है?
1: बस अब छुट्टी का समय खत्म हो रहा है मैडम, कल से स्कूल चालू हो जाएंगे।
0: अच्छा, कल से शुरू हो रहे हैं?
1: हाँ, हम लोग हायर सेकेंडरी स्कूल में हैं।
0: जी जी।
1: तो एक्चुअली क्या 3 तारीख से 9वीं और 11वीं की एग्जाम है।
0: अच्छा अच्छा, तो मतलब ये टीचर्स के लिए छुट्टियाँ धीरे धीरे धीरे कम से कम ही होती चली जा रही हैं, तो क्या कुछ तैयारियां हैं आपके हिसाब से आपकी नए सेशन के लिए?
1: बच्चे जो नए आएंगे उनको हमको स्वागत करके और मोटिवेट स्वागत करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को समझाना पड़ता है कि आप अभी पुरानी स्कूल में थे जब तक आपने बहुत एंजॉय किया, लेकिन अब ये बड़ी क्लास हो गई है तो इसमें तुम्हारा कोर्स भी बढ़ गया है, आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगी पहले की अपेक्षा।
0: जी जी,
1: क्योंकि मिडिल और प्राइमरी के बच्चे होते ही है तो हाई स्कूल में थोड़ा कोर्स बढ़ जाता है।
0: और आपको ऐसा लगता है अनिल जी कि ये सब करके बच्चे थोड़े मोटिवेट होते हैं?
1: मैडम कहना चाहिए ये टीचर को यदि उसको गाइड करता है तो बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं इस बात को।
0: जी जी,
1: ये वाली बात है।
0: हाँ, अच्छी चीज है। बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए?
1: फिर तेरी कहानी याद आई मैडम
0: जी। इसका कौन सा गीत?
1: दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: हेलो नमस्ते
0: जी। नमस्कार,
1: ग्राम सोराना जिला से शेख हैदर खान बोल रहे हूँ।
0: जी खान साहब, कैसे हैं?
1: बस बढ़िया है। खेत में है मैडम?
0: क्या काम चल रहा है खेत में अभी?
1: अभी तो बस अगली फसल की जो सोयाबीन बोएंगे खेत में, बस उसी की तैयारी चल रही है। अब पर्याप्त पानी गिरेगा तो बोनी होगी।
0: बिल्कुल, तो बोहनी के पहले जो खेत की तैयारी होती है वो किस चीज से कैसे करते हैं आप?
1: अभी तो गहरी जुताई जैसे कल्टीवेटर है, पंजा है, इस तरह करते हैं।
0: तो कितने दिन लग जाते हैं खेत की तैयारी में?
1: मैडम अब तो क्या बहुत से साधन है, ट्रैक्टर के पास 2-4 दिन के मुश्किल से।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ
0: बताइए, कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में सुनना चाहेंगे आप?
1: ये यादगार फिल्म का सुनना है
0: जी।
1: लता जी की आवाज में गीत है, जिस पथ पर चला।
0: तो आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद।
1: ओके ओके, थैंक यू, है ना।
2: जिस पथ पर

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: जी, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में स्वागत है आपका
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से। मैं
0: जी। कैसे हैं,
1: बढ़िया हूँ।
0: क्या हो रहा है इस समय?
1: अब इस समय तो मैडम जी कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो थोड़े दिन बाद गेहूँ बाकी मक्का का की कटाई होने वाली है। फरुखाबाद
0: फरुखाबाद का मौसम क्या कह रहा है?
1: का मौसम तो ये है, 45 तापमान पहुंच गया, 45 पे।
0: इस समय तापमान लगभग सभी जगह इतना ही हो रहा है, और जितना तापमान मीटर स्केल पे कि 45 है कि 42 है कि 43 है, उससे कहीं ज्यादा महसूस हो रहा है इस वक्त।
1: हाँ, जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो अभी तो मौसमी फल का लाभ उठाना चाहिए, जैसे कलिंदे, खरबूजा, ककड़ियाँ, खीरा है, और इनका सेवन करना चाहिए। खीरा है तो इनका
0: जी
1: सेवन करना चाहिए,
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और पक्षियों को पानी रखना चाहिए, कहीं भी छत पे हो तो उनको पानी पर रखना चाहिए, दाना पानी रखना चाहिए, और भैंस पगु का ख्याल रखना चाहिए। गर्मी के मौसम में ज़्यादा पानी पानी टाइम से देना चाहिए, चारा पानी टाइम से देना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। तो ये सब करना चाहिए या आप भी करते हैं?
1: करना चाहिए और करते भी हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए?
1: आज शुरुआत फिल्म का नाम है दिल,
0: दिल।
1: और गाने बोला ओ प्रिया प्रिया।

0: हेलो,
1: हेलो
0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी, नमस्कार।
0: जी नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ। मैं ग्राम अकबरपुर, तहसील सरौन, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।
0: कैसे हैं आप?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं।
0: और क्या काम चल रहा है?
1: अभी कुछ काम नहीं चल रहा है, फुर्सत है, अभी तो बारिश का इंतजार है।
0: बारिश का इंतजार है तो ये
1: जी
0: फुर्सत का समय कैसे निकालते हैं?
1: जी कुछ नहीं, मोबाइल के जरिए से मोबाइल में फोन लगाते हैं, फिल्म संगीत सुनते रहते हैं, टाइम
0: अच्छा,
1: गुजर जाता है, कुछ टाइम निकल जाता है, सो लेते हैं, आराम कर लेते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। तो कौन सा गीत आज आपको सुनवाया जाए?
1: फिल्म का नाम है त्रिनेत्र।
0: त्रिनेत्र
1: जी,
0: जी, इसका कौन सा गीत?
1: एक गाना है ना कुमार सानू की आवाज में, धर्मेंद्र और मिथुन दादा पे शर्मा गया है, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा।
0: आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंच रहा है। धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि कुछ लोग किसी कार्य को स्वयं करने में कुशल होते हैं, जबकि अन्य लोग उस ज्ञान या कौशल को दूसरों को सिखाने में निपुण होते हैं। जो सिखाने की क्षमता रखता है वह उच्च श्रेणी के शिक्षकों में स्थान पाने के योग्य है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस दौरान लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए जा चुके हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने पिछले महीने की 17 तारीख को आयोजित हुई JEE एडवांस परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से 10,107 छात्राएं हैं। परिणाम JEEADV.ac.in पर देखे जा सकते हैं। भारत और बांग्लादेश 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में अपने

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म जूली से। स्वर प्रीति सागर के हैं, गीतकार हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और अमित खन्ना, संगीतकार राजेश रोशन। फरमाइश हमें आई है बेरड़ी से और श्रोता हैं राजेश, गुंजन, गायत्री, वैष्णवी, चंचल और अर्जुन। अगले श्रोता खंडवा से हैं संजय, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

मन्ना डे और किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म शोले से। गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीतकार आर डी बर्मन। फरमाइश हमें आई है गोला बाजार बक्सर से, श्रोता हैं श्रद्धा, अभय, परम, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। अगले श्रोता धामनी से हैं, समय लाल, युवांश, कुणाल, गोविंद, ममता और मुन्नी। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

आपकी फरमाइश में अगला गीत सुनेंगे फिल्म तीसरी मंजिल से। इस गीत को सुरों से सजाया मोहम्मद रफ़ी ने, गीतकार है मजरूह, संगीतकार आरडी बर्मन। फरमाइश इसके लिए आई है हमें नेपाल पैलेस सागर से, श्रोता है तिलक, मीना, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। अगले श्रोता बलिया से हैं, ओम प्रकाश, ऊषा, अमित और प्रतीक, रोशनी, प्रांजल, अवदेश, प्रीति और नवनीत।

एन इवनिंग इन पेरिस। इस फिल्म से अगला गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। फरमाइश हमें आई है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से। श्रोता हैं हरदेव, बलविंदर, जयतेग और मीरा।

अगला गीत आप सुनेंगे हेमलता के स्वर में, फिल्म का नाम अखियों के झरोखों से। गीतकार रविंद्र जैन, संगीतकार रविंद्र जैन। फरमाइश हमें आई है राजन

सिंध गांव छत्तीसगढ़ से श्रोता हैं राधिका, अनिष्का और तन्मय, साथ में हैं रोशन, कौशल्या, हेमलता, देवांगन, डिंपल। अगले श्रोता दतरेंगी से हैं, द्वारिका, किशोर, दीपक और झावेंद्र। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

0: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
3: सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
7: हाँ हाँ क्यों नहीं,
6: और झूलते झूलते सुनते हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। अरे दीदी धीरे धीरे।
1: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
8: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
9: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
10: क्या?
9: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
10: वो कैसे?
9: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
10: पर सुनेंगे कैसे?
9: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
4: इस समय आप हैं हमारे साथ।
5: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक सिसकियां का छठवां भाग।
1: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

प्रस्तुत है धारावाहिक की छठी कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना, सायरा मुश्ताक को अपने घर वालों से अलग होकर रहने के लिए कहती है। इस बात पर मुश्ताक को गुस्सा आ जाता है और वो उसे लिए बिना वापस लौट जाता है। फाता सायरा को मुश्ताक से तलाक दिलवाने के मंसूबे बनाने लगती है। और अब आगे।

0: आओ फाता, आओ बैठो। कैसे आना हुआ?
1: अरे बहुत जरूरी काम था तुमसे।
0: कहो क्या काम है?
1: नहीं, पहले कबूल करो कि ये काम करोगे और किसी से कुछ नहीं कहोगे।
0: अरे पहले काम तो बताओ।
1: नहीं नहीं, पहले कबूल करो।
0: अच्छा कबूल करता हूँ, किसी से नहीं कहूंगा।
1: एक तलाकनामा भिजवाना है।
0: तलाकनामा किसका?
1: सारे का।
0: सारे का तलाकनामा?
1: हाँ सारे का तलाकनामा। मैं चाहती हूँ कि मुश्ताक सारे को तलाक दे दे तो मैं उसका निकाह कहीं और कर सकूं।
0: फाता, लेकिन मुश्ताक में क्या कमी है?
1: अरे क्या तुम्हें मालूम नहीं कि उसने मेरे सामने ही सारे को मारा था?
0: सुना तो था, पर इसका ये नतीजा निकलेगा ये मुझे नहीं मालूम था।
1: अरे मुझे ही क्या मालूम था कि मेरा अपना सगा भाई ऐसा निकलेगा और

0: वो उसका लड़का मुश्ताक, अरे देखने भर से ही शरीफ लगता है। अरे खुदा ना करे किसी को ऐसा शौहर मिले जो एक माँ के सामने उसी की बेटी को मार सकता है, वो पीछे कैसा बर्ताव करता होगा।
1: सो तो हैं, पर यह तो सारे घरों में होता ही रहता है। थोड़ा ऊंच नीच तो चलता है।
0: हाँ थोड़ा बहुत तो होता है, मैं भी मानती हूँ, पर पानी जब सर से ऊपर उठ जाए तो उसका इलाज तो करना ही पड़ेगा ना।
1: सारी इस तलाकनामे को मानेगी?
0: मानेगी क्यों नहीं, मैं उसके भले के लिए ही तो कर रही हूं ये सब।
1: फाता, एक बार तुम सोच लो, इतनी जल्दबाजी क्या अच्छी है? सारे और मुश्ताक के बारे में तो सोचो, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
0: प्यार हाँ करते थे, अब नहीं। मैंने जो देखा है उसके बाद तलाक होना ही एक जरिया है जो मेरी बेटी को बचा सकता है।
1: तुम्हारे घर की बात है, तुम जानो। हाँ, मुझे कब जाना है?
0: अच्छा तो सुनो, कल ही तुम मुश्ताक से मिलकर तलाकनामे पर सहमति ले लेना और उस पर दबाव बनाना कि तलाक के लिए मान जाए।
1: ठीक है, मैं कल ही मुश्ताक के पास जाता हूं।
0: और याद रहे, काम होने से पहले किसी को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो काम बिगड़ सकता है।
1: जैसा तुम ठीक समझो, मैं किसी से नहीं कहूंगा।
0: ठीक है, अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज।

0: फजी, वक्त कितना बदल गया है। आजकल के बच्चे बड़ों की सुनना ही नहीं चाहते।
1: हाँ, उनके ख्यालात बदल रहे हैं और हमारे ख्यालात जैसे पीछे छूट गए हैं। अब उनके और हमारे ख्यालात मेल नहीं खाते।
2: करीम चाचा, आपसे कोई बाहर मिलने आया है।
0: कौन है?
2: वो मैं नहीं जानता, आपका पता पूछ रहा था। वो बाहर खड़े हैं।
0: कौन हो सकता है? अच्छा जा, उन्हें अंदर भेज दे।
2: ठीक है चाचा।
3: सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम। मैंने आपको पहचाना नहीं।
3: मैं मुश्ताक से मिलने आया था।
0: कहिए, क्या काम है मुश्ताक से?
3: फाता ने तलाकनामा भिजवाया था।
1: तलाकनामा?
0: फाता ने तलाकनामा भेजा है?
3: फाता चाहती हैं कि मुश्ताक सादे को तलाक दे दे।
0: क्या? ये आप क्या कह रहे हैं?
3: फाता ने जो कहा मैं वही कह रहा हूँ। मुश्ताक को बुलवा दे तो बेहतर होगा।
0: फजी, मुश्ताक को तो भेजना।
1: हाँ, भेजती हूँ।

0: तो आप आए हैं?
1: हाँ, मैं तलाक नामा लाया हूं।
0: अगर आप अपनी इज्जत की सलामती चाहते हैं तो यहां से चले जाएं। इस मुद्दे पर मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा।
1: नाराज होने की कोई बात नहीं, जब सारे ही तलाक चाहती हैं तो आपको क्या परेशानी है उसमें?
0: नहीं, यह सच नहीं है। सारे ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझसे तलाक नहीं ले सकती।
1: मुश्ताक, मैं तलाक का संदेशा लाया हूं और आप सारे को तलाक दे दें, सारे भी ऐसा ही चाहती हैं।
0: आप अपनी काली जुबान को बंद करें और यहां से चले जाएं, यही आपकी बेहतरी के लिए ठीक होगा।
2: मुश्ताक घर आए।

0: मेहमानों से इस तरह बात नहीं करते।
1: मेहमान मेहमान मेहमान की तरह होते हैं, यूं तलाकनामा लेकर नहीं आते।
0: आप अभी जाएं, एक बार फाता से बात करने के बाद हम कुछ जवाब देंगे।
2: सुनिए, अब बात करने से कोई फायदा नहीं। सारिये भी यही चाहती हैं कि मुश्ताक उसे तलाक दे दे, और इसलिए फाता ने मुझे तलाकनामा लाने को कहा है।
1: लाइए, मैं तलाकनामा लिख देता हूँ।
0: मुश्ताक, ये तुम क्या कर रहे हो?
1: अगर अगर सारे यही चाहती है अब्बू कि वो मुझे तलाक दे, तो मैं तलाकनामा लिख देता हूँ।
0: गुस्सा ना करो मुश्ताक, वक्त की नजाकत को समझो। ये वक्त आराम से सोचने और इस परेशानी का हल निकालने के बारे में सोचने का है, न कि गुस्से में गलत फैसला लेने का।
1: ये गलत फैसला नहीं है अब्बू। जब सारे ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तलाक देना ही बेहतर होगा।
0: मुश्ताक, परेशानी का ये हल नहीं है, तुम्हें समस्या की तह तक जाना चाहिए। आखिर कोई तो वजह होगी जिसने तलाक लेने की नौबत ला दी।
1: अब्बू, सारे चाहती है कि मैं आप लोगों से अलग रहूं। और मैं ऐसा नहीं कर सकता, और यही वजह है कि सारे मुझसे तलाक चाहती है।
0: जहां तक मैं जानता हूं, सारे ऐसा नहीं कर सकती। देखो मुश्ताक, तुम जरा फिर से सोच लो। तुम्हारा जल्दबाजी में लिया गया फैसला उसकी जिंदगी बर्बाद ना करे। देखो, सारे नादानी कर रही है, उसे समझाया जा सकता है। बेटा, रिश्ते इतनी आसानी से नहीं बनते टूटते। इतनी जल्दी ना करो, हमें जरा सोचना चाहिए।
1: अब्बू, अब कोई फायदा नहीं है। मैं तलाक नामे पर दस्तखत कर देता हूँ।
3: मुश्ताक, जल्दी ना कर बेटा। सारे अच्छी लड़की है और नेक दिल भी। कहीं कुछ दिक्कत है तो उसे दूर करने की कोशिश कर बेटा। सारे अगर तेरे साथ रहना चाहती है तो यही सही। तू कुछ दिन उसके साथ अलग रह ले। तू समझाएगा तो शायद मान जाए।
0: हाँ बेटा।
1: नहीं अम्मी, वो कुछ नहीं मानेगी। जिसके ख्यालातों में बुजुर्गों के लिए कोई इज्जत ना बची हो, उसे उसे परिवार के बारे में नहीं समझाया जा सकता।
0: मुश्ताक, हमारे लिए परिवार अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को जीवित रखने का माध्यम है। जहां बाप दादाओं के साथ हमारे बच्चे उस सभ्यता और संस्कृति का पोषण करते हैं। लेकिन समय बदल रहा है बेटे, लोगों के विचार भी बदल रहे हैं। ऐसे में सारे का ये सोचना कि वो तुम्हारे साथ अलग रहे, तो इसमें गलत क्या है?
1: अब्बू, आपको इसमें कोई गलती नहीं दिखती और दिखेगी भी नहीं, क्योंकि आप यही चाहते रहे हैं कि आपके बच्चे खुश रहे, और इसीलिए आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि मैं सारे की बातों को मान लूं। यह मुझे कबूल नहीं है अब्बू, और आप मुझ पर यह मानने का दबाव भी ना डालें।
0: मुश्ताक, तुम मेरी बात मानो या ना मानो, पर जो फैसला तुम कर रहे हो वो मुझे पसंद नहीं, और ये तुम्हारे और सारे के लिए भी ठीक नहीं। देखो बेटे, हम फाता और हसन भट्ट से बात करेंगे, वो इस मसले का हल निकालेंगे।
1: अब्बू, आप हमारी बेहतरी के लिए सोच रहे हैं।
0: हाँ बेटे,
1: पर सारे ऐसा नहीं सोच रही। फाता ने तलाकनामा लाने को आदमी भेजा है, और अब सुलह होने की कोई गुंजाइश नहीं।
0: देखो बेटे,
1: मैं तलाकनामे पर दस्तखत कर देता हूं। ये लीजिए।
3: मुश्ताक,
0: बेटा।
3: मुश्ताक, दरवाजा खोल मेरे बच्चे। मुश्ताक, दरवाजा खोल मेरे बच्चे। दरवाजा खोल, अजी सुनते हो? मुश्ताक ने दरवाजा बंद कर रखा है।

0: क्या
1: मुश्ताक?
0: अरे अरे मुश्ताक, ऐसा ना कर बेटा। देख देख, मैं पहले ही कह रहा था जल्दी ना कर। अरे अब हमें सजा ना दे बेटा, दरवाजा खोल बेटा।
1: मुश्ताक, दरवाजा खोल दे मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ तुझे इसका गम है, पर अपने साथ जुल्म ना कर बेटा। बाहर आ जा, आ जा बेटा, दरवाजा खोल, खोल
0: दे
1: बेटा।
0: दे दे, दरवाजा नहीं खोलेगा।
1: अजी कैसे नहीं खोलेगा, खोलेगा क्यों नहीं? मुश्ताक, दरवाजा खोल बेटा, खोल दे।
0: वो अभी इस स्थिति में नहीं है कि तुम्हारी और हमारी बात सुने और माने। छोड़ दो उसे। जब भावनाओं की चोट लगती है तो ऐसा ही होता है। वो सारे से बेबना मोहब्बत करता है। जब हमें सारे के इस फैसले से तकलीफ हो सकती है तो भाई मुश्ताक की हालत तो और भी खराब होगी। आखिर सारे उसकी बेगम रही है।
1: मुश्ताक का ये हाल उसी के कारण है। अरे यहाँ भी तो अच्छी भली थी, मायके गई तो ना जाने क्या हो गया।
0: अरे अब छोड़ो उसे, अब हमें मुश्ताक को संभालना है।
1: पर वो तो दरवाजा ही नहीं खोलता, हम क्या करें?

0: पाता पाता, देख मैं तेरे लिए खुशखबरी लाया हूँ।
1: लगता है काम हो गया। काम हो गया क्या?
0: होता क्यों नहीं, पहले तो मुझे देखते ही आग बबूला हो गए थे, लेकिन मैं भी अड़ गया कि तलाक नामा तो तुम्हें देना ही होगा, सो आखिर मुश्ताक को मानना ही पड़ा।
1: और मुश्ताक के अब्बा करीम नहीं थे?
0: करीम तो था, पहले तो मुश्ताक को समझाया, फिर मुश्ताक ने तलाक नामा पे दस्तखत कर दिया और करीम भी चुप हो गया।
1: तुमने मेरा काम आसान कर दिया, अब सारे और मुश्ताक को तलाक से कोई नहीं रोक सकता। मेरे लिए मुबारक दिन है या अल्लाह।
0: अच्छा तो अब मैं चलता हूँ।
1: इस तलाक नामे की खबर अभी किसी को ना देना।
0: जैसा तुम कहो, पर इससे तुम्हें क्या फायदा होगा। अच्छा मैं चलता हूँ।

0: अम्मी अम्मी
1: हाय सारे तुम
0: अम्मी, किसके तलाक नामे की बात कर रही हैं?
1: किसी की नहीं। तुम जाओ, अभी तुम जाओ।
0: बताओ ना अम्मी, ये किसका तलाक नामा है?
1: अरे हाय, मेरा तो नसीब फूट गया। हाय, मैं बर्बाद हो गई, मैं
0: हुआ क्या है
1: बर्बाद हो
0: अम्मी?
1: गई।
0: तो रो क्यों रही है?
1: अरे रो नहीं तो क्या करूं, मेरा तो नसीब ही खोटा निकला।
0: बेवजह अपने नसीब को
1: हाय
0: क्यों कोस रही है अम्मी?
1: ना कोसू तो क्या करूं मेरी बच्ची, मुझे क्या पता था कि मेरे भाई का लड़का ही ऐसा करेगा।
0: आखिर हुआ क्या है अम्मी?
1: ये तलाकनामा आया है।
0: तलाकनामा?
1: हाँ, तलाकनामा मुश्ताक ने भेजा है।
0: क्या? नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। मुश्ताक ऐसा नहीं कर सकता अम्मी।
1: नहीं कर सकता, मुश्ताक ने ऐसा ही किया है। उसने तलाकनामे पर दस्तखत भी किए हैं।
0: नहीं अम्मी,

0: पाता, ये क्या हो रहा है? सारा क्यों रो रही है?
1: मुश्ताक ने तलाक नामा भेजा है।
0: क्या? मुश्ताक ने तलाक नामा भेजा है?
1: हाँ, अभी एक आदमी मुश्ताक का तलाक नामा लेकर आया था, जिस पर मुश्ताक के दस्तखत भी हैं।
0: मुश्ताक ने तलाक नामा भेजा है? नहीं नहीं, मैं अभी जाता हूँ, करीम व फजी से बात करनी होगी।
1: अरे अब कोई फायदा नहीं है, मुश्ताक ने सारे को तलाक दे दिया है, अब उन लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं, समझे?
0: अरे कोई इतनी आसानी से तलाक कैसे दे देगा? मैं बात करूंगा, मुश्ताक से पूछूंगा कि उसने सारे को तलाक क्यों दिया।
1: खबरदार जो वहां गए, जिसने सारे को बदनाम किया उसके दहलीज पर जाने की कोई जरूरत नहीं है।
0: फाता, अगर कहीं गलती है तो हम उसे दूर कर सकते हैं, पर हमें पता तो चले कि तलाक देने की वजह क्या है।
1: अरे वजह जो भी हो, तलाक नामा भेजने के बाद हमारा मुश्ताक से कोई रिश्ता नहीं है।
2: मुश्ताक,
0: सारे सारे बेहोश हो गई। फाता, पानी लाओ, उठाओ इसे।
1: अभी लाती हूँ।
0: अरे जल्दी करो।

0: अरे अरे सुनो भाई, सुनो सुनो,
1: हाँ
0: कुछ कुछ बातें करनी हैं, बहुत जरूरी।
1: कहो फाता, क्या काम पड़ गया?
0: अरे भाई, एक लड़का ढूंढना है,
1: लड़का किसके लिए?
0: अपनी सारे के लिए।
1: सारे के लिए?
0: अरे हाँ, मुश्ताक ने तो सारे को तलाक दे दिया है ना, अब उसका दूसरा निकाह करूंगी।
1: फाता, जो लोग सारे को जानते हैं वो उससे निकाह करेंगे नहीं, सो लड़का ढूंढना बड़ा मुश्किल है।
0: या खुदा, मुश्किल क्या है, सारे को एक बार जो देख ले वो निकाह से इनकार नहीं कर सकता।
1: हाँ वो तो है, लेकिन सारे के लिए कैसा लड़का चाहिए?
0: देख, लड़का ऐसा हो
1: हाँ
0: जो अच्छा खाता कमाता हो,
1: हम्म,
0: और अगर वो घर जमाई भी बनकर रहे तो मैं अपना घर उसे बड़ी खुशी से दे सकती हूँ।
1: देखता हूं, अगर ऐसा लड़का मिलता है तो मैं बताता हूं।
0: लेकिन भैया, ये काम जल्दी हो जाए तो बेहतर है। अच्छा, अब तू जा।
1: जी जाता हूं, अगर कोई बात बनी तो जरूर बताऊंगा। अच्छा खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज बेटा।
2: पाता, ये आदमी क्यों आया था?
0: काम था।
2: उस आदमी से क्या काम पड़ गया तुम्हें?
0: अरे सारे के लिए लड़का ढूंढने को कहा है।
2: फाता, तू ये क्या कर रही है?
0: ओफो, अपनी सारे के लिए लड़का देख रही हूं, और उसके लिए भी यही ठीक होगा, शादी करके अपने घर चली जाए।
2: फाता, अभी अभी उस बेचारी को ये सदमा लगा है और तू उसके लिए एक लड़का देख रही है?
0: या खुदा, उसके भले के लिए ही कर रही हूं, मुश्ताक और उसके घर वालों को मैं दिखा दूंगी कि मेरी लड़की के लिए लड़कों की कोई कमी नहीं है।
2: अरे फाता, ये समय सारे को सहारा देने का है और तू उसे एक और सदमा देना चाहती है?
0: मैं सारे को रानी बनाना चाहती हूं।
2: फाता, जमीन पर रह और जमीन की सोच, आसमानों के ख्वाब पूरे नहीं होते। बड़े अरमानों से उसकी शादी की थी और उसका सदमा वो अभी झेल भी नहीं पाई है, और तुम उसके लिए?
0: अरे बंद करो ये अपनी काली जुबान, जब देखो तो बुरा ही सोचोगे। अरे कभी तो अच्छा बोला करो।
2: फाता,
0: एक बात सुन लो मेरी, मैं सारे की शादी करूंगी, और अगर तुम सारे की खुशी चाहते हो तो चुपचाप सिर्फ देखते रहना, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है।
2: वादा, तुम सारे के साथ ज्यादती कर रही हो। तुम मां होकर उसके भले के नाम पर तुम पाप कर रही हो। मुझे दुख है कि तुम मां होकर उसकी भावनाओं को नहीं समझ पा रही हो।
0: बेटी की फिक्र है लेकिन तुम्हें नहीं। इंशाल्लाह अब मैं सारे के लिए ऐसा लड़का पसंद करूंगी जो खूब दौलत कमाता हो और सारे से मोहब्बत करे, साथ ही हमारी भी मदद कर सके। अरे
2: वादा, दुख हो रहा है मुझे तुम्हारी इन बातों से। अरे बाप हूं मैं उसका, उसकी खुशी की फिक्र मुझे भी है, पर मैं तुम्हारी तरह मतलब फरोश नहीं हूं। जो अपने सुख के लिए बेटी का रिश्ता किसी पैसे वाले को दे दूं।
0: अम्मा चुप करो, या खुदा आज तक कोई काम मुबारक तरीके से करने दिया है मुझे? और अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं तो जाकर रहो उस चौकीदारी कोठी में। मैं तुमसे पूछने नहीं जाऊंगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है।
2: अरे फाता, तुम हमें सुकून से जीने दोगी या नहीं, या अपनी इन्हीं करतूतों से हमें परेशान करती रहोगी? अरे कभी तो चैन की जिंदगी बसर करने दो।
0: अम्मा मियां, चैन की जिंदगी बसर करने के लिए तो ढेर सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, और वो तुम्हारे पास नहीं है।
2: फाता, पैसों से चैन नहीं मिलता, समझी? और अगर तुम अपनी आदत को नहीं सुधारोगी तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी कभी चैन नहीं मिलेगा।
0: जाते क्यों नहीं? अगर इतना ही दुख है मेरे काम से तो जाओ, जहां जाना चाहते हो चले जाओ। मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत भी नहीं है। अब जो करूंगी मैं अपनी मर्जी से करूंगी।
2: या खुदा, तूने इसे किस मिट्टी का बनाया है? जाता हूं।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से, में सिसकियों का भाग 6। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि कुछ लोग किसी कार्य को स्वयं करने में कुशल होते हैं, जबकि अन्य लोग उस ज्ञान या कौशल को दूसरों को सिखाने में निपुण होते हैं। जो सिखाने की क्षमता रखता है वो उच्च श्रेणी के शिक्षकों में स्थान पाने के योग्य है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस दौरान लाखों

दोनों देशों के बीच ये पहली बैठक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 30 जून तक पूरे देश में खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा, जिसमें वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और जनप्रतिनिधि गांव गांव जाकर किसानों को जागरूक करेंगे कि उत्पादन भी बढ़े और खेत भी सुरक्षित रहे। प्रदेश में अभियान की शुरुआत आज रायसेन जिले के रामसियां गाँव से की जा रही है और वियतनाम के दानांग में 17 वर्ष से कम आयु की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण।

स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। स्वीकारें अपनी रेडियो दोस्त दिव्या का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त और मस्त भी होंगे, साथ ही हमारे कार्यक्रमों को भी सुन रहे होंगे। श्रोता मित्रों, स्वस्थ और मस्त रहना हमारे हाथ में होता है, बस जरूरत होती है सतर्कता और जागरूकता की। अब जैसे हम बात करें कि हम अपने हेल्थ नंबर की, तो ये 14 अंकों की एक यूनिक डिजिटल पहचान है जो आपके मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखकर डिजिटल रूप से एक जगह लिंक करता है, जिसे आभा यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट भी कहा जाता है। यह नंबर आपको देश भर में एक डिजिटल स्वास्थ्य पहचान देता है, जिसके जरिए आप डॉक्टर के पर्चे, लेबोरेटरी की रिपोर्ट और दवाइयों का विवरण डिजिटली रूप में सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री कहीं भी कभी भी ऑनलाइन देख सकते हैं। आप इसे आभा पोर्टल या मोबाइल नंबर आधार कार्ड का उपयोग करके भी बना सकते हैं। कोई भी नागरिक aabha.gov.in पर जाकर अपना आभा नंबर बना सकता है। इस नंबर से आप अपनी डॉक्टर के साथ स्वास्थ्य इतिहास को सुरक्षित रूप से साझा कर सकते हैं। श्रोताओं, सही जानकारियां हमें सुविधा और सुरक्षा दोनों में मदद करती हैं और हम विपरीत परिस्थितियों में भी सहजता से उचित व्यवहार करके अनुकूल परिस्थितियों में वापस आ सकते हैं। तो आप भी इस बात से तो सहमत होंगे, तो आइए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप सबको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, अब कार्यक्रम में समय हो गया है एक भेंट वार्ता का, तो आइए आपको सुनवाते हैं घुटनों का दर्द और ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण बचाव और उपचार विषय पर डॉक्टर प्रदीप जैन से मनीष गजभिये की बातचीत। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम में स्वागत है आपका, मैं हूँ मनीष गजभिये। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में घुटनों के दर्द की समस्या तेजी से बढ़ रही है। चलने फिरने में दर्द, सूजन, अकड़न जैसी समस्या लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रही है। घुटनों के दर्द के मुख्य कारण क्या है, क्या समय रहते इससे बचाव संभव है और आधुनिक चिकित्सा में इसके कौन कौन से प्रभावी उपचार उपलब्ध है, इन्हीं विषयों पर जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रदीप जैन को। आप वरिष्ठ ऑर्थोपेडिशियन हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि घुटनों के दर्द के मुख्य कारण क्या है और यह किन वजह से होता है?
2: देखिए, घुटनों के दर्द के एक तो बहुत सारे कारण हैं
1: जी।
2: उनमें से यदि चोट लगी है
1: जी,
2: तो अपन ये देखेंगे कि घुटने की कौन सी हड्डी में चोट है, फ्रैक्चर है, या उसके अंदर में बहुत सारे लिगामेंट्स रहते हैं, कैप्सूल्स रहते हैं, मेनिस्कस रहता है, तो क्या कहीं उसमें इंजुरी है, इंजुरी के कारण चोट है तो वो बात अलग है। या इसके अलावा ओवर वेट है, इंसान का वेट ज्यादा है, डायबिटीज है, या उसको थायराइड है, या यूरिक एसिड का बहुत ज्यादा हाई है, या कई और दूसरे रोग हैं, इन्फेक्शन अगर है, फीवर है, चिकनगुनिया है, उसके भी कारण से घुटनों में दर्द पॉसिबल है।
1: जी जी। डॉक्टर साहब, आजकल ऑस्टियोआर्थराइटिस है वह काफी ज्यादा बढ़ गया है, हम आपसे जानना चाहेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है और यह किस कारण से होता है?
2: ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ही कॉमन है आजकल, और एज के साथ का ताल्लुक है। घुटने के अंदर का जो जॉइंट रहता है उसमें बोन के ऊपर में कार्टिलेज नाम की एक चीज रहती है, वो कार्टिलेज उम्र के साथ साथ थोड़ा घिस जाता है। सभी का घिसता है, किसी का कम, किसी का ज्यादा, और भी बहुत सारे कारण रहते हैं। जो उस कैप्सूल के जॉइंट के कार्टिलेज के डैमेज होने के कारण जो अपने को घुटने में दर्द होता है,

0: उसको अपन ऑस्टो आर्थराइटिस कहते हैं
1: जी,
0: ऑस्टो आर्थराइटिस जिसको एजिंग आर्थराइटिस बोला जाता है
1: जी।
0: और भी कई हैं कारण, जैसे कि अपने रूमेटाइड आर्थराइटिस है, गाउटी आर्थराइटिस है, और इसके अलावा रूमेटिक आर्थराइटिस है, ऐसे बहुत सारे कारण घुटने के दर्द के हैं, पर मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो ऑस्टो आर्थराइटिस ही है जो एज के साथ साथ होता है।
1: जी जी जी, महिलाओं में अक्सर देखा गया ये समस्या ज्यादा रहती है, तो इसके पीछे की क्या वजह है?
0: जी, महिलाओं में ज्यादा होने का कारण उसमें क्या है कि जो भारतीय महिलाएं हैं वो ज्यादातर काम घर में या किचन में भी करती हैं तो वो बैठ के करती हैं
1: जी,
0: और जैसे कि पालथी मार देती हैं, पूजा अगर करती हैं तो वो भी बैठ के होती है
1: बिल्कुल,
0: और इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल होता है, और ज्यादातर भारतीय महिलाओं की हाइट वो थोड़ी कम रहती है, वेट जो है वो थोड़ा ज्यादा रहता है, तो हाइट और वेट के हिसाब से जो बॉडी मास इंडेक्स जिसको अपन BMI कहते हैं, तो उससे उनके घुटनों पे काफी ज्यादा आता है लोड, जिसके कारण से लेडीज में ज्यादा होता है
1: जी।
0: दूसरा एक कारण है कि जो भारतीय महिलाएं वो अपने खान पान का उतना ध्यान नहीं रखती हैं, ज्यादातर जो अच्छा खाना है या जो पौष्टिक भोजन है वो अपने फैमिली के बच्चों को या अपने हस्बैंड को पुरुषों को दे देती है, और अपने ऊपर उतना ध्यान
1: नहीं देती है जी।
0: तो उनको पूरे पोषक तत्व जो है विटामिन डी है, कैल्शियम है, वो चीजें नहीं मिल पाती, ये भी एक कारण है कि लेडीज में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है।
1: जी जी जी, बहुत अच्छी उपयोगी जानकारी दी आपने। अब डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको कि हमें गंभीर मानकर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
0: देखिए, घुटनों का दर्द ऐसी चीज है कि ज्यादातर लोग, खास तौर से लेडीज महिलाएं, उसको उतना ध्यान नहीं देती, वो ये मानती है कि अब हमारी एज हो गई है या पीरियड आना बंद हो गया, मीनो पॉज हो गया, उसको वो लाइफ अंग मान लेती है कि ये तो चूंकि एज हो गई तो ये हमको हो गई होगा। पर जैसे लक्षण जो आपने कहा कि कौन से ऐसे हैं जिसको अपन माने के अपने को जो प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसमें मेन ये है कि जब अपन अपने नॉर्मल काम रोज के जब अपने को करने में दिक्कत होने लगे और जब मेडिसिन खाने की आवश्यकता पड़े, अपने को रोज डेली जो है आपका काम जो है बगैर गोली खा के ना हो, और कई बार गोली खाने के बाद भी आपको लगे कि उतना आराम नहीं होता
1: जी जी जी,
0: और जो नॉर्मल काम है जैसे पालथी मारना है या इंडियन टॉयलेट पे बैठना है, स्क्वैट करना है, उकड़ू बैठना है
1: जी,
0: सीढ़ी चढ़ना उतरना है, तो ये जो रोजमर्रा के नॉर्मल काम है अगर इनमें दिक्कत होना स्टार्ट हो जाए तो उसका मीनिंग ये है कि अब आपको उसकी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की, और इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, और आपको किसी भी तरह की परेशानी ज्यादा बढ़े उससे बेहतर है कि आप तुरंत डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से संपर्क कर किससे की परामर्श आप अवश्य लें। डॉक्टर साहब, घुटनों के दर्द की जांच किस तरह की जाती है? क्या आज के आधुनिक युग में एक्सरे, MRI या अन्य जांच किस समय आवश्यक होती है जब हमें लगता है कि हमें इसे कराना ही चाहिए?
0: देखिए, जब आपको नी में पेन स्टार्ट हो, घुटने का दर्द शुरू हो, तो सबसे पहली जो बेसिक जांच होती है वो एक्सरे होती है
1: जी।
0: घुटने के एक्सरे स्टैंडिंग अवस्था में लिए जाते हैं, नॉर्मली किसी चीज के लिए अपन जाते हैं एक्सरे के लिए तो वो अपन किसी वो जो टेबल होती है उस पर कहते हैं आप पैर कर लीजिए, लेट जाइए, पर ये नी के लिए और स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस की जांच के लिए एक्सरे दोनों घुटनों के होते हैं और खड़े होके होते हैं, लोड बियरिंग एक्सरे अपन बोलते हैं
1: जी जी,
0: स्टैंडिंग एक्सरे
1: जी।
0: उसमें एक एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू होता है, एक लेटरल व्यू होता है, मतलब एक सामने से लिया जाता है, एक साइड से लिया जाता है। मूल जो जांच है वो एक्सरे
1: जी।
0: इसके अलावा खून की भी कई किस्म की जांचें पेशेंट की होना चाहिए कि आखिर ये इनको क्यों हो रहा है और या इतनी स्पीड में क्यों हो रहा है, उतनी एज नहीं है कि जितना इनको हो रहा है
1: जी।
0: उसके लिए कई टाइप की खून की टेस्ट होते हैं, जैसे कि डायबिटीज की है, थायराइड की है, यूरिक एसिड की है, विटामिन डी का लेवल है, कैल्शियम का लेवल है, फास्फोरस का लेवल है, विटामिन B12 का लेवल जो बॉडी में है, तो ये सारी टाइप की खून की जो जांचें हैं वो भी घुटने के दर्द के निदान में, उसके डायग्नोसिस में अपने लिए आवश्यक है
1: जी।
0: और इसके अलावा घुटने का दर्द है ये जो कार्टिलेज के घिसने के कारण हो रहा है या जैसे और भी कई होते हैं रोग, गठिया अपन उसको जो बोलते हैं, रूमेटिक आर्थराइटिस
1: जी,
0: ऑटोइम्यून डिजीज होता है, उसके लिए एक RA फैक्टर की भी जांच होती है
1: जी,
0: यह भी खून की जांच होती है, उसको अपन रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर बोलते हैं, तो ये जांच भी घुटने के दर्द के जो होते हैं पेशेंट तो उसमें की जाती है।
1: डॉक्टर साहब, क्या हर घुटने के दर्द की सर्जरी की आवश्यकता होती है या बिना सर्जरी के भी इसका इलाज संभव है?
0: जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आजकल धारणा यह है कि साहब हम घुटने के दर्द के लिए डॉक्टर

0: पास गए थे और डॉक्टर ने कहा कि आपके घुटने खराब हो गए और आपका घुटना चेंज होगा, ऑपरेशन होगा। तो इसके बारे में मेरा कहना यह है कि मरीज जब आता है डॉक्टर के पास वो काफी लेट स्थिति में आता है
1: जी,
0: तो उसको पिछले कई सालों से घुटने में पेन होता है पर वो उस तरफ ज्यादा जो है ध्यान नहीं देता
1: जी,
0: ना वो दवा खाता है, ना डॉक्टर के पास जाता है, ना वो अपना वेट पे ध्यान रखता है, एडवाइस भी नहीं मानता, प्रॉपर डाइट, कैल्शियम विटामिन डी जो आवश्यक है वो भी नहीं लेता। तो चूंकि वो डॉक्टर के पास में देर से आता है तब शायद वो, चूंकि देरी से आने के कारण उसको कहा जाता है कि अब आपका घुटना इतना ज्यादा डैमेज हो गया है कि अब ये गोली दवा या किसी चीज से पूरा ठीक नहीं हो पाएगा
1: जी,
0: तो आपके घुटने चेंज होंगे। यदि व्यक्ति अपना ध्यान जो है स्टार्टिंग से ही रखे, अपने वेट पे कंट्रोल रखे और अगर कोई दूसरे रोग भी हैं जैसे कि डायबिटीज है या थायराइड है तो वो उसका भी इलाज ले और मेनली कैल्शियम और विटामिन डी प्रॉपर ले, बैलेंस डाइट ले तो शायद इसकी स्थिति नहीं आएगी
1: जी,
0: बिना ऑपरेशन के भी इलाज हो सकता है अगर वो सही टाइम पे डॉक्टर के पास आ जाए।
1: जी जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, घुटना प्रत्यारोपण नी रिप्लेसमेंट इसकी आवश्यकता आपने बताया कि लेट आने की वजह से होती है, तो क्या नी रिप्लेसमेंट के बाद कोई भी व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है?
0: जी जी, नी रिप्लेसमेंट आजकल काफी आसान हो गया है
1: जी,
0: और अपने इंडिया में, अपने भारत वर्ष में भी काफी हो रहा है, छोटे छोटे शहरों में भी हो रहा है, क्योंकि जो इसमें इम्प्लांट यूज करते हैं वो अपने इंडियन जो अपनी बॉडी रहती है, भारतीय स्ट्रक्चर, तो उस बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से आजकल आ रहे हैं इम्प्लांट, स्पेशली इंडिया के लिए काफी अच्छे आ रहे हैं, कॉस्ट भी कम हो गई है, तो इसलिए आसान है आजकल, और यानी रोबोटिक भी हो रहा है और 4 से 6 हफ्ते के अंदर में आदमी नॉर्मल परिस्थिति में आ जाता है
1: जी।
0: तो नी रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन के बाद में जो अपन ने नया घुटना इम्प्लांट किया है तो वो उसको काम के लायक करने के लिए 4 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते तक की फिजियोथेरेपी होती है कि जो अपन ने इम्प्लांट ज्वाइंट नया डाला है वो काम के लायक हो जाए, तो इसमें 4 वीक्स टू 6 वीक्स तक का टाइम लगता है
1: जी।
0: तो 6 हफ्ते तक का टाइम आप जो मान लीजिए आफ्टर 6 वीक्स जो है पेशेंट अपना नॉर्मल लाइफ जी सकता है, कोई उसमें वो नहीं है प्रॉब्लम।
1: जी जी जी, और साथ साथ खान पान का भी विशेष ध्यान रखना है।
0: खान पान का इस चीज में काफी ताल्लुक है, स्पेशली खान पान का ताल्लुक आपके वेट से है। ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं घुटने के दर्द वाले उनका वेट ज्यादा होता है, ओवर वेट रहते हैं, चाहे वो लेडीज हो या पुरुष हो, ज्यादातर का वेट ज्यादा रहता है
1: जी।
0: तो आप कैलकुलेट कीजिए कि आपको कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, तो उस कैलोरी के हिसाब से दिन में 3 टाइम कैलोरी को आप बांट के उतना ही फूड लीजिए, लेकिन जो बैलेंस डाइट अपने को आवश्यक है पूरा प्रोटीन स्पेशली विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन B12 और फास्फोरस, तो अपन को कैलोरी कम हो लेकिन जो पोषक तत्व है जो आवश्यक वो अपने को पूरे पहुंच जाए
1: जी,
0: और वेट भी अपना कंट्रोल रहे
1: जी।
0: तो खान पान का इस रोग में घुटने के दर्द का जो रोग है ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें खान पान का काफी महत्व
1: जी। डॉक्टर साहब, घुटनों की सुरक्षा के लिए बुजुर्गों को क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: जी जी, देखिए मेनली ज्यादातर ओल्ड एज के पेशेंट का कैल्शियम लेवल कम रहता है
1: जी,
0: और विटामिन डी भी कम रहता है, तो ओल्ड एज के लोग भी अपना डाइट बैलेंस लें, ताकत पूरी रहे, कैल्शियम और विटामिन लें, और सबसे मुख्य चीज तो ये है कि चोट ना लगे, चोट से बचे, तो एक अपना स्टिक लिए रहें, हाथ में स्टिक लिए रहें, जितना वॉक इनसे हो पा रहा है वो करें, और चोट इनको ना लगे ये ध्यान रखें। इसके अलावा कोई और भी जो अगर रोग है जैसे डायबिटीज है या अगर यूरिक एसिड इनका हाई है तो उसका भी इलाज लें।
1: जी बहुत अच्छी बात की आपने, और कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या स्वास्थ्य संबंधी सलाह देना चाहेंगे कि उन्हें भविष्य में किसी भी तरह के घुटनों के दर्द की परेशानी का सामना न करना पड़े?
0: वेट पे कंट्रोल रखें, पौष्टिक खाना खाएं, खासतौर से दूध इत्यादि का करें सेवन, जिससे अपने को कैल्शियम और विटामिन डी मिले, और घुटने में जैसे ही आपको दर्द या कुछ भी चीज शुरू हो फौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें और उसकी एडवाइस माने।
1: जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस कारण बचाव और उपचार विषय पर डॉक्टर प्रदीप जैन से मनीष गजभिये के बात सुनी। आपको कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर अपने पत्रों के माध्यम से, और आइए अब बारी एक प्यारे से गीत की है, तो सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, बायो हैकिंग एक ऐसी ही तकनीक है जो अपने शरीर और दिमाग की कार्य क्षमता, स्वास्थ्य और ऊर्जा को बेहतर बनाने के लिए काम करती है। विज्ञान, तकनीक और जीवन शैली में बदलाव की ये एक प्रक्रिया है। इसका मुख्य लक्ष्य पोषण, नींद, व्यायाम और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उम्र को बढ़ाना और समग्र कल्याण करना है। बायो हैकिंग के मुख्य पहलू में शामिल हैं जीवन शैली में बदलाव, पोषण में सप्लीमेंट का सही उपयोग, एडवांस मेथड से सही पहचान और इलाज। बायो हैकिंग इस सिद्धांत पर काम करता है श्रोताओं कि हम अपने शरीर की जैविक प्रक्रियाओं को हैक कर स्वयं के स्वास्थ्य पर नियंत्रण रख सकें, जिसमें डेटा से विश्लेषण करके छोटे छोटे बदलाव किए जाते हैं जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रदर्शन को उच्चतम स्तर पर लाया जा सके और फिर हम स्वस्थ और प्रसन्न रहकर अपने जीवन को सुंदर और सुखद बनाएं। इस बात के साथ ही आइए एक बार फिर चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इस समय गर्मी खूब पड़ रही है तो बाहर निकलने से पहले खूब सारा पानी पिएं, खाली पेट ज़्यादा देर तक ना रहें। छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, आम का पन्ना जैसे पेय समय समय पर लेते रहें और खुद को हाइड्रेटेड रखें। सीजनल फलों का सेवन करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इस आशा के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने की अनुमति दें। अपनी दोस्त दिव्या को स्वीकारें, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
3: हाँ हाँ क्यों नहीं,
2: और झूलते झूलते सुनते हैं
1: मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: अरे दीदी धीरे धीरे।
1: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
4: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
5: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
6: क्या?
5: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
6: वो कैसे?
5: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: और सुनेंगे कैसे?
5: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अजय पाल यादव और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। पहले सुनिएगा लोक भजन। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

लोक संगीत में आप सुन रहे हैं अजय पाल यादव और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। ये आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है, प्रस्तुत है लोक भजन।

अभी आप सुन रहे थे अजय पाल यादव और साथियों के गाए बुंदेली लोक भजन। ये आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति थी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं रागनी तड़दे की गाई गजलें।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं रागिनी तरडे की गाई गजलें। ये आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

0: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
3: हाँ हाँ क्यों नहीं,
2: और झूलते झूलते सुनते हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। अरे दीदी धीरे धीरे।
1: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
4: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
5: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
6: क्या
5: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
6: वो कैसे?
5: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: पर सुनेंगे कैसे?
5: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा किसान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: मोहम्मद रफ़ी के साथ सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाज़ है। आज पूरा भारत आकाशवाणी परिवार सुमन कल्याणपुर को अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है और ये गीत श्रद्धांजलि स्वरूप उनके लिए है। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का।
1: राग तेलंग आकाशवाणी के 90 वर्ष।

और लीजिए एक बार फिर से सुमन कल्याणपुर के साथ मोहम्मद रफी को सुनवा रहे हैं ब्रह्मचारी फिल्म से। हसरत जयपुरी ने गीत को लिखा है और शंकर जयकिशन ने संगीत दिया है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। कुछ और गाने आप सुनेंगे 2:30 बजे आपकी फरमाइश में। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के रामसिया से देशव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की। 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती

0: नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में जागरूक किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। एक महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
2: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए, हमारी धरती बर्बाद ना हो जाए। आज ये धरती माँ पुकार पुकार के कह रही है, धरती कहे पुकार के कि इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो कि जो मुझे ही मार दे, मेरे अंदर जो अरबों जीव है उन सबको खत्म कर दे।
1: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुंचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। उन्होंने लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका दृढ़ संकल्प और उद्यमशीलता देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को नया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार वर्तमान न्यायाधीश विवेक रोसिया को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बदलाव मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा की उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति होने के कारण हुआ है। नवनियुक्त कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रोसिया मूल रूप से जबलपुर के ही रहने वाले हैं। और अब खबर मौसम की। नौतपा के 7वें दिन कल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का असर बना रहा, इससे तापमान में भी कमी आई है। ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। शाजापुर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पचमढ़ी में सबसे कम 34.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। पन्ना से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कल तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी और तपती धूप से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज धार, खरगोन जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांडुना में आंधी गरज चमक के साथ बारिश और ओली गिरने का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता यूसीसी के संबंध में अध्ययनरत और परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की कल आगरमालवा में बैठक आयोजित की गई। प्रशासन आपके द्वार अभियान के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले के दूरस्थ ग्राम कामती में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान कलेक्टर ने जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। शिवपुरी में पेयजल व्यवस्था की निगरानी के लिए वार्डों में निरीक्षण के लिए अधिकारी पहुंचे। शहर में टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है। खंडवा पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 290 लीटर शराब और बियर जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए

0: मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज, अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमा और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताए, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफीन नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातक को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। जीएसटी रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
3: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
4: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
5: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
4: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
6: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देशभर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रूपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113.50 रूपये होगी। मुंबई में 43.50 रूपये की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067.50 रूपये होगी। कोलकाता में 53.50 रूपये की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255.50 रूपये होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रूपये की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रूपये होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और

0: मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
2: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
0: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमा के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगित तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 बजे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को साधना जैन का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? पहला गीत हमने लिया है अप्रैल फूल से, मोहम्मद रफ़ी के साथ। सुमन कल्याणपुर की आवाज़ है। गीत लिखा है असर जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का। और हमारे सभी श्रोताओं, आकाशवाणी परिवार और पूरा भारत आज सुमन कल्याणपुर जी को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पहला गीत पसंद किया है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। मुरार ग्वालियर से कालीचरण यादव।

राज किरण, दीपक यादव, चांदी यादव, प्रमिला देवी यादव, गुड्डू मिश्रा, गिरीश मिश्रा और निशा मिश्रा ने। आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं अप्रैल फूल फिल्म का ये गीत।

आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश फरियाद फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। केदार शर्मा ने इसको लिखा है और स्नेहल भाटकर ने इसका संगीत तैयार किया है। आप सभी ने चिट्ठियां भेजी हैं, इस गीत को पसंद किया है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर ने। इसी गीत के लिए हमें चिट्ठियाँ मिली हैं गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या करिश्मा कामले ने। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। दुबैया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने। इन्होंने पसंद किया है बात एक रात की, फिल्म से सुमन कल्याणपुर की आवाज़ है। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा है और एसडी बर्मन ने संगीत दिया है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश और मैं हूं आपके साथ साधना जैन। अगला गीत जब जब फूल खिले, इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी के साथ सुमन कल्याणपुर हैं। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। और इस गीत को पसंद किया है दिल्ली से ज्योतिषाचार्य बिंदु जैन, पंडित अशोक जैन, नमन जैन, शुभम जैन और सोनागिर दतिया से श्रेयांश जैन, विपुल जैन, इन सभी की पसंद पर। और इसी गीत को पसंद किया है रेलवे कॉलोनी बठिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने। आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

और लीजिए अब आपको सुन पा रहे हैं घर फिल्म में लता मंगेशकर को, गीत लिखा है गुलजार ने, संगीत है आरडी बर्मन का। आप सभी ने चिट्ठियां भेजी हैं, इस गीत को पसंद किया है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा लछनपुर से, विश्वनाथ साहू लेवई से, गुलाबदास मानिकपुरी दतरंगी से, भागवत वर्मा ने। आप सभी की पसंद पर घर फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

और लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं मुनीम जी फिल्म में सुमन कल्याणपुर को। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है और उषा खन्ना ने इसका संगीत तैयार किया है। ग्राम महसबाड़ी, तहसील मलकापुर, महाराष्ट्र से शत्रुंग धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय खिरोडकर। और इसी गीत को पसंद किया है गुजरात नगर स्कीम नंबर 71 इंदौर से अनिल कावले, नेहा भंडसे, सीमा रूबीहा, फजल पूनम नैनवा और सुषमा सलीम ने। तो आपकी पसंद पर हम ये गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश संपन्न करने की आज्ञा दीजिए। साधना जैन को नमस्कार। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:58 हुए हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा है कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। आज विश्व दुग्ध दिवस है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को विश्व दुग्ध दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश के परिश्रमी पशुपालकों ने मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने पिछले महीने की 17 तारीख को आयोजित हुई JEE एडवांस परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उत्तीर्ण उम्मीदवार में 10,107 छात्राएं हैं। परिणाम JEEAdvanced.ac.in वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रिय गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि सुमन कल्याणपुर की मधुर आवाज और भावपूर्ण गायन ने सांस्कृतिक जगत को समृद्ध किया। और मौसम विभाग ने आज धार, खरगोन जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

लीजिए एक नज़र डालते हमारे सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों पर जो कि आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से हम आपको सुनवाएंगे। शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा युववाणी।

7:21 पर आकाशवाणी भोपाल से सुनिएगा ग्राम सभा। इसमें सुनिएगा लोक रंग, मंडी मौसम और कुछ गीत। विश्व दुग्ध दिवस पर कुछ बातचीत आप सुन सकेंगे। रात 8 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिएगा समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष गरीब कल्याण। रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक, इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से आपको सुनवाएंगे। रात 10 बजे आपकी फरमाइश होगी। और रात 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में पंडित राजेंद्र व्यास का राग बागेश्वरी में वायलिन वादन आप सुन सकेंगे। इसे एक बार फिर से सुन लीजिएगा। रात 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में पंडित राजेंद्र व्यास का वायलिन वादन आप सुन सकेंगे।

हम आपको याद दिला दें कि रात्रि 8 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष गरीब कल्याण। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। मीडियम वेव पर हमारी इस सभा का अब समापन होता है। शाम 5:02 पर मीडियम वेव पर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक हमारा कार्यक्रम होगा DTH पर।

4:21, 49 सेकेंड।

नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा का आगाज कर रहे हैं युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युव वाणी से।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा रेडियो प्रोग्राम ये वाणी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राज।
1: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त माधवी। तो दोस्तों, आज बहुत प्यारा मौसम है ना राज?
0: बिल्कुल। और इस बात पे मुझे एक शेर भी याद आ रहा है।
1: इरशाद,
0: तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से बारिश दस्तक देने लगी है हमारे शहर में, प्रदेश में, देश में, उसी के साथ साथ थोड़ी सी जो गर्मी है, गर्मी की तपन है, अब नो तपा जो करीब भी आ रहा है, ख़त्म होने के कगार पर है, तो धीरे धीरे अब बिल्कुल गर्मियाँ जाएंगी, वो धीरे धीरे बूंदों की बारिश दस्तक देगी हमारे दिल पे, दिमाग पे और शहर में भी।
1: तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राज का पसंदीदा मौसम आने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से इसका एक्साइटमेंट है बारिश को देखकर, चलो अच्छा है कि बारिश लोगों को खुशी दे रही है।
0: बिल्कुल।
1: तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये शाम का कार्यक्रम है, उसमें हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। आज दो मुख्य दिवस हैं, तो उन

0: आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी का लगभग कितना भाग जल से ढका हुआ है? मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, पृथ्वी का लगभग कितना भाग जल से ढका हुआ है?
1: और दोस्तों, आज का जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको शो के अंत में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए आप कार्यक्रम में बने रहिए और सुनिए हमारे आज के कार्यक्रम का पहला गीत।

0: तो दोस्तों, जैसे कि हमें बचपन में दूध पीने की आदत होती है, कुछ बच्चे बिस्तर से नहीं उठते जब तक उनके हाथ में दूध का ग्लास नहीं होता, और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ। अब मैं भी रोज़ सुबह उठकर दूध पीती हूँ, इच्छा से नहीं पीती पर पीना पड़ता है। तो जब मैं आज रोज़ सुबह की तरह उठकर दूध पी रही थी तो मेरे हाथ में अखबार था और एक हाथ में दूध का कप था। तब अचानक मुझे ये पता चला कि अखबार के फ्रंट पेज पे लिखा है आज यानी कि 1 जून को होता है विश्व दुग्ध दिवस। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कोई दिन भी मनाया जाता होगा, लेकिन धीरे धीरे करके मुझे अब पता चल रहा है कि दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है, हर चीज़ का एक दिन है। तो सोचो, एक ऐसी चीज़ जिसके साथ हम लगभग हर दिन की शुरुआत करते हैं, उसके लिए भी एक विशेष दिन है।
1: सच में तो मुझे लगता है साथियों कि ये बिल्कुल सही भी है। दूध सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं है, बल्कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों के पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। बचपन से ही हमें ये बताया जाता है कि दूध पीना सेहत के लिए कितना अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं हमें ये समझ में आने लगता है कि इसके पीछे कितना बड़ा वैज्ञानिक और पोषण संबंधी महत्व भी है।
1: बिल्कुल ठीक, और यही कारण है कि दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2001 में विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत की थी, यानी विश्व दूध दिवस की, ताकि लोगों को दूध और डेयरी उद्योग के महत्व के बारे में जागरूकता मिले और वो इसके बारे में जान भी पाएं।
0: एक और रोचक बात ये है कि दुनिया के अलग अलग देशों में दूध से बने हुए कितने प्रकार के उत्पाद उपयोग में किए जाते हैं, इसका मैं और आप घर पर बैठकर अनुमान भी नहीं लगा सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक बिना दूध के बन ही नहीं सकती। हम हमारे घर में ही देख लें, दही, पनीर, मक्खन, घी, चीज़ और न जाने अन्य कितनी चीज़ें हैं जो इन सारी चीज़ों के बिना बनने के बारे में हम सोच ही नहीं सकते।
1: हाँ, खैर ये बात तो है, पर मुझे लगता है माधवी कि आजकल की जो घरेलू महिलाएँ हैं वे भी मतलब किसी डेयरी फार्म से कम नहीं है। अगर दूध फट भी जाता है तो फ्रिज में रख कर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ तैयार कर लेती हैं कि वो आगे काम आ सके। मैंने तो घी तक बनते हुए देखा है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। और आप सोचो, आपका फेवरेट मौसम है बारिश। बारिश में सबसे पहले क्या याद आता है? चाय और पकौड़े। चाय कैसे बनेगी, बिना दूध के कैसे बन सकती है? तो भारत में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। भारत का जो पूरा एक कहते हैं ना सिस्टम, लाइफ सिस्टम, वो दूध के बिना नहीं चल सकता। माना कि आजकल ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ गई है जैसे लैक्टोस इंटॉलरेंट, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मिल्क के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम खुद वॉलंटरीली नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारी आबादी ऐसी भी है जो बिना दूध के आज भी अपना कुछ भी लाइफ का काम या अपने पूरे दिन की दिनचर्या को नहीं हटा सकते, दूध को नहीं हटा सकते उसमें से। हमारे यहाँ दूध का एक बहुत बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। कई पूजा पाठ और शुभ कार्यों में दूध का जो होना है वो बहुत विशेष स्थान पर होता है।
1: और साथियों, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के विकास और हड्डियों को मजबूत बनाने में हमारी सहायता प्रदान करते हैं।
0: मुझे आज भी याद है कि बचपन में दूध पीने के लिए मेरी माँ को कितना मनुहार करना पड़ता था, और तब हमें लगता था कि कितना फोर्सफुली दूध पिला रहे हैं। शायद हर बच्चे की यही कहानी होती है ना?
1: बिल्कुल ठीक। और शायद हर बच्चे के लिए मुझे लगता है कि उसके बाद उसको मतलब एक प्रचलन सा बन जाता है कि भाई दूध पीना है, आप छोटे हो तो आपको दूध पीना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए भैया हमारे शरीर में जितने पोषक तत्व होते हैं उनकी ज़रूरत भी होती है एक शिशु के तौर पर भी।
0: अब दोस्तों, विश्व दूध दिवस सिर्फ दूध पीने के फायदे बताने के लिए नहीं है। इसका जो एक वाइडर मीनिंग है वो ये भी है कि उन लाखों किसानों और डेयरी फार्मर्स के योगदान को

0: सम्मान देने के लिए भी है जो दिन रात मेहनत करके दूध हम तक पहुंचाते हैं।
1: सही कहा तुमने। और जब एक सुबह का एक गिलास दूध हम जब पीते हैं तो उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत होती है, पशुपालक, किसान, डेयरी कर्मचारी और परिवहन से जुड़े तमाम लोग।
0: और यही बात है इस दिन की जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है। यह हमें भोजन और पोषण के स्रोत के प्रति सम्मान करना सिखाता है।
1: बिल्कुल ठीक। और आज के समय में जब लोग स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर अधिक जागरूक हो रहे हैं तो तभी दूध और संतुलित पोषण का महत्व हमारे जीवन में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। खैर हम दूध की बात तो कर ही कर रहे हैं, पर इसका मुख्य स्रोत क्या है? गाय यानी गैया। तो मुझे लगता है कि जितने भी गौशाला हैं उन सबका संरक्षण हम करना ही होगा, चाहे वो गांव क्षेत्र पे हो चाहे शहरी क्षेत्रों पे हो। गांव के वाले क्षेत्र पे तो कई ज़्यादा पशुपालक जो होते हैं बिल्कुल वो बैल हुए या फिर गाय हुए इन सबका संरक्षण बिल्कुल संकल्प के साथ करते हैं, पर शहर में अधिकतर देखने में आता है कि कई बार जो गाय होती है रोड पे मिल जाती है, चलती हुई सड़कों पे मिल जाती है। तो खैर इंदौर में तो अभी ऐसा माहौल नहीं है, एक अच्छी गौशाला बन गई है जहाँ पर लोग प्रतिदिन चारा भी खिलाते हैं, पुण्य कमाते हैं और उसके साथ साथ दूध का उत्पादन तो होता ही होता है। तो गाय का सम्मान करना ये भी काफ़ी ज़्यादा उचित है हमारे लिए।
0: बिल्कुल सही कहा है तुमने राज। गाय का सम्मान करना, उन सारे लोगों का सम्मान करना जो इतनी मेहनत करते हैं हम तक दूध पहुंचाते हैं।
1: हाँ, और सबसे मुख्य बात जो गाय का गोबर होता है और ये फिर कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं उन सब के हम कभी कभी हम घृणा से करने लग जाते हैं कि यह कैसा है, कैसा इसका मतलब साफ़ सफाई होती होगी। पर जितने भी गौशाला के लोग होते हैं, आखिर मिलता तो दूध ही है ना, तो वो भी उसमें साफ़ सफाई में जुड़ जाते हैं। और जितने हम नागरिक हैं उन सबका भी कर्तव्य यही होना चाहिए कि हम घृणा ना करते हुए एक साफ़ सफाई वाले माहौल का माहौल प्रदान करें जिससे गैया भी सुरक्षित रहे और हम तक उनका उत्पादन भी आसानी से बना रहे।

0: तो दोस्तों, आज एक बहुत ही सुंदर सा दिन और है जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए और आप सभी को मनाना भी चाहिए। तो आज जब मुझे सुबह पता चला कि 1 जून यानी आज के दिन को वर्ल्ड पेरेंट्स डे मनाया जाता है, तो पता नहीं क्यों, लेकिन ये सुनते ही मन में सबसे पहले ये आया कि यार ऐसा भी दिन होता है, और मम्मी पापा का चेहरा मन में सामने आ जाता है।
1: सच कहूँ माधवी, माता पिता का ख्याल आते ही दिल में एक अलग सी भावना जाग जाती है। शायद इसलिए ही क्योंकि दुनिया में उनका प्यार सबसे निस्वार्थ होता है।
0: और इस दिन की सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात जो है वो ये है कि हमें उन लोगों को सम्मान करने का मौका देता है जिन्होंने हमारे लिए अनगिनत त्याग किए हों।
1: बिल्कुल ठीक। और ये दिन यूनाइटेड नेशन द्वारा आधिकारिक रूप से ग्लोबल डे पर पेरेंट्स के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका उद्देश्य है दुनिया भर के माता पिता के योगदान को सम्मान देना और उन्हें प्यार करना।
0: ऐसा होता है ना राज, कि बचपन में हमें लगता है कि माता पिता के प्यार को देख के हमें ऐसे फील आता है कि ये तो बड़ा स्वाभाविक सा है। मतलब हम उसको ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ ये तो उनको करना ही है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके जो त्याग की गहराई है वो किस हद तक है, और उनका निस्वार्थ प्रेम उनके अलावा पूरी दुनिया में हमसे इस तरह से कोई नहीं कर सकता।
1: हाँ, यहाँ पर तुमने निस्वार्थ प्रेम की बात की, तो हम जब छोटे होते हैं जब तक तो हमें अंदाज़ा नहीं होता है, और धीरे धीरे हम जब बढ़ने लग जाते हैं उम्र की ओर, तो दोस्तों से मिलते हैं, कलीग से मिलते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, मतलब कई जगह कई लोगों से मिलते हैं, तब जाके हमें समझ होती है कि भैया माता पिता का जो प्रेम होता है वो बिल्कुल निस्वार्थी होता है, अनमोल होता है, अमूल्य होता है। और जब छोटे थे तब शायद हमें पता भी नहीं था कि हमारी हर छोटी खुशी के पीछे उनकी कितनी मेहनत, कितनी चिंता और कितना संघर्ष छुपा हुआ है।
0: सच में, तुम्हें याद है जब रात में हम बीमार पड़ते हैं तो रातों की नींदें छोड़कर

0: हमारी माँ हमारा देखभाल करती है, साथ में पढ़ाई, हमारी पढ़ाई, हमारी छोटी छोटी खुशियों के लिए हमारे पापा हर समय खड़े रहते हैं, हमारे सपने, हमारी चीज़ें, हर जगह खुद से पहले वो हमें रखते हैं।
1: सच कहूँ ना माधवी, तो माँ हमें प्रेम, करुणा, उस संवेदनशीलता सिखाती है, जबकि पिता हमें संघर्ष, साहस, उस जिम्मेदारी का भान कराते हैं या फिर महत्व समझाते हैं। दोनों मिलकर हमारे व्यक्तित्व की मजबूत नींव तैयार करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि बदले में हमसे कुछ चाहते भी नहीं है, बस हमें खुश, सफल देखना चाहते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। कभी कभी मैं यही सोचती हूँ कि दुनिया में ऐसे कौन लोग होंगे जो हमारी इतनी गलतियों के बाद, इतनी सारी नासमझियों के बाद भी हमें उतना ही प्यार करे जितना वो पहले से करते थे। और जब ऐसा सोचने पर कोई उत्तर नहीं आता तो एक ही उत्तर आता है,
1: शायद कोई नहीं। यही ना, माता पिता का प्यार ही ऐसा होता है माधवी, जो हमारी सफलताओं में गर्व महसूस कराता है और असफलताओं में हमारा हाथ थाम लेता है, और फिर ये भी उम्मीद जगाता है कि नहीं, तुम कर लोगे आगे जाकर।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में ये दिन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि लोग अपने काम और अपनी व्यस्तताओं में इतने उलझ जाते हैं कि परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है।
1: सही कहा। लेकिन चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, माता पिता का साथ बिताया हर एक लम्हा, थोड़ा सा समय भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है।
0: और आज की पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि माता पिता सिर्फ हमारी ज़रूरत पूरी करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि वो हमारे पहले शिक्षक, पहले दोस्त और सबसे पहले हमारे शुभचिंतक हैं।
1: और मैंने तो ये भी सुना है कि माँ हमारा पहला प्यार होती हैं और पिता हमारे पहले सुपर हीरो, क्योंकि उनकी सीख अक्सर जीवन के सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है हम सभी के जीवन में। कई बार उनकी एक साधारण सी सलाह भी हमें बड़ी छोटी परेशानियों से लड़ना सिखाई देती है।
0: ये तो तुमने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बात कही है। मेरी माँ आज भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरे पापा तो हमेशा मेरे सुपर हीरो रहेंगे। और जब हम किसी भी मुश्किल दौर से गुजरते हैं तब सबसे पहले जो लोग हमारे लिए चिंतित होते हैं वो हमारे माता पिता ही तो होते हैं।
1: चाहे मतलब दरवाजे कितने बंद हो जाएं इस जिंदगी के ऊपर, एक माता पिता का ऐसा दरवाज़ा होता है कि हम जब चाहें, चाहे वो शादी ब्याह के बाद हो या फिर दूर दराज देश में बैठे हों, हमारा ख्याल उनके मन में 24 घंटे मतलब चलता ही रहता है। और मुझे लगता है कि इस दिन का एक उपहार के रूप में हमें उन्हें क्या देना चाहिए, तो सबसे बड़ा उपहार यही होगा माधवी, कि हम उन्हें हमारा एक समय दें और समय निश्चित करें, बाहर घूमने जाएं और छोटी छोटी प्यारी बातें करें, ताकि उनसे ही उनका दिन बन जाएगा।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो। कभी कभी एक छोटा सा धन्यवाद, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, गले कस के गले लगा लिया जाए, उनके साथ कुछ समय बिता लिया जाए, ये महंगे उपहारों से भी कहीं ज़्यादा मूल्यवान होता है।
1: और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि माता पिता हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे, इसलिए उनके साथ बिताया हर एक पल, हर एक लम्हा बिल्कुल जीवन सा बना लेना चाहिए हम सभी को।
0: बिल्कुल। और जो लोग अपने माता पिता के साथ रहते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि वो कितने खुशकिस्मत हैं और उनके प्यार और मौजूदगी की उन्हें कद्र भी करनी चाहिए।

0: दोस्तों, गर्मी का मौसम हो, स्पोर्ट डे हो, या फिर परीक्षा की तैयारी हो, या फिर रोज़मर्रा की भाग दौड़, एक चीज़ जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है पानी। पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स। आज हम जानेंगे कि पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा आवश्यक है और इनके संतुलन को बनाए रखने में ये क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: श्रोताओं, हमारे शरीर का लगभग 60 से 70% भाग पानी से बना होता है। पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, पाचन प्रक्रिया में सहायता करता है और शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है।
0: श्रोताओं, जब हम पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते तो शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन होने लगता है। इसके कारण थकान, चक्कर आना, सरदर्द होना, कमजोरी, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और कई बार गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ने लग जाती हैं।
1: अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे खनिज तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में कार्य करते हैं। इनमें मुख्य रूप से होता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड।
0: दोस्तों, ये एलिमेंट्स शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने, मांसपेशियों को सही ढंग से काम करने, नसों के संदेशों को पहुंचाने

0: हृदय की धड़कन को सामान्य रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: अब हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी आखिर होती कब है। तो गर्मी के मौसम में या अधिक शारीरिक गतिविधि के दौरान, जब हम अधिक पसीना बहाते हैं, तब शरीर से पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर निकल जाते हैं। यदि इनकी पूर्ति समय पर ना की जाए तो व्यक्ति को अत्यधिक थकान, मांसपेशियों में ऐंठन, कमजोरी, चक्कर आना और कभी कभी बेहोशी जैसे समस्याएं भी होने लगती हैं।
0: साथियों, खिलाड़ियों, मजदूरों, धूप में काम करने वाले लोगों और युवाओं को इस विषय पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति हम कैसे करें ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति के लिए केवल पानी पीना ही पर्याप्त नहीं होता, इसके लिए संतुलित आहार लेना भी बेहद ज़्यादा अहम हो जाता है। आप नारियल पानी और फल जैसे केला, तरबूज और खरबूजा, इसी के साथ छाछ और दही, संतरा और अन्य खट्टे फल, हरी सब्जियां, इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से ORS घोल का भी उपयोग अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं।
1: और मेरे सारे युवा साथी, आजकल कई बार हम पढ़ाई, नौकरी या मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पानी पीना भूल जाते हैं। तो याद रखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, और स्वस्थ शरीर तब होगा जब आप पानी पिएंगे।
0: इसलिए दोस्तों, दिन भर में नियमित अंतराल में पानी पीते रहें। अभी गर्मी भी ज़्यादा है दोस्तों, तो प्यास लगने का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। विशेष रूप से गर्मियों में बाहर निकलते समय पानी की बोतल अपने साथ रखें और शरीर को हाइड्रेट बनाए रखें।
1: मेरी माँ हमेशा कहती हैं कि पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी पिलाते रहने का जो ये काम है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है दोस्तों, क्योंकि बार बार पानी के लिए किसी को आगाह करना कोई इजी काम नहीं है। तो आप भी अपने माता पिता के साथ रहें, और ऐसी माएँ अगर आपके पास हैं जो आपको पुनः पुनः हर 2, 5, 10 मिनट में याद दिलाती रहे कि पानी पिया कि नहीं, तो वो एक बहुत लकी चीज़ होती है। तो आज हमने जाना है कि पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे शरीर को के संचालन में भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अपने पानी के इनटेक का और इलेक्ट्रोलाइट्स का खास करके ख्याल रखें।

0: दोस्तों, जल है तो कल है। पानी केवल एक प्राकृतिक संसाधन कतई नहीं है, बल्कि जीवन का आधार है। हमारे शरीर से लेकर खेती, उद्योग, पर्यावरण और जीव जंतुओं तक हर किसी का अस्तित्व केवल पानी पर टिका हुआ है।
1: लेकिन बढ़ती आबादी, जल का अत्यधिक दोहन और जल प्रदूषण के कारण आज पूरी दुनिया जल संकट की चुनौती का सामना कर रही है।
0: दोस्तों, आज हम बात करेंगे जल संरक्षण की और जानेंगे कि अपने दैनिक जीवन में हम छोटे छोटे प्रयास से अनमोल संसाधन को बचा सकते हैं।
1: पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन इसमें से केवल लगभग 3% पानी है जो मीठा पानी है। इस मीठे पानी का भी बहुत बड़ा हिस्सा ग्लेशियर्स और बर्फ के रूप में जमा है, यानी हमारे पास उपयोग के लिए उपलब्ध पानी की मात्रा बहुत सीमित है।
0: दोस्तों, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए, खेती और खाद्य उद्योग सुरक्षित बनाने के लिए, पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए, जल संकट और सूखे की समस्या कम करने के लिए, भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए।
1: और दोस्तों, आप जल बचाने का काम कैसे कर सकते हैं? नल का उपयोग करने के बाद उसे अच्छी तरह से बंद करें। दांत साफ करते समय, शेव बनाते समय नल को खुला ना छोड़ें। घर में किसी भी पाइप या नल को अगर जिसमें से पानी बह रहा हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। वर्षा जल को बचा के रखें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं। इन छोटी छोटी चीज़ों से आप जल संरक्षण कर सकते हैं।

0: दोस्तों, अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। उम्मीद है आपको आज का युवाणी कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा, पर उसके पहले आज के जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे उनको भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न था, पृथ्वी का लगभग कितना भाग जल से ढका हुआ है तो उसका उत्तर है लगभग 71%।
1: और आज का जो दूसरा सवाल था वो ये था कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। मुझे उम्मीद है कि आपने दोनों सवालों के उत्तरों को ढूंढ कर रखा होगा। और इसी के साथ समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त माधवी,
0: और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राज,
1: और हम आपसे आज्ञा चाहते हैं, नमस्कार।

कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं पापा कहते हैं फिल्म के इस प्यारे से गीत से। इस गीत को गाया है उदित नारायण ने।

0: जावेद अख्तर की गीत रचना, राजेश रोशन का संगीत, उदित नारायण को अभी आपने सुना, फिल्म जी हाँ पापा कहते हैं।
1: मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म गीत,
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
0: तुमसे अच्छा कौन है, जी हाँ श्रोतो, यही है फिल्म का नाम, जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सोनू निगम और सारिका कपूर के युगल स्वर में।

0: समीर की शब्द रचना, नदीम श्रवण का संगीत, सोनू निगम और सारिका कपूर को अभी आपने सुना फिल्म जी हाँ तुमसे अच्छा कौन है मैं। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
0: आकाशवाणी इंदौर से प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस

0: धन्यवाद संदेशों के लिए।
1: और अब आ रही है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
0: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
1: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
0: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
1: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
1: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
0: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
1: तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
1: यह कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
0: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं
0: जी,
2: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में
0: जी।
2: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
0: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समता मूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
2: इसको हम समता मूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना
0: जी,
2: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समता मूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना
0: जी।
2: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं
0: जी।
2: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं, ठीक है
0: जी।
2: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
0: जी।
2: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन ले, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो
0: जी,
2: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा

0: रूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती हैं।
1: जी
0: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं, हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं, सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं।
1: जी आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा में क्या अंतर है। आप थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
0: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं।
1: जी
0: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी।
1: जी
0: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे। लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझें। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए, तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ।
1: जी
0: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
1: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं।
0: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
1: जी
0: है, ठीक है। इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
1: जी,
0: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं।
1: जी,
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है।
1: जी,
0: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं।
1: जी,
0: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं।
1: जी,
0: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
1: जी,
0: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है।
1: जी,
0: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है।
1: जी,
0: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो

0: जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं।
1: जी,
0: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समूह। हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है।
1: जी,
0: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं।
1: जी,
0: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में।
1: जी,
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
1: जी,
0: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है।
1: जी, आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की, तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
0: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं।
1: जी,
0: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते
1: जी
0: हैं। जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
1: जी
0: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की।
1: जी,
0: आप सोचिए आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी,
0: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है।
1: जी,
0: अच्छा अब ये लोग क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा।
1: जी,
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
1: जी,
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है।
1: जी,
0: दोनों भाषाओं में अंतर है और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत।
1: जी,
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में।
1: जी,
0: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहाँ, उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल।
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं।
1: जी,
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी की किसी और मौखिक भाषा में है।
1: जी, ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं।
0: जी देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं। जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं।
1: जी,
0: लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है।
1: जी,
0: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ ही साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है।
1: जी,
0: ताकि कोई भी छात्र चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो, अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा CIT NCERT

0: सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है, जो बहुत सरलता से सीआईटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है
1: जी।
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर डीटीएच चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं, इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
1: जी
0: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज
1: जी।
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं
1: जी,
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है, ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें
1: जी।
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो
1: जी,
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो, व्हीलचेयर आसानी से पहुंच जाए
1: जी।
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो
1: जी।
0: आपकी विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो, टेक्टाइल पाथ क्या, आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा
1: जी जी।
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें,
1: बिल्कुल
0: पीली टाइलें कैसी हैं, उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं
1: जी,
0: उनके उभारों को महसूस
1: बिल्कुल
0: कर सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं
1: जी।
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें
1: जी।
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं
1: जी।
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी सीआईटी एनसीईआरटी की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है
1: जी।
0: तो ये भी एक हमारी पहल है
1: जी। प्रोफेसर भारती अभी आपने ये जानकारी दी कि एनसीईआरटी की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से सीआईईटी के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप सीआईटी के वेब पेज पे जाइए वहां पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी
1: जी।
0: और एक और सरल उपाय है
1: जी।
0: आजकल तो गूगल हम सबकी मदद के लिए है ही है, गूगल पर जाइए लिखिए ऑडियो बुक्स सीआईटी एनसीईआरटी आपको सीधा वहां उसी पेज पे ले जाएगा और आप वहां से ले सकते हैं
1: जी।
0: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध हैं और सीआईटी वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं
1: जी।
0: और यह किताबें आपको एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को सीआईटी की वेबसाइट से, एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब से और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निशुल्क बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं
1: जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में एनसीईआरटी की क्या पहल है?
0: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एनसीईआरटी की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं
1: जी,
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं
1: जी।
0: उनकी कहानियां, उनके पाठों की

0: विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं,
1: जी,
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं।
1: जी,
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है, लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है।
1: जी बिल्कुल। तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं, और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चे को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है, बहुत सरल से शब्दों में, कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनिक पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए, साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है, इसी कड़ी में जुड़ता है, शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी, मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके।
1: जी,
0: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा। जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं, तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्ज्वल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
4: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
5: क्या?
4: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
5: वो कैसे?
4: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
5: और सुनेंगे कैसे?
4: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
6: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
7: GST काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर GST की 4 दरें लगती हैं। 1,000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 GST है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% GST लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है, लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा।

0: सुनते रहिए मालवा किसान आकाशवाणी इंदौर।
1: प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भूपेंद्र सिंह की गायी रचनाएं।

श्रोताओ, सुगम संगीत में अभी आपने सुना भूपेंद्र सिंह की गाई ये गज़ल। आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत।

नसीम अजमेरी की रचना अभी आपने सुनी, जिसे गाया था भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह ने। श्रोताओ, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। लीजिए सुनिए अगली रचना। इस गजल को गाया है भूपेंद्र सिंह।

भूपेंद्र सिंह की गई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त तो होता है। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होगा।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं शेख महजबी अलमाज। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली खबर है गेहूं उपार्जन के संबंध में। हाल ही में संपन्न हुई समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में किसानों से 104 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। गेहूं उपार्जन के मामले में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश ने देश में सबसे ज्यादा लगभग 14 लाख किसानों से गेहूं खरीदी कर उल्लेखनीय रिकॉर्ड स्थापित किया है।
1: मैं मध्य प्रदेश के किसानों को, प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूंगा। पूरे देश में सर्वाधिक किसानों से गेहूँ खरीदने का अगर कोई बड़ा राज्य जिसने काम किया वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने अपने सभी प्रकार के किसानों के साथ बीते समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,04,31,000 मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन अर्थात खरीदी की गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये गेहूं खरीदने के किसानों की संख्या में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है और सर्वाधिक लंबे समय तक किसी राज्य ने गेहूँ खरीदी की व्यवस्था जारी रखी तो वो भी मध्य प्रदेश। ऐसे में जब मैं अपने सर्वाधिक गेहूं उपार्जन वाले राज्य की तरफ से देखता हूं तो गेहूं की मात्रा में भी पंजाब के बाद मध्य प्रदेश दूसरा स्थान है जिसके पास गेहूं का इतना विपुल उत्पादन के बाद उन्होंने परचेसिंग की है। मध्य प्रदेश में पहली बार लघु अर्थात छोटे किसान, मध्यम श्रेणी के किसान, इनके गेहूं को पहले खरीदने का हमने पहली बार निर्णय किया और उसका परिणाम लिखा कि लगभग 32.72 लाख मेट्रिक टन छोटे किसानों का हमने पहले खरीदी की। बाद में मध्यम और उससे बड़े श्रेणी के किसानों का गेहूं खरीदने का काम किया है। लगभग 14.25 लाख किसानों का समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदने का काम संपन्न हुआ है। अर्थात जो मेरी जानकारी में है, अब हमारे पास पूरे प्रदेश के अंदर जिन्होंने पंजीयन कराया ऐसे सभी भाई बहनों का गेहूं हमारे अपने गोडाउन तक पहुंच चुका है। ये भी मध्य

0: एशिया में, पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति और विश्व में उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बावजूद भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए हमने ये गेहूं खरीदी की है। मैं उम्मीद करता हूं कि किसानों के लिए जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, और ये तो खास बात है, ये इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष है, इसलिए अभी तक हमने जो मुझे जताया गया लगभग 24,000 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि का भुगतान प्रेषित किया गया है। इसका मतलब हमारे अपने किसानों के लिए समर्थन मूल्य 2585 और 40 रुपया बोनस दोनों मिलाकर 2625 रुपये प्रति क्विंटल का गेहूं हमने अपने किसानों से खरीदा गया है।
1: हमारी दूसरी खबर विदिशा से है, जहां रबी विपणन वर्ष 2026-27 में 174 गेहूं उपार्जन केंद्रों पर जिले में 68,200 किसानों से 6,51,836 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है। पेश है विदिशा से हमारे संवाददाता वेद प्रकाश शर्मा की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश के कृषि प्रधान विदिशा जिले में रबी विपणन वर्ष 26-27 में 174 गेहूं उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थित रूप से खरीदी की गई है। जिले में 68,200 किसानों में से 6,51,836 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है। विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता द्वारा उपार्जन कार्य की निरंतर समीक्षा करने से किसानों को सुविधाजनक और पारदर्शी व्यवस्था मिली है। जिला आपूर्ति अधिकारी अनिल तंतुबाई ने बताया कि गेहूं विक्रय हेतु जिले में कुल पंजीकृत किसानों में से 74,621 किसानों अर्थात 90% किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं का विक्रय किया है। 28 मई तक गेहूं की खरीदी होने के पश्चात उपार्जित गेहूं के परिवहन का कार्य अभी भी जारी है। अब तक खरीदे गए कुल गेहूं में से 5,77,598 मैट्रिक टन गेहूं का परिवहन किया जा चुका है, जो कुल खरीदी का लगभग 88% है। किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1,470 करोड़ रुपए EPO के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। जिले में बारदाने की आपूर्ति निरंतर और पर्याप्त होने से उपार्जन केंद्रों से गेहूं का परिवहन आसान हुआ है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा।
1: हमारी अगली खबर है शिवपुरी से, जहां किसान ग्रामीण और फार्म हाउस संचालक अब तेजी से होम स्टे डेवलप कर रहे हैं। पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश, खाना और सस्ती सुविधा देने के लिए ये होम स्टे आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं शिवपुरी से हमारे संवाददाता रंजीत गुप्ता।
3: शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर की मौजूदगी और पड़ोसी जिले शिवपुर में चीतों के आने के बाद जिले में होम स्टे टूरिज्म को पंख लग गए हैं। शिवपुरी जिले के किसान, ग्रामीण और फार्म हाउस संचालक अब तेजी से होम स्टे डेवलप कर रहे हैं। पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश, देसी खाना और सस्ती सुविधाएं देने के लिए ये होम स्टे आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। फिलहाल जिले में 4 होम स्टे संचालित हो रहे हैं। इनमें हाथौद ग्राम में चल रहा होम स्टे पर्यटकों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। यहाँ आने वाले पर्यटक इन होम स्टे में रुकते हैं। इसके बाद शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में टाइगर सफारी के साथ साथ सिंधिया घराने की ऐतिहासिक छतरियां, भदिया कुंड और भूरखो जैसे प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का भी लुत्फ उठा रहे हैं। जिले में कई होटल पहले से मौजूद हैं, लेकिन अब होम स्टे का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। ग्राम हाथौद में स्थित फार्म स्टे बैरागढ़ लिविंग के संचालक जसमीत ग्रेवाल ने बताया कि हमारे यहाँ पर कई देसी विदेशी पर्यटक आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि हमारे देसी स्थानीय व्यंजन जैविक खेती से तैयार अनाज व सब्जियों से तैयार किए जाते हैं। जिला पर्यटन प्रबंधक देव सोनी ने बताया कि शिवपुरी में होमस्टे को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका मकसद पर्यटकों को होटल के मुकाबले कम रेट में बेहतर और प्रामाणिक सुविधाएं देना है। उन्होंने बताया कि साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने का भी लक्ष्य रखा गया है। इन होमस्टे के संचालन से अब युवाओं को गाइड, रसोईया और हाउस कीपिंग का रोजगार भी मिल रहा है। शिवपुरी में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और होम स्टे इस दिशा में नया अध्याय लिख रहे हैं। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन में हमारी अगली खबर है सीधी जिले से, जहां जिले के सेवारत सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन ने एक नजीर पेश की है। ज्यादा जानकारी दे रहे सीधी से हमारे संवाददाता सचिंद्र मिश्र।
4: देश की सुरक्षा में निरंतर समर्पित सैनिक सीमाओं पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अक्सर अपनी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्याएं प्रशासन तक पहुंचाने में नाकाम रहते हैं। इन तमाम तथ्यों को लेकर जिला प्रशासन सीधी ने एक अभिनव पहल की है। हेलो सीधी, जय जवान एक समर्पित जिला स्तरीय सहायता एवं शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसके माध्यम से सैनिक, उनके परिजन सीधे जिला प्रशासन विकास से संपर्क कर सकेंगे। जिला प्रशासन द्वारा जारी इन उपरोक्त हेल्पलाइन नंबरों में

0: कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 8103550045। व्हाट्सएप नंबर है 8103550045। आधिकारिक वेबसाइट cidhi.nic.in। हेलो सिधि, जय जवान केवल शिकायत निवारण परियोजना नहीं बल्कि सैनिकों के सम्मान, त्वरित सेवा वितरण एवं संवेदनशील प्रशासन का एक अभिनव मॉडल है। आने वाले समय में जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर विकास की यह सोच दर्शाती है कि तकनीकी जवाबदेही एवं संवेदनशीलता के समन्वय से विशेष वर्गों के लिए प्रभावी और सम्मानजनक सेवा तंत्र विकसित कर सकता है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचिंद्र मिश्र।
1: हम चलते हैं सीहोर जिले की तरफ, जहां इन दिनों जिला शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत किया गया नवाचार शिक्षा पुंज 0.2 उत्साह के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान।
2: सीहोर जिले में इन दिनों जिला शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत जिले का नवाचार शिक्षा पुंज 0.2 उत्साह के वातावरण में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके लिए कलेक्टर बाला गुरु के और जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सरचना यादव के निर्देश पर जिले में नवाचार के लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास किए जा रहे हैं। संकुल अंतर्गत ऐसे शाला त्यागी बच्चे जो किन्हीं कारणों के चलते शाला में प्रवेश से वंचित रह गए हैं, अक्षर साथी के माध्यम से शाला में प्रवेश संबंधी कार्रवाई पूर्ण कराई जा रही है। इससे अक्षर साथी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन बच्चों के गैप्स को दूर करने के लिए विशेष संचालित की जा रही है। जिले में गृह संपर्क अभियान के माध्यम से बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है और ये प्रयास किए जा रहे हैं कि शाला खुलते ही ये शाला में नियमित रूप से आना प्रारंभ करें एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्राप्त कर सकें। जिले में सामाजिक चेतना केंद्र के माध्यम से ग्रामीण जनों एवं अपने साथियों को ड्रॉप आउट बच्चों को शाला में प्रवेश हेतु प्रेरित किया जा रहा है। सरकारी शिक्षकों के द्वारा घर घर जाकर माताओं से सरकारी शालाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के प्रयासों पर चर्चा की जा रही है। साथ ही जिले में ड्रॉप आउट बच्चों को शाला से जोड़ना, शाला की पढ़ाई पूरी होने पर कॉलेज से जोड़ना, ड्रॉप आउट बच्चों और युवाओं को शिक्षा से जोड़ने प्रयास लगातार किए जा रहा है। इस बारे में जिले के डीपीसी श्री आर उइके ने जानकारी देते हुए बताया कि
3: जिले में चलाया जा रहा अभियान 2.0 शिक्षा के संबंध में बताना चाहता हूं कि माननीय कलेक्टर महोदय एवं सीओ मैडम के मार्गदर्शन में जो शिक्षा से वंचित विद्यार्थी कक्षा में अध्ययनरत नहीं है उन बच्चों को प्रवेश दिलाने हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जो कि जिले के प्रत्येक विकास खंड में डाइट एवं जनपद शिक्षा केंद्र के टीम के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि 100% हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहे।
2: सीहोर जिले से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं प्रदीप सिंह चौहान।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अब हम रुख करते हैं शहडोल जिले की तरफ, जहां प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत संसाधन युक्त बनाने के लिए शिक्षा विभाग 51 स्कूलों का विलय कर बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल और सरकारी संस्थानों के सही उपयोग करने के लिए कदम बढ़ा रहा है। पेश है शहडोल से हमारे संवाददाता अरविंद पांडे की यह रिपोर्ट।
4: शहडोल जिले में ऐसे 51 विद्यालयों को चिन्हित किया गया है जहां छात्र संख्या 10 से भी कम है। इन स्कूलों को बंद कर यहां पढ़ रहे बच्चों को नजदीक के ही शासकीय विद्यालयों में शिफ्ट किया जाएगा। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल देना और सरकारी संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करना है। जिला परियोजना समन्वयक अमरनाथ सिंह ने बताया कि विकास खंडवार स्कूलों को चिन्हित किया गया है। शासन स्तर से निर्देश मिलते ही छात्र व स्कूल सामग्री को नजदीक के विद्यालय में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहीं शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार शिक्षक वाले स्कूलों में भेजा जाएगा। चिन्हित किए गए 51 प्राथमिक स्कूलों में छात्र संख्या नाम मात्र की है, जबकि हर स्कूल में 1 से 2 शिक्षक तैनात हैं। कम छात्र संख्या होने के बावजूद इन स्कूलों के संचालन, शिक्षकों का वेतन व रखरखाव पर हर साल लाखों रुपए खर्च हो रहे थे। सबसे अधिक 15 स्कूल गोपारू विकास खंड में है, जबकि सुहागपुर और व्यवहारी विकास खंड में 11-11 प्राथमिक स्कूल है। शिक्षा विभाग का मानना है कि स्कूलों के विलय से बच्चों की पढ़ाई पर कोई नकारात्मक असर नहीं होगा, बल्कि उन्हें अच्छा शैक्षणिक माहौल और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर है शाजापुर जिले से, जहां गेहूं उपार्जन का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है। 9 अप्रैल से प्रारंभ हुई समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 28 मई को संपन्न हुई, जिसमें जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए उज्जैन संभाग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं शाजापुर से हमारे संवाददाता अजीत पारशर।
5: समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड गेहूं खरीदी शाजापुर ने उज्जैन संभाग में हासिल किया दूसरा स्थान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के उद्देश्य से संचालित समर्थन मूल्य खरीदी अभियान के तहत शाजापुर जिले में गेहूं उपार्जन का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया। 9 अप्रैल से 28 मई तक चले इस अभियान में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा गया। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने खरीदी की अंतिम तिथि भी बढ़ाई थी, जिससे कोई भी किसान अपनी उपज बेचने से वंचित न रहे। शाजापुर कलेक्टर रिजु बापना के मार्गदर्शन में जिले के 93 उपार्जन केंद्रों पर खरीदी, तोल, परिवहन तथा भीषण गर्मी के बीच किसानों के लिए आवश्यक सुविधाओं की प्रभावी व्यवस्था की गई। जिले में इस वर्ष 4,27,417 मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हुआ, जो गत वर्ष की तुलना में अधिक है। उत्कृष्ट प्रबंधन और किसानों की सक्रिय भागीदारी के चलते शाजापुर ने गेहूं उपार्जन में उज्जैन संभाग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जिला आपूर्ति अधिकारी रिजू बापना के अनुसार खरीदी के साथ साथ भुगतान प्रक्रिया को भी प्राथमिकता दी गई। अब तक 67,000 से अधिक किसानों को 1,004 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खातों में अंतरित की जा चुकी है। समय पर भुगतान और सुव्यवस्थित खरीदी व्यवस्था ने किसानों का विश्वास और मजबूत किया है। शासन और किसान हितैषी नीतियां, जिला प्रशासन के सतत निगरानी तथा उपार्जन केंद्रों पर किए गए समन्वित प्रयासों के परिणाम स्वरूप जिले में इस वर्ष गेहूं उपार्जन अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। शाजापुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अजीत पाराशर की रिपोर्ट।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश का कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी पर महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
4: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
5: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
3: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि साझा बौद्ध विरासत और सदियों पुराने जन संबंध भारत म्यांमा संबंधों को अनूठी पहचान प्रदान करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर

को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दासगुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने दो विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रधानमंत्री ने हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतने पर बधाई दी है। इस प्रतियोगिता में भारत दूसरे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब हम आपको आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण दे देंगे। अब से कुछ समय बाद 7:20 पर ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम होगा, जिसमें आज की बात होगी राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना पर। साथ ही जानेंगे घरेलू व्यंजन और घरेलू टिप्स। दिल ने फिर याद किया, ये कार्यक्रम होगा रात 8:00। सदाबहार फिल्मी की दुआ कार्यक्रम चित्रगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे 9:15 पर। पब्लिक स्पीक ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा 9:30 पर। और श्रोताओं, आपके मनपसंद फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मनभवन होगा रात्रि 10:00 से। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में भुवनेश कोंकली और साथियों का गायन हम आपको सुनाएंगे, राग होगा शिव केदार। ये था विवरण आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का। अब जानकारी दे दे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

कल प्रातःकालीन सभा में सदाभार गीतवा कार्यक्रम सुनहरे पल होगा सुबह 7:20 पर। विविधा कार्यक्रम होगा सुबह 8:30 पर। लोक संगीत में सुबह 9:00 और शाम 6:45 पर कालूराम बामनिया के गाए लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे। सुगम संगीत में बाबुल सुप्रियो के गाए रचनाएँ हम आपको सुनवाएंगे सुबह 9:15 पर और शाम 6:30 पर। शास्त्रीय संगीत में सुभाष देशपांडे और साथियों का सुभाष देशपांडे का वायलिन पर बजाया राग देवगिरी बिलावल हम आपको सुनवाएंगे। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी की भोपाल केंद्र से प्रसारित होगी सुबह 10:00 और सजीव फुनैन कार्यक्रम MH हॉटलाइन हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 10:05 पर। श्रोताओं अब जानकारी दे दें हमारे मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। सुबह 11:00 फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे का अनुप्रसारण होगा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा दोपहर 12:00 से और संग्रहालय से ये कार्यक्रम अनुप्रसारित होगा 12:30 पर। आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से महिला कार्यक्रम का प्रसारण होगा दिन में 1:00। आरंभिक चर्चा होगी हौसला आकाशवाणी के 90 वर्ष पर। योजना में प्रतिभा किरण योजना के विषय में जानकारी दी जाएगी। साथ ही मेरी उड़ान क्रम में मेडिकल स्टोर संचालिका अर्पणा से आराधना की बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। रूप लावण्य में जानेंगे मेकअप के छोटे छोटे राज और फूड जोन में सीखेंगे ठंडा ठंडा मैंगो श्रीखंड बनाना। श्रोताओं सांध्यकालीन सभा में युवा श्रोताओं कार्यक्रम होगा युवाणी संध्या 5:00। आरंभ की चर्चा होगी तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस पर। साथ ही बात होगी हमारे शहर में कटनी शहर पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 5:45 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा।

0: या 6 बजे। किसान श्रोताओं कार्यक्रम खेती गृहस्थी होगा संध्या 7:20 पर। आज की बात में जानकारी प्राप्त करेंगे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना पर, साथ ही भेंटवार्ता होगी कृषि उत्पादन के लिए बैंकों का योगदान। डॉक्टर धनंजय कुमार से ये बातचीत होगी। दिल ने फिर याद किया, ये कार्यक्रम होगा रात 8 बजे। चित्रगीत होगा 9:15 पर। उर्दू कार्यक्रम कहकशां आकाशवाणी के भोपाल के दर्शन प्रसारित होगा रात्रि 9:30 पर। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मनभावना आपके लिए लेकर आएंगे रात 10 बजे। और शास्त्रीय संगीत में सुभाष देशपांडे का वायलिन पर बजाया राग जय जय बंते हम आपको सुनवाएंगे 10:30 पर। ये था विवरण कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। देशव्यापी खेत बचाओ अभियान रायसेन से शुरू। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह किया। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी की प्रक्रिया जारी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नागरिकों से अपने सुझाव साझा करने की अपील की। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले। और भोपाल, इंदौर, देवास, सीहोर सहित कई जिलों में बादल छाए, तेज हवाओं के साथ कई जगह बारिश और मौसम हुआ सुहाना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के रमासिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान एक महीने तक चलेगा। इसका उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह किया।
1: मेरे किसान भाइयों, आज धरती की हालत ये हो गई है कि लगातार हमने खाद, पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाई डाल डाल के ऐसी हालत कर दी कि धरती माता बीमार होने लगी। एक सीमा होती है, लेकिन आज मैं आपसे ये कहने नहीं आया कि खाद नहीं डालना है। आज मैं ये कहने आया हूँ कि डालना तो है, लेकिन ये तो विचार कर लो कितना डालना है।
0: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और नव निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेंगे। किसानों को मृदा परीक्षण, स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्राकृतिक खेती, उर्वरकों के संतुलित उपयोग और जल संरक्षण तकनीक के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें नकली उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों की पहचान करना भी सिखाया जाएगा। अभियान के दौरान किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी मदद मिलेगी। इसमें

0: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी UGC लागू करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में आज उन्होंने बताया कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है जो विभिन्न धर्म समुदाय के लोगों से सुझाव लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश को आज समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।
1: हम अपने राज्य के अंदर भी इस समान नागरिक संहिता को लगाने के लिए UGC लगा रहे हैं, जिसकी समिति भी बना दी गई माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में, अलग अलग विद्वानों को जोड़ करके। और वो समिति अपने राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर हमारे सभी धर्मों के लोगों से सुझाव भी ले रही है और सबका संकलन करके हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी समान नागरिक संहिता मध्यप्रदेश में लागू हो जाए। मध्यप्रदेश की इच्छा है कि वो होना चाहिए और मुझे गर्व होगा कि हमारी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ेगी।
0: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सभी वर्गों के साथ संतुलन बनाते हुए समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की है जिस पर आम नागरिक अपने सुझाव दे सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस PS नरसिम्हा और अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को तय की है। न्यायाधीश विवेक रुसिया मध्य प्रदेश जबलपुर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा के प्रमोशन के बाद उन्हें स्थान मिला है। सचदेवा को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी गई है। जस्टिस विवेक रुसिया जबलपुर के रहने वाले हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। उन्होंने लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका दृढ़ संकल्प, उद्यमशील देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही है। आज विश्व दुग्ध दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि प्रदेश के परिश्रमी पशुपालकों ने मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्यों में शामिल किया है। डॉ. यादव ने बताया कि राज्य सरकार गौ संरक्षण, गौशालाओं के निर्माण और डेयरी क्षेत्र के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। शहडोल से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में हर दिन 6,50,000 लीटर दूध का उत्पादन होता है। और अब खबर मौसम की। नौतपा के 8वें दिन आज प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का असर बना हुआ है। राजधानी भोपाल में भी ढलती शाम में अचानक बादल छा गए। तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक घुल गई। भोपाल, इंदौर, देवास, सीहोर समेत कई जिलों में आज तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। तापमान में तेजी से गिरावट आई। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज जिले में भी तेज आंधी के साथ कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। आगर मालवा जिले में आज दोपहर तेज धूल भरी आंधी तूफान ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। पन्ना में कल अचानक तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना में आंधी और गरज चमक के साथ ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परिसर में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पन्ना में आज प्रजापिता प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से नशे से दूर रहने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। झाबुआ के रामा में कल विकासखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने शहर के 4 नलकूपों

का जनसामान्य को जल आपूर्ति के लिए 10 दिन के लिए अधिग्रहण किया है। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के नवाचार के तहत कलेक्टर कार्यालय में आज उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। अशोकनगर में पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 15 जून तक किए जा सकते हैं। राजगढ़ जिले में रेशम कृमि पालन के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो गया है, इच्छुक कृषक आवेदन कर सकते हैं। मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग ने संबल योजना के लंबित मामलों को जल्द निपटाने और जर्जर स्कूल भवनों को ठीक करने के निर्देश दिए। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में 3 जून को जिला कौशल समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाला सगला किसान भाई बहनों के स्मिता की राम राम। भाई बहनों, आज 1 जून को दर्ण है और आज का दर्ण पूरा विश्व में दुग्ध दिवस का रूप में मनाया जावे है। वैश्विक खाद्य पदार्थ का रूप में दूध को महत्व, पोषण में इको योगदान, अन डेयरी किसान ना जो रेवे उनके सम्मानित करना का सारू इना दर्ण की शुरुआत 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ का खाद्य अन्न कृषि संगठन FAO द्वारा की गई थी। भाई बहनों, दूध गए तो हम भी जाना हाँ कि भाई भरपूर को ये मानी लो कि दूध कभी नहीं मिले तो हमारे बहुत सारी कमी ना हुई जाए है, जैसे कहीं विटामिन प्रोटीन इनकी कमी ना में तो कहीं ना कहीं तो हमारे विटामिन ए जो भरपूर मात्रा में दूध में मिले है तो ऊका सारू हमारे दूध की आवश्यकता हमेशा पड़े है। और इको उद्देश्य भी जो थो वो भी यही थो कि पोषण मूल्य अन्न कृषि वैश्विक अर्थव्यवस्था इन सगला में भी डेयरी सेक्टर को महत्व उजागर करना।

भरपूर मात्रा में दूध में मिले हैं, तो उका सारू हमारे दूध की आवश्यकता हमेशा पड़े है। और इको उद्देश्य भी जो थो वो भी यही थो कि पोषण मूल्य अन कृषि वैश्विक अर्थव्यवस्था इन सगला में भी डेयरी सेक्टर को महत्व उजागर करना।

0: गाड़ी चलाने में क्या है कि कोई सवारी का मौका नहीं। अगर आपका एक बार एक्सीडेंट हुआ तो या तो आप अपाहिज हो जाएंगे या आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन उस माँ बाप का सोचिए कि जो आपको पाल पोस के 20, 21, 22 साल का किया है, वो उसके दिल पे क्या बीतती है। और हमारे यहाँ 30 से 40% जो जान जाती है 20 से 24% युवा वर्ग की जाती है, जो हमारे देश का भविष्य है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकील साहब है। तो इसके लिए मैडम मैं प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात मैडम, मैंने एक लाइन अगर आपने पढ़ी हो कि आपको वाहन चलाने का लाइसेंस एक दोनों हाथ से, फिर 90% 95% लोग बाग एक हाथ में मोबाइल लेके चलाते,
1: जी
0: जिससे कि पीछे वाले को भी दिक्कत होती है। जिसकी कोई गलती नहीं, जो नियमानुसार चल रहा है, उसकी भी सड़क दुर्घटना हो सकती है।
1: जी तो आपका ये प्रयास रहता होगा कि मतलब किसी भी तरह से व्यक्ति, मनुष्य, हर व्यक्ति को जागरूक किया जाए,
0: जी मैडम, हर ड्राइवर, हर वाहन चालक को।
1: हर वाहन चालक को।
0: और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ कि जनवरी 2021 में मैं मन की बात में भी सुनता हूँ हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने दो बहुत सुंदर लाइन बोली थी उसी में, 31 जनवरी 2021 को, बी मिस्टर लेट देन लेट मिस्टर, ये स्लोगन्स लगे हुए हैं। और एक
1: जी
0: माननीय प्रधानमंत्री ने बोला था कि दिस इज हाईवे नॉट रनवे, जो लोग तूफान की तरह गाड़ियां चलाते हैं।
1: जी जी जी
0: तो उसको मैंने फिर प्रिंट करके प्रचार के रूप में अपने हैंडल पे भी डाला और
1: नहीं
0: उसको
1: तो बहुत
0: काफी
1: बढ़िया
0: पसंद
1: बात
0: किया
1: है।
0: गया।
1: जी जी जी
0: और इसके साथ एक Love 30 है मैडम, ये यूनाइटेड नेशन ने 2021 में जारी किया,
1: अच्छा।
0: जो कि हमारे यहाँ दिखता नहीं है। मेरा आकाशवाणी के माध्यम से ये निवेदन है कि समाचार या जो भी प्रोग्राम के बीच में अगर उचित लगे तो सड़क सुरक्षा के लिए एक बार बोलना चाहिए अपने जो श्रोता लोग हैं उनके लिए, क्योंकि हर कोई आज गाड़ी चलाता है।
1: जी जी
0: और
1: जी
0: किसान भाइयों से यह निवेदन है कि हम जब भी, जैसे मैं उज्जैन भी जाता हूँ तो कोई पेट्रोल पंप दिखा, कोई रेस्टोरेंट दिखा, तो ये बीच का जो रास्ता है 4 लाइन का, ये लोग थोड़ा सा अपनी सुविधा के लिए कि 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, ये लोग उस रास्ते से निकल जाते हैं, उसको काट दिया जाता है, तो वो ना काटा जाए, थोड़ा घूम
1: जी
0: के चले जाए, जहाँ यू टर्न है प्रॉपर वहां से जाए।
1: जी थोड़ा लंबा जाके घूम के
0: हाँ,
1: आ
0: लेकिन वो
1: जाएं।
0: बीच में से काट के ना जाए, ये मेरा प्रार्थना है सभी कृषक किसान भाइयों बहनों से।
1: सही, कई दुर्घटनाएं, सही बात है,
0: हाँ,
1: इससे हो
0: क्योंकि सामने
1: जाती
0: वाले को
1: हैं।
0: नहीं मालूम कि कोई यहाँ से निकल के आ रहा है, वो 80-90 से आ रहा है, और आप
1: जी
0: एकदम से सामने पेट्रोल पंप, सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट की मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, ये उचित नहीं है। अपने घर वालों
1: हाँ,
0: का ख्याल रखिए कि कोई आपका घर पे इंतजार कर रहा है।
1: ये बहुत ही अच्छी चीज आप कर रहे हैं, जो
0: जी
1: लोगों की जान
0: जी
1: के लिए
0: जागरूकता के लिए,
1: और
0: सड़क
1: जी
0: सुरक्षा।
1: जागरूकता के लिए, मतलब पता नहीं कितने ही बच्चे, कितने ही बड़े लोग इसके लिए वो
0: चार
1: हो
0: सौ
1: सकते
0: पचहत्तर
1: हैं।
0: जान मैडम, माननीय गडकरी साहब जो अपने सड़क परिवहन मंत्री हैं,
1: जी
0: उन्होंने
1: जी
0: लोकसभा में बताया कि लगभग प्रतिदिन 480, मतलब अपन राउंड फिगर में 500 मान सकते हैं,
1: जी
0: और वर्ष में 1,80,000 जान जाती है।
1: बहुत ज्यादा है।
0: जी मैडम, और हमारे प्रदेश का भी माननीय मुख्य सचिव महोदय ने आंकड़ा जो बताया है मध्य प्रदेश का, वो लगभग 14,000 का,
1: अच्छा।
0: 1 वर्ष में 14,000, जो कि बहुत ज्यादा है। वो प्रयास किए जा रहे हैं। और मैडम मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सेवानिवृत्ति के बाद में CM हेल्पलाइन के माध्यम से
1: जी
0: हर जिले के SP साहब से अनुरोध किया ट्रैफिक से, और काफी लोगों ने उसकी प्रशंसा करी, और 7-8 जिलों में तो बहुत ही अच्छा काम किया कि उन्होंने पेट्रोल पंप पे जाके वीडियो बनाया और बताया गया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का स्टिकर भी बताया उन्होंने,
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: लगभग 28 से 29 जिले में आधा मध्य प्रदेश कवर हो गया मैडम, और आकाशवाणी के माध्यम से शायद आज पूरा मध्य प्रदेश कवर हो सकता
1: नहीं, मध्य प्रदेश नहीं है तो अपन,
0: है।
1: हमारा ये कार्यक्रम तो दूसरे प्रदेश में भी सुनते हैं।
0: जी मैडम, धन्यवाद।
1: मतलब आपकी जो बात है ये सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो, मतलब अपना जो है ये पूरे ऑल इंडिया में चलता
0: ओके,
1: है,
0: जी मैडम,
1: तो ये बात आपकी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है।
0: जी
1: आप ये हमारे जितने भी श्रोता इसको सुन रहे होंगे,
0: जी मैडम,
1: और खास करके देखिए शहर में तो लोग फिर भी जगह जगह पर वो बने रहते हैं, बोर्ड लगे रहते हैं, कई चीजें होती भी है, लेकिन आपने देखा होगा गाँव में ये चीजों की कमी रहती है। और आज हम जो ये कार्यक्रम अपना, जो अभी आपका कार्यक्रम जो ये अपना खेती गृहस्थी ग्राम लक्ष्मी में जाएगा, ये महाराष्ट्र, राजस्थान सब दूर के कृषक किसान भी सुनते हैं खास
0: जी
1: करके, तो उसके माध्यम से मतलब ये मानिए कि गांव गांव तक भी पहुंचेगी जो बातें। कई बार क्या होता है, गांव से बच्चे सिटी में आते हैं, शहर में आ जाते हैं रहने पढ़ने,
0: जी मैडम,
1: और उनको कई बातें नहीं भी पता होती
0: जी
1: है। तो आप और बताइए, आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: मैडम, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी कृषक भाई बहन मेरे से संपर्क करना चाहें तो मैं ये सेवा देना चाहता हूँ, या उनकी पंचायत है कहीं भी, वो अगर चाहते हैं कि मेरे से संपर्क करें तो मैं उपलब्ध हूँ, और चाहता हूँ कि जैसे इसको इनका जो सरपंच है, पंचायत कार्यालय है, स्कूल है, वहाँ पे सड़क सुरक्षा संदेश लगाएं, जो भी आने जाने वाले को, जो पेट्रोल पंप तो आजकल हर जगह है वहाँ पे लगाया जाए।

0: और एक चीज और ये बताना चाहता हूँ कि दो राज्यों में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ये आदेश कर दिए गए हैं कि हर पेट्रोल पंप पे और वाहन विक्रेता जो डीलर्स हैं ऑटोमोबाइल के, वो उनकी भी ड्यूटी है, उनकी भी जवाबदारी है जो कार बेचते हैं बाइक बेचते हैं, कि वो अपने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए, सड़क सुरक्षा के लिए, वो भी सड़क सुरक्षा संदेश लिखे।
1: अच्छा।
0: टायर वाले हैं, जो भी टायर कंपनी है उनको भी लिखना चाहिए, क्योंकि आजकल नहीं लिखते हैं ये, अभी तक तो नहीं लिखा।
1: जी जी,
0: ये मेरा आकाशवाणी के माध्यम से निवेदन है।
1: दिनेश कुमार जी, आपने बहुत अच्छी ऐसी ऐसी जानकारियां दी है, ऐसी जागरूकता भरी बातें बताई है कि सच में ये एक व्यक्ति के लिए नहीं, सभी के लिए काम की है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो,
0: जो भी वाहन चलाता हो।
1: और वाहन चलाना ही क्या है, मतलब आप तो देख लीजिए कि सड़क पे चलने वाला व्यक्ति भी जागरूक होना जरूरी है,
0: पैदल वाला भी।
1: तो उससे ये है कि जैसे मोबाइल का जो परेशानी है
0: जी,
1: वो चलने वाले भी अगर चलते चलते बात करते चलेगा तो उसको भी ये काम हो सकता है, उसके लिए भी।
0: जी मैडम, मैंने यही बोला कि आपको वाहन चलाने का लाइसेंस,
1: तो सही बोला आपने कि दोनों हाथों से हमको लाइसेंस मिलता है, एक हाथ से नहीं मिलता है। बहुत बढ़िया, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैडम, मैं आकाशवाणी इंदौर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इतना अमूल्य समय दिया और किसी एक की भी जान बची तो मेरा ये प्रयास सफल होगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।
1: विभिन्न, और हमने सुन जानियो सड़क सुरक्षा 365 दण, जी का मैं दिनेश कुमार रावत जी, सेवानिवृत्त SDO नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से हमने घनी सारी बातचीत करी और जानियो की सड़क सुरक्षा कई होवे, कैसे उके रखनो और कैसे हमारे सुरक्षित रहनो। अब इका बादे तुम्हारे भी इंतजार होएगो कि थोड़ो घणो मनोरंजन कर लवा और सुना चलो सीमा मिश्रा को गायो यो लोकगीत।

बहनों और हमने सीमा मिश्रा को गायो यो लोकगीत सुनियो। अब अपन आज जो है एक बात और जाननी है कि जो राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना कही हुए है भाई बहनों और यो एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिके ई नाम का नाम से भी जानो जाए है। और यह योजना जो है 14 अप्रैल 2016 के शुरू करी थी, जो कि उद्देश्य जो इको थो वो तो कृषि उपज का सारू एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा के साकार करनो और किसान ना के उनकी फसल को उचित मूल्य दिलवानो। क्योंकि अपन जो पहला जो तरीको थो अपना माल बेचने को उका में हमारा बीच में आड़ती आई जाता था, उनके कमीशन देनो पड़तो तो हम सीधा व्यापारी तक नहीं पहुँच पाता था, तो उका से भी हमारे सही मूल्य भी नहीं मिलते थो और साथ ही आड़तियाना को पैसों भी कटी जाते थो। तो यह योजना इका सारू शुरू करी गई कि यह योजना देश भर का जो कृषि उपज बाजार है वो उनकी समिति ना जो रहे उनकी मंडी ना के एक ऑनलाइन नेटवर्क से जोड़े है और इका से किसान घर बैठे या फिर स्थानीय मंडी से अपनी उपज की गुणवत्ता का अनुसार उके देश भर का खरीदार से व्यापारी ना से के ऑनलाइन बेची सके कि के भी चाहे वी के वो बेची सके है। और इन्हीं योजना में ई बोली और सीधा किसान ना क्या बैंक खाता में भुगतान की सुविधा रहे जिससे कि बिचौली ना की भूमिका खत्म हो जावे और सारो पैसों सीधो हमारा किसान भाई बेड़ोर का खाता में आवे है। तो यह योजना सिर्फ इकसारुज थी कि सीधो हमारा फसल को मूल्य जो है हमारे जो मिलनो चाहिए वो हमारे तक सीधे पहुंची जाए और सही मूल्य हम मिल सका। इसी तरीके राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना शुरू करी गई थी भाई बहनों। अब इका साथे ज घड़ी भी मारे इशारों करी रही है कि तमसे अनुमति लेने की बखत आई गई है। मारे दो अनुमति। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: 12 वर्ष गरीब कल्याण का प्रसारण।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निशित कुमार।
2: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, key welfare schemes and their grassroots impact. Participants are Shubhamoy Bhattacharji, economic analyst.

0: को जाना पड़ता है। जो हिली टेरेन्स हैं उसमें पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। जो डेजर्ट एरियाज हैं खासकर जैसलमेर, राजस्थान और गुजरात, कच्छ के साइड में बहुत सारे ऐसे हमें एविडेंस मिलते थे कि जहाँ पानी की समस्या इतने साल बाद भी आज़ादी के, मतलब ये एक किसी भी देश के लिए कोई अच्छी कन्वीनियंट स्थिति नहीं है, कन्वीनियंट पिक्चर नहीं है कि आप एक बेसिक सुविधा, जैसे आप पावर की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, या पानी की बात कर लीजिए, टॉयलेट्स की बात कर लीजिए, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं जो आम तौर पर अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से जो नहीं हो पाई। और आपने सही कहा कि अगर आप स्वास्थ्य लाभ भी देखें इस योजना से तो बहुत ज्यादा लाभ होता है, और इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, बहुत लोगों ने बहुत सारे रिसर्च और एविडेंस बेस्ड पेपर्स भी निकाले हैं, जिससे ये भी कहा है कि इससे जल जीवन मिशन की वजह से बीमारियों में बहुत कमी आ रही है, चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव हो रहे हैं, महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति इंप्रूव हो रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट गर्भवती महिला के लिए ये एक बून की तरह आया है, क्योंकि बहुत सारी वाटरबॉर्न डिजीजेस गर्भवती महिला को गंदे पानी की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता था। और जल जीवन मिशन से क्या हुआ है, ना सिर्फ पेयजल घर तक गया है, बल्कि बहुत सारी, मतलब प्रोडक्टिव टाइम जो महिला का पानी इकट्ठा करने में जाता था, वो अब और चीजों में वो व्यस्त हो सकती है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बन सकती है, वो लखपति दीदी योजना का लाभ उठा सकती है, क्योंकि उसके पास अब वक्त है, घर में पानी आ रहा है। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन बहुत बड़ा प्रभावी कदम है।
1: जी जी जी अदिति, और इसी क्रम में हम आगे बढ़े। शुभ में सैनिटेशन की अगर बात करें, स्वच्छ भारत मिशन ये एक फ्लैगशिप मिशन जिसे कहें, और जब भी इसे इम्प्लीमेंट किया गया था उसके पहले शायद, पता नहीं, इस तरह की योजना कभी सुनने को नहीं मिली थी। सैनिटेशन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन जिसे ओपन डेफिकेशन एलिमिनेट ऑलमोस्ट कर दिया गया, मास कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स, ये कोई छोटी बात नहीं है। शुभ में क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
2: हाँ, ये वाला चीज जो आप देखेंगे
1: जी,
2: कि पानी का सप्लाई, स्वच्छ भारत मिशन, इन सभी चीजों से जो बदलाव अभी दिख रहा है वो है काफी सिग्निफिकेंट। आप इसके पहले एक आम बात थी कि बहुत सारी जगहों पे ओपन डेफिकेशन और उससे चलते जितने सारे तरह की बीमारियां, उनका खासकर मानसून में फैल जाना, बाकी समय में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें एक आम सरफ चीज था कि भाई होता है, क्या किया जाए। इसमें जो भी जो नेशनल हेल्थ सर्वे के आप डेटा देखेंगे तो सबसे बड़ी बदलाव आप उस डेटा से देख सकते हैं कि ये एक से कहते हैं आपका एक मेजरमेंट आ गया है कि कितना और कितना प्रभावी ये सारे बदलाव हुए हैं। अभी आप, मैं आग्रह करूंगा कि कोई आकाशवाणी के जो लिसनर्स हैं, कभी अगर वो ट्रेन का सफर करे, दूर दराज के रास्ते में चलते हुए एक जो कॉमन साइट था ओपन डेफिकेशन का, वो करीब एकदम वैनिश हो गया, और ये बहुत ही बड़ा बदलाव है। इसमें टाइम लगा, इसमें करने में शुरुआत में बहुत सारे हिचक आए, बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस करने पड़े, लोगों को बहुत सारे हिदायतों के साथ साथ बहुत सारे आग्रह का भी इंटरेस्ट चीजें दिया गया, इधर उधर की जैसे कहते हैं शॉर्टकमिंग्स भी आई, लेकिन इतने साल के बाद अब जाके उनका इफेक्ट लोगों के जिंदगी के ऊपर अभी दिख रहा है। और ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज इसलिए है कि ये एक सरफ एक सिविक चेंज आ गया है हमारे देश में, बहुत सारे इलाकों में। अब जिन सारी चीजों की बात करें, जैसे ओपन डेफिकेशन, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन के साथ उज्ज्वला, या उसके पहले जब जैम ट्रिनिटी, इन सब के चलते लोगों में जो एक नया वार्तालाप का एक सिस्टम आ गया, एक नया जैसे कहते हैं आइडियाज का एक कॉम्बिनेशन बन गया है कि ये सारी चीजें तो जिंदगी में होनी चाहिए, इनका ना होना ही आज आश्चर्य की बात लगता है बहुत काफी जगहों पे। ये जिसे कहते हैं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, एक बहुत बड़ा चीज है डेमोक्रेसी के लिए, बहुत बड़ा चीज है लोगों में अपना भरोसा बनाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कि हम इससे आगे चल सकते हैं। ये सारी चीजों के लिए हमें डेली का जो लड़ाई है वो जूझना नहीं पड़ेगा, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सब हमारे लिए, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और वो उपलब्ध रहेंगी।
1: एब्सोल्युटली शुभमा, अदिति, टॉकिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नेट्स, ऑफ कोर्स शुभमा आल्सो मेंशनड अबाउट यू नो द हेल्थ एस्पेक्ट। हेल्थ इज वन थिंग व्हिच जस्ट कैन नॉट बी ignored, that is one, and of course the importance of it cannot be overstated. If you look at the Western countries, the more advanced economies, they have their own safety nets, they have their own social health care schemes and so on and so forth. In India, if you talk of, maybe let's say 10, 12 years or 15 years,

0: poor not only come out of poverty, but they have a means of dignified living. For dignified living, housing is very important. You know, people are being helped to get access to affordable housing. Like you said, Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen is particularly remarkable in the scale that it seeks to achieve. If you look at the sheer numbers, I think Grameen Yojana targets around 5 crore houses by the year 2029. And so far, the data suggests that almost, 3.90 crore houses have been sanctioned and nearly 3 crore have actually been completed and are being distributed through the state system. What is even more important is that these houses are going to people who do not own any immovable assets, like who do not own any property or any land or any house at all. And the system also now is artificial intelligence driven. There are a number of monitoring tools that have been deployed to ensure that the anomalies get detected in time, that only the very genuine beneficiaries get houses, and there's Aadhaar face authentication happening. And what is most important is geotagging of the structures is happening, structures that are being created. Everything is digitally driven. So what is important also is that there is seamless coverage being provided to the beneficiaries of PM Awas Yojana with other schemes of the government. Whoever comes into the system of PM Awas Yojana will automatically get linked to Swachh Bharat Mission, Grameen, Jal Jeevan Mission, Ujjwala Yojana, Surya Ghar Mission and Muft Bijli Yojana.
1: Correct.
0: So there's a seamless coordination and integration of the government system. All that has happened only because of the digital platforms that have been created for the purposes. There are portals where people can apply. Aadhaar is already there, like we discussed, the Jam Trinity is there.
1: Yes.
0: So everything is in place and now the foundation has been laid and now building blocks are being created.
1: True. Shubha, agar hum baat karein, Pradhan Mantri, ye Mudra Yojana ki. Mudra Yojana ek aisi yojana hai jahan ki humne dekha hai ki lagbhag abhi tak 57 crore se jyada लोन ये डिसबर्स किए जा चुके हैं और ये खास करके महिलाओं के लिए एक बहुत बहुत ही बड़ा एक सहारे का काम कर रहा है, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका दे रहा है. वी ऑल नो दैट नो कंट्री, नो इकोनॉमी और नो सोसाइटी रादर कैन यू नो एडवांस विदाउट टेकिंग इनटू द लूप द अदर 50% ऑफ द पॉपुलेशन. नाउ मुद्रा योजना, जैसा कि हमने अभी चर्चा की, 57 करोड़ प्लस लोन अभी तक डिसबर्स किया है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है, खास करके महिलाओं के लिए अगर हम बात करें.
2: द इफेक्ट दैट इज हैपनिंग इज यू नो अगेन समथिंग व्हिच इज समथिंग व्हिच वी डिडंट एक्सपेक्ट अर्लियर. सो द वे टू पुट इट इन इज दैट दिस इज समथिंग, दिस वाज समथिंग दैट वाज एक्सपेक्टेड अगेन टू हैपन एट अ लेटर लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी. दैट has begun to happen now. Why? Because Mudra Yojana essentially says that somebody who is able to take a loan for self, for entrepreneurship, should have the financial literacy to be able to carry that sort of a enterprise. Now, typically, somebody who's poor and who's doing an enterprise because she or he has been forced to do it is different from somebody who's doing a financial enterprise out of sheer, out of because he wants or she wants to do it. There's a difference. That difference, Kosh, because of the fact that an ecosystem of support, partially again through the Jam Trinity, has come in where people are confident that they can run a financial enterprise seamlessly. You know, because otherwise, what has been happening is that there are several types of interventions to create entrepreneurship which had been tried, which had not worked, primarily because people lack the confidence that whether the back end of an enterprise will be something that they can sustain. It's actually a very big thing because unlike a salaried person who gets some money at the end of the month, does the work and is all assured and comfortable that you'll get a salary, and so that's about it. Here a person is daily selling his ware, services, manufactured products, whatever it is, and earning income and keeping a track of it, and then also being able to sustain it and being able to pay, repay loans. And then because the Mudra loan, as we can see, is of three stages: Shishu, then Kishore, and then Tarun. So there are three stages in which, so you graduate from one to another. To be able to do that sort of a thing, you need a considerable amount of financial, what I should say, architecture in place. And that is a very interesting innovation that has been created. Obviously, compared to, say, Ujjwala or Sakshat Mission or missions like the Swachh Bharat Mission, this is relatively more recent. So it'll start showing its effect later. But already you can see from the PLFS survey, the Periodic Labor Force survey, that about 50% of Indians are now reporting self-employment. And that self-employment is not distress employment. It is employment, self-employment that is being made possible for a large number percentage of them because they are confident that they can take on these enterprises and can take on capacity building, capacity, I mean, expansion of their products and services, which wasn't possible earlier. How it will pan out is a very big thing. Remember, we are talking about a population base, which is the largest population base in the world. To be able to create self-employment in that sort of a large population, with being able to support themselves, being able to support their families, being able to carry on the business for long length of time, not being drawn into the race for getting a job. Here, there we are talking of plenty of changes, which is not very easy to think of as just, you know, suddenly that we've done it and it's one-time support. It's not a one-time support. It's something which is actually a result of series of interventions, which brings a scheme like Mudra into being a success that it is being envisaged.
1: Right, Shubham. देखिए अभी शुभम ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की. स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत 15,000 प्लस करोड़ लोन अभी तक डिसबर्स किए जा चुके हैं. इस बारे में भी थोड़ा हमें बताएं. और पीएम स्वनिधि योजना जो कि एक एक बहुत ही जिसे कह सकते हैं एक फ्लैगशिप स्कीम जिसे कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ये लाभान्वित कर रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे?
0: देखिए, ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है ये एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल रिफॉर्म है. वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ ही इसका आरंभ किया गया था COVID-19 के दौरान. जून 2020 में ये शुरू की गई थी. उस वक्त मंशा ये थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो बहुत बुरी तरीके से हिट हुए थे, जिनकी वजह से हम और आप कोविड से लड़ पाए थे क्योंकि वो सब्जी बेच रहे थे, वो वेयर्स बेच रहे थे, तो हम उसको खरीद रहे थे.
1: इवन अगर गिग वर्कर्स की बात करें,
0: बिल्कुल गिग वर्कर्स की भी स्वनिधि में वो भी काफी हद तक कवर होते हैं. तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी कि बेसिकली आइडिया था कि वर्किंग कैपिटल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको दी जा सके ताकि वो ऐसा ना हो कि COVID-19 की वजह से बिल्कुल ही त्रस्त हो जाएं. तो तब से इतनी इंपॉर्टेंट बन गई स्कीम और इसका लाभ इतना दिखाई देने लगा फाइनेंशियल सिस्टम में कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिग्निटी मिली, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिला. सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्किंग कैपिटल हाथ में है तो आप 10 तरीके की चीजें कर सकते हैं. तो अब क्या किया गया है, हाल ही में 2025 में यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर भी किया है और लोन देने की जो अवधि है वो 2030 तक बढ़ा दी गई है. और ना सिर्फ ये किया गया है, 3 लेवल्स पर लोन दिया जा रहा है स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स को. पहले लेवल पर आप ये 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है, वैसे ही दूसरे लेवल पे 20 से 25,000 कर दिया गया है और फाइनल लेवल जो है वो 50,000 है. और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को जो टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं. प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस स्कीम का बिंदु है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको कैशबैक इंसेंटिव भी दे रही है ये स्कीम. तो अभी तक अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश में हैं जो इसमें लाभान्वित हो चुके हैं और करीब 17,000 करोड़ तक का जो लोन है वो दिया जा चुका है. 122 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं करीब 17,000 करोड़ के.
1: राइट आदिति, लेट्स टॉक द वुमेन फोक. लखपति दीदी अभियान, ये लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है, कुछ बताएं इसके बारे में.
0: जी, ये एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की. और किसान सम्मान निधि की जो बात हुई उसमें बस छोटी सी एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि जब ये अमाउंट तय हो रहा था तब एक स्टडी करवाई गई थी कि फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट क्या है, उनकी कॉस्ट कवर करने का ये कवायद है.
1: जी,
0: जो 6,000 की रकम तय की गई है, ऐसा पाया गया कि अगर ये दे दी जाए तो एटलीस्ट उनका जो इनपुट है वो कवर हो जाएगा. इस वजह से ये 6,000 पे तय हुई थी. पर अब जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों में ये कहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ होंगे, जिसमें से पहले हम चर्चा कर चुके हैं गरीबों की, उसके बाद हम चर्चा कर चुके किसानों की, तीसरा यूथ आपने स्टैंड अप इंडिया की बात की और अब चौथी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की। ये चार स्तंभ हैं।

0: तक आप इनको फाइनेंशियली पावर नहीं करते, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाएं। जिसकी वजह से ये हुआ है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट इस देश में चल रही है। करीब 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त कार्यरत हैं। उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं जो भाग ले रही हैं, लखपति दीदी योजना उसके तहत ये कोशिश कर रही है कि हर महिला 1 साल में 1 लाख रुपए अपने बलबूते पर कमा सके। उसमें तरीके तरीके के प्रावधान किए गए हैं, जैसे द्रोण दीदी का प्रोग्राम भी उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। कुछ महिलाएं द्रोण दीदी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर खेतों में ड्रोन के माध्यम से मतलब पेस्टिसाइड्स छिड़काव कर रही हैं या और बहुत चीज़ें कर रही हैं। सिमिलरली कुछ लोगों को आप हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं। इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है, फिशरीज में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं महिलाओं को। उनका फाइनेंशियल जो इक्वेशन है, फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है, उसको बढ़ाने की कवायद है। और एक चीज़ की वर्ल्ड बैंक की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी, जिसको हम जिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं। वो देशों को मापती है इस माध्यम से कि कितनी इक्वल सोसाइटीज़ हैं और जो फ्रूट्स ऑफ पावर हैं वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों में। ये जितना कम होता है इसका वैल्यू, उतना एक सोसाइटी को इक्वल माना जाता है। तो वहाँ मैं पढ़ रही थी कि भारत का जो वैल्यू है जिनी इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की, वो 25.5 है और चाइना का 35.7 है और US का 41.8 है। कहने का मतलब है कि ये जो सरकार ने एक लैंडस्केप तैयार किया है वेलफेयरिज्म का, इससे ये प्रूव हो रहा है, और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक की, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहाँ बैठकर, ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं। और जैसा आपने अपने वक्तव्य में कुछ देर पहले कहा कि एक्सट्रीम पावर्टी, जिसका मेजर क्या है, उसका मेजर है कि $3 से कम पर प्रतिदिन कितने लोग इस देश में रहते हैं, उसकी जो संख्या है वो 16.2% 2011-12 में थी और अब घट के 5.3% रह गई है। तो धीरे धीरे एविडेंस क्रिएट हो रही है। इसी वजह से बहुत सारी एजेंसीज, जो सरकारी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी, अपने एविडेंस बेस्ड पेपर्स में ये कह रही है कि भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां उसको विकसित भारत बनने के लिए जो मैकेनिज्म्स चाहिए थे वो इन प्लेस हैं। विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित भारत का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है हमने अपनी।
1: जी,
0: अभी हम लो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में हैं, हमें हाई इनकम कंट्री बनना है 2047 तक। वो बनने के लिए चर्चा की है आपने, जिन तबकों की, उनको आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना है, उनको एम्पावर
1: करना है। राइट राइट, थैंक यू सो वेरी मच शुभमा आदिति, बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग जॉइंड अस एंड शेयर्ड योर व्यूज ऑन द टॉपिक। थैंक यू सो वेरी मच।
0: थैंक यू।
2: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@nsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: इन द स्पेशल सीरीज यू आर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, key welfare schemes and their grassroots impact. Participants were Shubhamoy Bhattacharji, economic analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Nishit Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
4: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लोफर फिल्म के इस प्यारे से गीत से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने।

थोड़ी सी बेवफाई। जी हाँ श्रोताओ, यही है फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अनवर सुलक्षणा पंडित और साथियों के युगल स्वर में। गुलजार की गीत रचना है, खय्याम का संगीत।

0: गुलजार की शब्दरचना खय्याम का संगीत, अनवर और सुलक्षणा पंडित को अभी आपने सुना। फिल्म जी हाँ थोड़ी सी बेवफाई। श्रोताओं इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगी।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: Of our shared future.
1: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता

हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बैनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या

0: जाकर किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
0: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481, 011-237-1717 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
5: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की।

मुकेश और सुमन कल्याणपुर को अभी आपने सुना फिल्म मॉडर्न गर्ल में। गीत रचना गुलशन बावरा की और संगीत रवि का था। श्रोताओं, चित्रगीत कार्यक्रम में अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं राजकुमार फिल्म का गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने। हसरत जयपुरी की शब्द रचना है।

हसरत जयपुरी की गीत रचना शंकर जयकिशन का संगीत मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर को अभी आपने सुना फिल्म राजकुमार में।

अप्रैल फुल। जी हाँ श्रोताओ, यही था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के युगल स्वर में गीत रचना हसरत जयपुरी की और संगीत शंकर जयकिशन का। चित्र गीत कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाए जा रहे हैं सुमन कल्याणपुर और साथियों के युगल स्वर में ये प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है मेरा क्या कसूर।

राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना, चित्रगुप्त का संगीत, सुमन कल्याणपुर और साथियों को अभी आप सुन रहे हैं। फिल्म का नाम है मेरा कसूर क्या है।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.6 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, गर्मी का मौसम चल रहा है। ये मौसम जहां अपने साथ रसीले आम, तरबूज, लीची, खरबूज जैसे स्वादिष्ट फल लाता है, वहीं लू का प्रकोप भी। देश के कई हिस्से इस समय लू यानी हीट वेव से जूझ रहे हैं। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बारिश होने से गर्मी से राहत भी मिलती है। भीषण गर्मी के मौसम में लू कई बार जानलेवा भी साबित होता है। ऐसे में जरूरी है कि हम लू से बचाव के लिए सावधानियां बरतें। हमारा आज का कार्यक्रम इसी पर आधारित है। लू से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और लू लगने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए, इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है। श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2-3-3-1-0-4-8-1-2-3-7-1-7-1-7-2-3-7-1-7-1-0-6 और 2-3-3-1-4-4-4-4। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 0-1-1 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9-2-8-9-0-9-4-0-4-4। आप इस पर भी प्प्रश्न भेज सकते हैं। आप हमारे एक्सटेंडल एट यार न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskYAR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन यार और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमाशंकर वाजपेयी रायबरेली से। जी रमाशंकर जी,
1: नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि लू से बड़ी पुरानी सुनते रहे हैं, लू में प्याज बहुत ही बचाव करता है और अन्य कोई भी साधन जिस तरह से लू से बचा जा सके वो कृपया बताए।
2: रूपाली जी, जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि लू के समय में प्याज से बहुत बहुत ही बचाव मिलता है, तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास है ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी, बट फिर भी जो हम पुराने समय से ये जो धारणाएं चलती आ रही हैं इनमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। तो आप प्याज जैसी चीजों का सेवन कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपना फ्लूइड इनटेक यानी कि पीने की जो तरल पदार्थ जो होते हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। तो सबसे ज्यादा जरूरी लू के समय में बचने के लिए है एक एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक यानी कि तरल पदार्थ का सही मात्रा में आपको आपको लेना है, और इसके अलावा आपको गर्म जगह से बचना है। मतलब अगर घर से बाहर जितना हो सके उन चीजों को आपको अवॉइड करना है, घर जितना हो सके घर के अंदर रहना है, तो ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं। खाने पीने में आपको जो भी आपको अभी मौसमी फल जो मैडम ने अभी बताए तरबूज लीची आम इनका सेवन करना है, और तरल पदार्थ का आपको पर्याप्त मात्रा में सेवन करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है।
0: डॉक्टर रूपाली, आपने कहा कि पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लिक्विड लेना चाहिए, तो किस तरह के तरल पदार्थों को लेना ठीक रहेगा ताकि जो शुगर का जो लेवल है वो बॉडी में वो कंट्रोल रहे?
2: आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप आम रस, आम पन्ना जो कि बहुत गर्मी के समय में बहुत ही एक कॉमन एक कूल ड्रिंक माना जाता है, बेल का रस, इस तरह के जो नेचुरल ड्रिंक्स हैं आप उनको प्रिपेयर कीजिए, आप उनको लीजिए, और आप नॉर्मल अपना पानी लीजिए। और अगर आपको डिहाइड्रेशन क्रैम्प्स जैसी अगर फीलिंग आती है तब आप ORS का जो मेडिकल ORS जो अवेलेबल है उसका सेवन भी कर सकते हैं।
0: श्रीकांत झागड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी क्या पूछना चाहते हैं आप?
3: हेलो
0: जी,
3: नमस्कार।
0: नमस्कार,
3: मैं श्रीकांत डॉक्टर बोल रहा हूँ पुणे महाराष्ट्र से। मेरा दो सवाल है। जो बहुत अधिक गर्मी में जैसे थकान है, चिड़चिड़ापन है, बेचैनी लगती है, तो उसी स्थिति में क्या करना चाहिए? और दूसरा ये था कि ऐसे में मतलब ब्लड प्रेशर वालों ने क्या सावधानियां रखनी चाहिए, खासकर ना हाई बीपी वालों ने?
2: हाँ जी, देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आपने पूछा।

0: है, क्योंकि जो हाई बीपी के जो मरीज होते हैं वो बहुत समय इस तरह की कुछ दवाइयों पे होते हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एंड वो जो लोग होते हैं दे आर प्री डिस्पोज टू हैव हीट स्ट्रोक, मतलब उनको हीट स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है या कोई और आपको बीमारी से अगर आप ग्रस्त हैं, कोई भी क्रॉनिक आपको डिजीज है, सीओपीडी, एस्थमा, ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को धूप से, गर्मी से बचा कर रखें, क्योंकि इसमें आपका जो कार्डियो रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म्स हैं वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के मरीज को खास ध्यान रखना है।
1: डॉक्टर पटनायक, आपसे हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि हीट वेव यानी लू क्या है?
2: देखिये, हीट वेव जो लू बोलते हैं बहुत भाषा में, तो हमारा जो समर टाइम में जो ज्यादातर कि अप्रैल में, जून, थोड़ा सा जुलाई पार्ट में भी, तो क्या टेम्परेचर जो तापमान है, ये तापमान है उसका साधारणतः नॉर्मल से कभी कभी ज्यादा हो जाता है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। तो ये तो गर्मी का महीना है, गर्मी का महीना है तो टेम्परेचर साधारणतः ज्यादा रहता है, लेकिन जो नॉर्मल होता है हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी 30 साल का एवरेज जो उसको नॉर्मल बोलते हैं, उससे भी थोड़ा ज्यादा होता है, कंटिन्यूअसली कुछ दिन के लिए प्रिवेल करता है, तो वो हम उसको एक हीट वेव डिफाइन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम डेफिनेशन अगर हम करेंगे तो 40 डिग्री से अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो, एंड उसका जो नॉर्मल से 4.5 से 6.4 तक अगर हो गया तो हीट वेव हम बोलेंगे। अगर वो 6.4 से भी ज्यादा डिपार्चर जो कि नॉर्मल से ज्यादा इतना हो गया तो सीवियर हीट वेव बोलेंगे। तो ये एक डेफिनेशन के हिसाब में हम जैसे कि नॉर्मल से अगर इतना दायरा तो करते हैं। और एक डेफिनेशन ये भी है कि अगर 45 डिग्री हो गया तो हम उसको हीट वेव कर देंगे।
1: लेकिन क्या ये अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग होता है? जैसे कोस्टल एरियाज के लिए अलग होगा, प्लेन्स के लिए अलग होगा।
2: हाँ, कोस्टल एरिया के लिए थोड़ा सा है कि कोस्टल एरिया में 37 डिग्री होने के बाद भी हमने हीटवेव करते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया में जो ह्यूमिडिटी का थोड़ा प्रभाव रहता है ना, तो इससे कारण ज्यादा हानिकारक हो जाता है। तो अगर तापमान बहुत ज्यादा भी नहीं है लेकिन जो ह्यूमिडिटी जो एयर का ह्यूमिडिटी होता है कोस्टल एरिया में उसको मिलता है, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा कोस्टल एरिया जो 37 डिग्री से ज्यादा होना वो कोस्टल एरिया है।
1: और प्लेन्स के लिए?
2: प्लेन्स के लिए 40 डिग्री से ज्यादा होना।
1: एक और श्रोता है हमारे साथ, राजू लवानिया, आगरा उत्तर प्रदेश से। राजू जी
3: जी, मेरा नमस्कार डॉक्टर साहब को, दीदी आपको भी
1: नमस्कार।
2: नमस्कार
3: डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था जैसे घरेलू नुस्खों में तो खैर जैसे आम का पना है, बेल का शरबत है या नींबू पानी है, ये तो खैर पुराने जो नुस्खे हैं वो तो है ही, लेकिन मेडिकल साइंस में हीट वेव का परमानेंट ट्रीटमेंट और इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट क्या है?
0: देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है कि आप जो गर्मी वाली जगह है उससे दूर रहें। तो अगर कोई किसी को भी इस तरह के लक्षण अगर आते हैं तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को फटाफट से गर्मी वाली जगह से दूर मूव करना है। उसके बाद हमें उनको ठंडे पानी की पट्टी करनी है, और साथ में अगर पॉसिबल है तो एक पंखा करना है। आप थोड़ा पानी स्प्रिंकल करके और पंखा करें, पंखा करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे इवेपोरेशन से जब हीट उड़ती है तो उससे और ज्यादा आपका हीट लॉस होता है, ज्यादा देर की अगर आप खाली उस पर ठंडा कुछ रख देंगे। उसके अलावा आपको पंखा भी ऊपर से करना है, तो पंखे के आगे थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के थोड़ी ठंडी पट्टी करना। तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट इलाज है जो कहीं भी किया जा सकता है।
1: लू लगने पर क्या लक्षण दिखते हैं?
0: देखिए, लू के लक्षण बहुत तरह के हो सकते हैं। माइल्ड लक्षण हो सकते हैं जिसमें कि आपको हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, स्किन रैश हो सकते हैं जिसको कि नॉर्मल भाषा में हम प्रिकली हीट बोलते हैं या घमोरियां बोलते हैं। तो उसमें आपको आपको थोड़ा पाउडर डाल लेना है, कुछ एंटी एलर्जी का एंटी हिस्टामिनिक दवाई जैसे कि सिट्रोजीन वगैरह है उसका आप यूज कर सकते हैं, और पानी आपको अच्छे से पीना, और ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं, और हल्के रंग के हल्के कपड़े, ढीले ढाले कपड़े वो आपको पहनने हैं। तो ये हुआ हीट रैश के लिए। हीट क्रैम्प्स में आपको हो सकता है कि थोड़ा अकड़न जकड़न महसूस हो, आपको हाथ पैर सीधा करने में दिक्कत लगे, मांसपेशियों में आपको जकड़न महसूस हो, तो इस स्थिति में आपको फ्लूइड्स का ध्यान रखना, ये डिसइलेक्ट्रोलीमिया जो हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस जो हो जाता है हीट के वजह से, वो उससे होता है। तो उस समय आपको मेडिकल जो ओआरएस है, आप ना केवल जो बाकी तरल पदार्थ जो कि हम रूटीन

0: ले लेते हैं, उसके अलावा आप मेडिकली जो ओआरएस मिलते हैं, मेडिकल ओआरएस आप उनका सेवन करें अगर आपको हीट क्रैम्प जैसा सिस्टम हो।
1: गंभीर लक्षण क्या होते
0: हैं? गंभीर लक्षण हो सकते हैं आपको हीट एग्जॉशन या फिर हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक सबसे सिवियर वैरायटी है जिसमें कि आपको बेहोशी, आपके तो जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो 40 डिग्री कोर बॉडी टेम्परेचर, जो कि आपका रेक्टल टेम्परेचर आइडियली होना चाहिए, ना कि सरफेस सतह वाला नहीं, कोर बॉडी जिसमें कि रेक्टल टेम्परेचर आइडियल माना जाता है, वो 40 डिग्री से ज्यादा अगर आपका है तो वो, प्लस आपको कुछ भी बेहोशी का लक्षण, ऑल्टर्ड सेंसोरियम जिसको बोलते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इस तरह का कोई भी लक्षण है तो ये आप सबसे सिवियर फॉर्म जो होता है हीट स्ट्रोक का उसमें गिना
1: तो
0: जाता है।
1: अगर ऐसी स्थिति हो तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले तुरंत
0: बिल्कुल
1: उपलब्ध कराई जाती है।
0: फटाफट आप उनको ठंडी जगह, तो हल्के कपड़े, ढीले कपड़े और गीला करके, कपड़ा गीला करके पंखा उसके ऊपर करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इवन अस्पताल में भी जो सबसे पहला ट्रीटमेंट दिया जाएगा यही दिया जाएगा। हीट स्ट्रोक दो तरह का होता है, क्लासिकल और एक्सर्शनल। तो क्लासिकल में आपको यही सबसे इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव मेथड है। जो एक्सर्शनल होता है उसमें बहुत बार हम इमर्शन भी बोलते हैं कि आप उसको ठंडे पानी में इमर्स कर दो, कि कपड़े सब हटा के किसी ठंडे पानी के टब में लिटाना, वो एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक में होता है। बट जो आजकल जो मिलता है उसमें क्लासिकल हीट स्ट्रोक है और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर कोई बाहर हैवी वर्क कोई कर रहा है तो उसमें क्लासिकल और एक्सर्शनल दोनों तरह का हीट स्ट्रोक हो सकता है।
1: चौधरी महेंद्र सिंह मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। जी महेंद्र जी।
2: जी कनक जी नमस्कार।
1: नमस्ते।
2: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार।
0: धन्यवाद
2: जी। मैं चाहता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में कितना पानी पिए और कितना पानी जरूरी है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अच्छा एक स्वस्थ व्यक्ति पानी की पूर्ति हेतु बोतल लगवाता है, यानी डिस्टिल वाटर कहें या कुछ भी कहें उसे, तो आवश्यक है या नहीं?
0: ये देखिए, एक किसी भी अडल्ट व्यक्ति की जो बॉडी होती है उसका 70-80% जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पानी है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर जो अडल्ट व्यक्ति है कम से कम उसको 8-10 ग्लास पानी डेली पीना है। ये नॉर्मल सिचुएशन की बात है, लगभग एटलीस्ट कम से कम आपको 8 ग्लास पानी पीना है, क्योंकि आपका 70-80% जो आपका बॉडी का वेट है वो उसमें वाटर है, तो उसको जो रिप्लेनिश करने के लिए आपको कम से कम 2 लीटर आपको पानी पीना है। बट अगर हम आज के समय की बात करें, जब हम लू लगने की बात कर रहे हैं, तो उस समय आपको थोड़ा सा अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 से 3 लीटर आपको पीना ही है। इसके अलावा डिपेंडिंग कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, वहां कितनी गर्मी है, अगर आपको लगता है बहुत पसीना आ रहा है, बहुत वाटर लॉस है, तो आप इसके अतिरिक्त भी पानी पी सकते हैं। बट नॉर्मल स्थिति में 3-3.5 लीटर से ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वरना उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
1: और ये भी ध्यान रखना होगा कि हम पानी पीने के नाम पर या लस्सी पीने के नाम पर बहुत ज्यादा मीठी चीजें
0: बिल्कुल मीठा तो अतिरिक्त बिल्कुल ना लें, और पैक्ड इसलिए जूसेस जो है वो अवॉइड करें। नेचुरल अगर आप लें वो फिर भी
1: जो हमारे पुराने लस्सी, छाछ, बेल का शरबत, ऐसी चीजें ज्यादा अच्छी होती है। नींबू पानी
0: बिल्कुल।
1: डॉक्टर पटनायक, कई बार वार्म नाइट और वेरी वार्म नाइट की भी चेतावनी जारी की जाती है, तो ये कब किया जाता है और इसका क्या मतलब क्या होता है?
3: देखिए ज्यादातर क्या होता है, तो दिन का तापमान तो हमेशा समर में हाई रहता ही है, तो उससे जो हम हीट वेव का डेफिनेशन करते हैं दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिन के साथ मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, हीट वेव हुआ, उसके बाद नाइट जब आता है तो नाइट में भी क्या होता है, जो नाइट का टेम्परेचर तापमान है वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो ज्यादा हानिकारक होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर में रहते हैं ये दिन का भी गर्मी झेल लिया, उसके बाद जब नाइट का भी टेम्परेचर, अगर उनके पास एसी नहीं है जो यूज नहीं करते, तो उसको हम वार्म नाइट कहते हैं। तो उसमें तो मिनिमम टेम्परेचर जो है आपका नाइट का टेम्परेचर वो भी अगर 4.5 to 6.4 हो गया तो उसमें वार्म नाइट कर दे। तो वार्म नाइट जो है नाइट टेम्परेचर में, समर के टाइम में, लेकिन नाइट टेम्परेचर में अगर अधिक हो गया तो उसको वार्म नाइट कहे,
1: और वो भी खतरनाक होता है। धर्मवीर लाइन पर है हमारे साथ दिल्ली से। जी धर्मवीर जी।
4: हेलो नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बात कर रहा हूँ। हमारे एक्सपर्ट को भी नमस्कार।
3: नमस्कार।
4: मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे हम गांधीनगर मार्केट में रहते हैं और दुकान हर प्रत्येक दुकान में एसी चलते हैं एक एक दो दो, तो एक तो उनकी भी हीट निकलती है, मार्केट में निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी बस्ती से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग सावधानी क्या बरते हैं, जाना भी जरूरी होता है। और दूसरा मेरा ये पूछना है कि डायबिटीज मरीजों को शिकंजी और ओआर का घोल लेना ठीक है कि नहीं। और तीसरा एक और पुरानी एक बात याद आती है, बुजुर्ग कहते थे, जैसे कहते थे कि लोहा लोहे को काटता है, ऐसे जो गर्मी गर्मी को मारती है, बैलेंस बराबर करती है। अगर जितनी ज्यादा गर्मी हो आप चाय पी लें कॉफी पी लें तो बैलेंस बना रहता है, कोल्ड ड्रिंक लेना ठीक रहता है कि नहीं, कृपा करके।
0: हाँ जी, देखिए कोल्ड ड्रिंक लेना तो नहीं ठीक है ना, बट जो आप नेचुरल जो चीजें हैं जो आपको वैसे ठंडक प्रदान करती है, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप बेल रस पी सकते हैं या फिर आप नींबू पानी ले सकते हैं, तो जो नेचुरल चीजें कोकोनट वाटर ले सकते हैं, तो जो तरल चीजें हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। इसका मतलब कोल्ड ठंडा लेने से आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक लेने से आपके शरीर को कुछ फायदा नहीं मिलेगा। तो कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें नहीं अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है, वो अवॉइड करनी है। और जो आपने कहा शुगरी ड्रिंक, क्या डायबिटीज के मरीज को हम दे सकते हैं? नहीं, वो अवॉइड करनी है। नींबू पानी अगर आप देंगे उनको तो आप बिना चीनी के दीजिए, नमक वाला नींबू पानी दे सकते हैं, सॉल्टेड नींबू पानी दे सकते हैं, या आप उनको लस्सी दीजिए छाछ वाली जो होती है, जो कि नमकीन लस्सी होती है, तो उनको उस कोकोनट वाटर आप दे सकते हैं।
1: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम लू से सुरक्षा और सावधानियों पर चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित उपाध्याय बिहार से। अमित जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी
5: हाँ हाँ जी मैं सुन पा रहा हूँ। मैं सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ, अमित उपाध्याय। मैं ये मेरा ये सवाल था कि जैसे कि पिछले हम लोग देख रहे हैं तुलना करें और पिछले साल के और हर एक साल से तुलना करें तो गर्मी का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो जैसे कि पहले टेम्परेचर हाई, अभी जैसे मई में ही टेम्परेचर इतना 45 प्लस जा रहा है, 48 तक आ जा रहा है। तो हम ये मेरा ये प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर जो जिसका शरीर में कुछ नहीं है जांच करने पर भी, वो भी चलते चलते कभी कभी गिर जाते हैं अचानक से, उनका भी बेहोशी कुछ वैसे हो जाता है। तो हम लोग इसमें क्या और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि खूब पानी पीना जो भी डॉक्टर साहब बताते हैं वो सब हम लोग करते हैं, इसमें और क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं ताकि हम लोग स्वस्थ रह सके? जी
0: देखिए, जब भी आप बाहर निकलें कुछ एक आप छतरी लें या कपड़ा लें, गमछा जैसा कि कहा जाता है, गीला करके लें तो और भी अच्छा है। तो आपको उन चीजों का ध्यान रखना। देखिए नॉर्मल व्यक्ति में भी ये चीज हो सकती है, जिसको पहले से कोई बीमारी है वो ज्यादा प्रीडिस्पोज्ड है, क्योंकि उसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। एंड स्पेशली जैसे कि कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो लेते हैं, खास तौर से वो लोग बहुत ही प्रीडिस्पोज्ड होते हैं इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस के लिए, हीट स्ट्रोक के लिए, क्योंकि उसमें पूरा टेम्परेचर रेगुलेशन उनका डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो लोग खास ध्यान रखें। और जो नॉर्मल व्यक्ति है तो बाहर निकलते समय ये सब प्रिकॉशंस लें, फ्लूइड्स लें, तो इतना ही है आप कर सकते हैं। और अगर कोई सिम्टम आपको लगता है हीट एग्जॉशन का या हीट स्ट्रोक का, तो इमिडिएटली ठंडी जगह पे मूव करके गीला कपड़ा रख के आप हवा कर सकते हैं।
1: तो हीट वेव किसी को भी प्रभावित कर सकता है, पर जैसा कि आपने बताया कि जिनको शुगर है या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें इसका ज्यादा खतरा रहता है। और कौन कौन से ऐसे वर्ग है, मतलब कैटेगरी क्या क्या है जिनके लोगों को इसका खतरा?
0: किसी भी क्रॉनिक डिजीज का अगर कोई मरीज है, कोई अस्थमा है, कोई COPD है, कोई हार्ट डिजीज का पेशेंट है, कोई कैंसर कीमोथेरेपी पे है, ये सब भी प्रीडिस्पोज्ड है। बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ये सभी जो हाई रिस्क ग्रुप्स में ही आते हैं।
1: तो प्रेग्नेंट लेडीज के जो आपने बात की उसमें क्या असर पड़ता है उस पर, उसके होने वाले बच्चे पर हीट वेव का?
0: देखिए जब आप हीट, अगर आप हीट से एक्सपोज्ड है तो आपको पेरिफेरल वेजो डायलिटेशन होता है, यानी कि आपकी जो पेरिफ्रीज की जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट आपके बॉडी से बाहर निकल सके। उसकी वजह से थोड़ा वॉल्यूम जो है आपका, बाकी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई, उसके लिए ब्लड कम हो जाता है। तो ऐसे में जो बच्चा है उसका ब्लड सप्लाई भी कम हो सकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट लेडीज को हम कोशिश करें ऐसी गर्मी की जगह से बचा कर रखें और फ्लूइड

0: से वही बात है, तरल पदार्थ का जितना हो सके सेवन करें। महाराष्ट्र से कोल्हापुर से विजय कुमार स्वामी है हमारे अगले श्रोता।
1: हाँ जी
0: जी।
1: हाँ कनक दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: हाँ दीदी को भी नमस्ते सर। नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: हाँ विजय कुमार स्वामी गांव बस्तवा तहसील शिवर जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैं।
0: जी जी।
1: हाँ मेरा सवाल यह है कि अभी दिन रात पंखे जो चालू हैं
0: जी,
1: इसका हमारे पर शरीर पर कुछ असर हो सकता है क्या?
0: पंखे का असर तो नहीं, गलत नहीं होगा।
2: नहीं, पंखे से फायदा है, बट अगर 40 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर है तब केवल पंखा चलाने से फायदा नहीं है। तब आप एसी चला के एसी का टेम्परेचर 27 डिग्री रख के साथ में आप पंखा चलाएंगे तो उससे और आपको 4 डिग्री कम महसूस होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसी का टेम्परेचर 15, 20, 22, 21 नहीं रखना है, 27 रखना है ज्यादा से ज्यादा जो पॉसिबल। और साथ में आप थोड़ा फैन तब चलाएंगे तो वो और मदद करेगा। और जैसे कि पहले वो मैं पूछ रहे थे कि हम सब जगह एसी चल रहा है, इतना गर्म है, तो और हम क्या कर सकते हैं? आपको जितना हो सके अपने छतों पे ग्रीन प्लांटेशन करना चाहिए, उससे थोड़ा सा आपका जो है
0: घर का तापमान थोड़ा
2: तापमान जो है कंट्रोल रहेगा।
0: और घर के आसपास भी पौधे लगाने चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: हमारे एक श्रोता ने व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछा है डॉक्टर पटनायक कि आईएमडी की एडवाइजरी और मौसम संबंधी अपडेट आम लोग कहां से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
3: नहीं, आईएमडी जो
0: ये मयंक शेखर जी, मैं आपको नाम बता दूं, मयंक शेखर मिश्रा है, ये वाराणसी से उन्होंने पूछा है।
3: हाँ, वाराणसी भी बहुत गर्मी जगह है और वहाँ भी बहुत लस्सी ये सब जो इसलिए भी चलता है। तो देखिए, जो हम जो आईएमडी जो देता है सूचना, जो हीट वेव का अर्ली वार्निंग जो बोलते हैं हम, वो बहुत सारे मैकेनिज्म में हम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, पहला तो एक है कि हम हमारा वेबसाइट में देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वेबसाइट नहीं करते, अपडेट मान लीजिए वेबसाइट नहीं देते। दो देन दूसरा हमारा जो ऐप वगैरह है उसमें भी हम इसका जानकारी देते हैं। ऐप के साथ साथ हम आजकल क्या कर रहे हैं, हर दिन एक वीडियो बनाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं, उसको अपलोड किया जाता है, तो उसमें आपका पूरा जानकारी जो यूट्यूब में अपलोड किया जाता है तो जो जो लोग उसको भी एक्सेस करते हैं उसमें से मिल रहे हैं। आपको ऐप से मिलेगा, व्हाट्सएप में मिलेगा, देन सोशल मीडिया फेसबुक आईएमडी का अगर कोई है जिनका अकाउंट अगर करेंगे तो उसमें मिलेगा। तो ये तो ऑल इंडिया लेवल में भी है और हमारा जो रीजनल सेंटर वगैरह, जैसे कि वाराणसी से उन्होंने बताया भाई साहब, तो लखनऊ में हमारा जो रीजनल मेट सेंटर्स है वहां से जो रीजनल डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इंफॉर्मेशन, उनका वेबसाइट एक अलग होता है, उनका जो डाटाबेस है जहां जहां मैसेज आता है उनका सारा सब उन्होंने रखा है। तो हर तरह का मीडियम से हम लोगों को प्रेरित करते हैं।
0: इन्होंने ये भी पूछा है कि दिन के कुछ वो विशेष समय क्या है जब लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए इतनी भीषण गर्मी में?
3: देखिए, ये दिन में जब टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो लगभग अराउंड 2:30 के आसपास, 3:30 इसी में होता है दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर। लेकिन सुबह से गर्मी शुरू हो जाता है, गर्मी टेम्परेचर भी बढ़ता है, और दूसरी बात क्या होता है कि जब नीचे का जमीन भी गर्म हो जाता है वहां से भी टेम्परेचर ऊपर रेडिएट होता है। तो ये दोनों का जब ये होता है तब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो आपका इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग उसी टाइम में 2:30 के बाद आता है, जबकि पहला 12 बजे बच्चन टाइम नहीं आता है, 2:30 के बाद 3 बजे अराउंड उसमें आता है कि जब दोनों तरफ से रेडिएशन आता है। तो इसलिए उसी टाइम में नेचुरली जब डायरेक्ट सनलाइट है 11 बजे के बाद एटलीस्ट डायरेक्ट सनलाइट ज्यादा तेज है उस टाइम अवॉइड करना चाहिए। जब मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है, जब गर्मी धरती के नीचे गर्मी हो गया, गर्म हवा भी नीचे से फेंक रहा है, तो वो भी 3-4 बजे तक तो अवॉइड करना,
0: मतलब 11 से 4 तक अवॉइड करना चाहिए जहां तक हो सके। अगला सवाल है रवि जवालिया जी का हरिद्वार से।
4: नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार
4: जी, मैं रवि जवालिया गढ़मीरपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ और सभी सभी विशेषज्ञ को और आपको भी नमस्कार बोल रहा हूँ जी, और आप सभी को और मेरे सभी श्रोता गणों को भी अभिभावक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी।
0: जी आपको भी।
4: हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कोरजेशन मशीन पे दत्ता कंपनी में काम करता हूँ, वो मशीन थोड़ी हीट जनरेट करती है, तो मुझे वहाँ पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी शायद गर्मी का एहसास होता ही है सभी को। तो मैं अपने माध्यम से वैसे तो मुझे पता है, मैं श्रोताओं को भी जान मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि क्या मुझे उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए मैम जी।
0: ये जहाँ काम करते हैं वो मशीन से गर्मी निकलती है काफी, तो क्या सावधानी इनको बरतनी चाहिए?
2: तो जितना हल्का कपड़ा हो सके आप उतना हल्का कपड़ा पहने, और फिर वही अगर एक गीला कपड़ा आप सिर के आसपास लगा सकते हैं तो वो आई थिंक आपको थोड़ा मदद करेगा। और लिक्विड चीजें लेते हैं,
0: ये तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बार बार बता रही हैं कि आपको जितना हो सके उतना तरल पदार्थ लिक्विड लेना है,
2: और आसपास कहीं पंखा है तो आप पंखा
0: बीच बीच में आप जा सकते हैं वहाँ। डॉक्टर रूपाली, बहुत छोटे बच्चे जो अभी अपनी स्थिति नहीं बता सकते हैं, ऐसे बच्चों के अभिभावक कैसे समझ पाएंगे कि बच्चे को लू लग गई है?
2: जी बिल्कुल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि तो बच्चों को गर्मी के समय जैसा सर ने बताया 11 से 4 के बीच में आप घर से बाहर ना भेजें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी टाइम पे सबसे ज्यादा लू लगने का रिस्क होता है। और बच्चों को हमें बहुत इंश्योर करना है कि वो कम से कम 8 ग्लास पानी जरूर पिए, क्योंकि इस समय हो सकता है बच्चा पानी कम पी रहा है, तो हमें उस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों का फ्लूइड इनटेक ठीक रहे, 11 से 4 के समय वो बाहर ना निकले। और बाकी अगर लगता है कि बच्चा कुछ भी सुस्तीपन दिखा रहा है,
0: जैसे बहुत छोटा बच्चा,
2: बिल्कुल बहुत
0: का
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: उसके लिए
2: सुस्तीपन दूध नहीं पीना, अगर बच्चा इतना छोटा बिल्कुल अगर दूध नहीं पीना या बुखार होना तो इमीडिएटली आपको किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी को विजिट करना है और उनकी मदद लेनी है। और बच्चों को भी ढीले कपड़े, ये कपड़े बहुत इम्पोर्टेंट है, हल्के फुल्के हवादार ढीले कपड़े।
0: अगला सवाल है राकेश जी का शिमला से।
5: जी नमस्कार।
0: नमस्कार
5: जी, मेरा दो सवाल है। पहला सवाल तो ये कि जब गर्मी बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, वो कितना घातक है? और दूसरा सवाल मेरा ये कि जैसे कि अब हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में गर्मी भी बढ़ रही है, तो इसमें मैदानी क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा? ये मेरे दोनों सवाल है।
0: जब हिल स्टेशन से गर्मी बढ़ने लगी है तो प्लेन्स पे और भी गर्मी होगी, इनका ये पूछना है कि क्या असर पड़ेगा प्लेन्स?
3: देखिए, जैसा कि हिल स्टेशन में थोड़ा सा हमारा ये है कि हिल स्टेशन में थोड़ा तापमान प्लेन स्टेशन से थोड़ा कम रहता है, ठीक है, तो इसलिए जैसा कि प्लेन स्टेशन से भी लोग जाते रहते हैं, तो बट आजकल क्या होता है, क्लाइमेट चेंज है तो हिल एरिया में भी जो जैसे कि पहला इतना गर्मी नहीं होता था, आजकल हिल एरिया में भी गर्मी महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए तो हिल स्टेशन के लिए तो गर्मी आपका धीरे धीरे भी हो रहा है, पहले जो इतना नहीं हो रहा था इसलिए, लेकिन प्लेन एरिया में तो आपका उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्यों प्लेन एरिया में तो थोड़ा गर्मी का ज्यादा रोकेगा, क्योंकि वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो ऑलवेज थोड़ा सा ज्यादा है हिल स्टेशन के ऊपर, तो इसलिए हिल स्टेशन में जब हो रहा है तो उसका प्रभाव प्लेन में नहीं है, लेकिन उसका प्लेन में भी रहेगा, जब हिल में हो रहा था तो प्लेन में भी रहेगा।
0: डॉक्टर पटनायक, हीट एक्शन प्लान क्या है?
3: हाँ, हीट एक्शन प्लान क्या होता है कि पहला क्या हो रहा था, जब ये एक्शन प्लान नहीं होता था तो हीट क्या धीरे धीरे धीरे धीरे किल करता है, तो हीट वेव के कारण भी धीरे धीरे ग्रेजुअली डेथ जो है नंबर ऑफ डेथ बढ़ता गया, तो गुजरात साइड में पहला ये महसूस हुआ कि बहुत सारे जो हीट रिलेटेड डेथ बढ़ रहा है, तो देखा गया कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है बहुत अनजान के कारण लोग क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं जानते थे, इसलिए बहुत एक्सपोजर होता था, क्या एक्शन लेना है उनको पता नहीं था, तो इसलिए लोग थोड़ा डेथ 2010-12 में ऐसा हुआ, तो उसमें हीट एक्शन प्लान जब स्टार्ट हुआ उसमें क्या होता है, एक जो जो भी राज्य में जहां हीट रिलेटेड ये सब इफेक्ट रहता है तो उन्होंने वन बाय वन थोड़ा हीट एक्शन प्लान शुरू किया, तो पहला मान लो गुजरात में हीट एक्शन प्लान शुरू किया, तो हीट एक्शन प्लान में क्या होता है, ये बहुत सारे म्युनिसिपल लोग जो होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, आईएमडी के जो वार्निंग अर्ली वार्निंग देते हैं, और ये बाकी जो जो जो एडवाइजरी इशू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पानी, ये सारे जो है एक तरीके से रहता है, तो पहला उनको क्या होता है, एक हमारे डिपार्टमेंट से अगले 5 दिन अगले 7 दिन के लिए तापमान कैसा रहेगा वो एक पहला इन्फॉर्मेशन हो गया, तो वो इन्फॉर्मेशन के बाद फिर म्युनिसिपल जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, अगर पानी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर ज्यादा लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ज्यादा लोग हो जाएंगे तो उनको फिर मेडिकल अटेंशन देना जाता है।
0: डॉक्टर डॉक्टर पटनायक, अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइंस और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डीआर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक, आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही पब्लिक

0: पृथ्वी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नीलेश जोशी का नमस्कार। श्रोताओं, हम उपस्थित हैं आपके मनपसंद फरमाइशी गीतों के संग इस सुहानी रात में। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं दर्द फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने। गीत रचना नक्शलाल पुरी की है। और संगीत खय्याम का।

आशा भोसले और किशोर कुमार को अभी आपने सुना दर्द फिल्म में। गीत रचना नक्शलाल पुरी की और संगीत खय्याम का। पसंद आप सभी श्रोताओं की। बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली की। नांदखेड़ जिला वाशिम से अशोक चुंबले, दिनेश चुंबले, रूपेश, लीलाबाई, चेताली और प्रीति मांदड़े की। इंदौर से इस गीत को पसंद किया हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी ने। पुणे से इस गीत के लिए फरमाइश हमें भेजी बाबा साहेब वड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानिरे और कार्तिक युवराज ने। बहरामपुर टेमा से डॉक्टर त्रिलोचन वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर, आयरन वर्मा, बेबी आरोही, ईशिका और अंजलि श्वेता वर्मा भी यही गीत सुनना चाहते थे। साथ ही इस गीत के लिए फरमाइश हमें भेजी थी सनावत से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक सचिन कटारिया, श्रीमती प्रभा कटारिया, कृष्णा विराज, अर्णव और काव्यांशी कटारिया ने। लक्षणपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू भी यही गीत सुनना चाहते थे। और खंडवा से मोहम्मद रफीक पंवार, मोहम्मद साकिब पंवार, मोइन छोटू पंवार, मोहम्मद हसनैन पंवार। ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी और अजय गंगराड़े। अहमदपुर खेगांव खंडवा से कैलाश फुलमाली, दीपक फुलमाली, समर और वेदिका फुलमाली ने भी इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी थी। श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

0: जानिसार अख्तर की गीत रचना, खयाम का सुमधुर संगीत, लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म शंकर हुसैन। पसंद आप सभी श्रोताओं की। नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, मधुरा राजावत, राशि, रक्षित, स्वीटी, सागर, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रिया, रेत, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्यगण। सनाबस से कालू सिंह बड़ोले, सीताराम बड़ोले, हीरालाल बड़ोले, तेर सिंह डावर, साहिल, हरिओम, विशाल, सुमन, रमा, कंचन और भावना। मोरटका माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य और मानस पटेल की। साथ ही इस गीत के लिए फरमाइश हमें भेजी थी आलोट से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने। अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर भी यही गीत सुनना चाहते थे। उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गावणकर, श्रीमती सरिता गावणकर, प्रिंस एकांश गावणकर, बदलपुर मुंबई से सिद्धांत गावणकर, प्रणीता गावणकर और बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गावणकर, श्वेता, सुमित गावणकर, कुमारी ध्वनि गावणकर भी यही गीत सुनना चाहते थे। इंदौर से इस गीत के लिए फरमाइश हमें भेजी अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदिनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन और इनके परिवार के सभी सदस्यगणों ने। साथ ही इस गीत को पसंद किया था सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार ने। उज्जैन से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश मुणत भी यही गीत सुनना चाहते थे। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर हमने सुनवाया लता मंगेशकर के स्वर में शंकर हुसैन फिल्म का ये प्यारा सा गीत।
1: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
2: क्या?
1: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
2: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: पर सुनेंगे कैसे?
1: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: गुलजार के बोल, खय्याम का सुमधुर संगीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना फिल्म, जी हाँ, थोड़ी सी बेवफाई, पसंद आप सभी श्रोताओं की। खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। मालकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल, निवृत्ति क्षीरसागर, सतीश सराफ, जगदीश तांबर, संजय चौहान और इनके परिवार के सभी सदस्यगण। साथ ही इस गीत के लिए खत में भेजा सरगुजा, मेन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और आदिबा थापा ने। लूनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, वेरी डोम और डब्लू डोम। मथुरा से वसीम आसमा, अकरमा आसमा और उल्लाह आसमा भी यही गीत सुनना चाहते थे। छाबड़ा से नूर बानो, सनवा बानो और बेबी रुखियार ने भी इसी गीत के लिए हमें खत भेजा था। बीर शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव और रामनिवास अग्रवाल भी इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद थे। साथ ही परसोन से भागचंद साहू, अजय साहू, राज साहू, प्रेम भाई और करिश्मा साहू ने भी इसी गीत को पसंद किया था। इंदौर से जगदीश चौहान, ललिता चौहान, विशाल, उर्वशी, प्रियंका, प्रियांशी, लक्की, ऋतिक, शौर्य, बसंती बाई, किशन लाल, महेंद्र और सुनीता शारदा ने भी इसी गीत के लिए हमें खत भेजा था। शिरपुर से गिरीश देशमुख, सोनाली, रेणुका आरव और अश्विनी मौसमी, जीवाय देशमुख भी यही गीत सुनना चाहते थे। साथ ही इंदौर से इस गीत को पसंद किया था आराध्या, अनक, अनन्या, अमोक, संगीता, प्रज्ञा और हेमेंद्र जोशी ने। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर हमने सुनवाया थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये प्यारा सा गीत।
1: मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म गीत,
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

खूबसूरत। जी हाँ श्रोताओ, यही है फिल्म का नाम। इसका गीत अब आप सुन रहे हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वर।

खूबसूरत फिल्म के इस गीत को पसंद किया था संबलपुर कांकेड़ से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, ईशिका और तेजल यादव ने। हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा डायक और इनके परिवार के सभी सदस्यगण भी यही गीत सुनना चाहते थे। डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग ने भी इसी गीत को पसंद किया था। गोरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले भी यही गीत सुनना चाहते थे। सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर और ऋषिका रॉबिन ने भी इसी गीत के लिए हमें खत लिखा था।

इंदौर से प्रभोचन कांडपाल, अंजिल कांडपाल और रेणु कांडपाल भी यही गीत सुनना चाहते थे। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर हमने सुनवाया खूबसूरत फिल्म का गीत, जिसे गाया था कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति ने। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही मन भवन कार्यक्रम समाप्त करने की नीलेश जोशी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मन भवन आकाशवाणी का, ये इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में लीजिए सुनिए भुवनेश कोमलकली का गायन, राग है शिव केदार।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे भुवनेश कोमकली का गायन, राग था शिव केदार। अभी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: इस समय आप हैं हमारे साथ।
1: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
2: रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।

0: आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेड बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing,

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब संपन्न होती है हमारी ये सभा। कल प्रातःकालीन सभा में 5:53 पर हम आपकी सेवाएं पुनः उपस्थित होंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।